0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है, जो कि दोपहर के 12 बजे तक जारी रहेगी। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तदनुसार 20 जून 2026 आज दिन शनिवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: एक बकरी के दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। वो उनका बड़ा ध्यान रखती थी, खूब दूध पिलाती थी, हरी हरी घास खिलाती थी। कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे गोल मटोल हो गए। बकरी ने उनके पैरों में घुंघरू बांध दिए। दोनों छम छम कर घर में कभी इधर घूमते तो कभी उधर। जो भी उन बच्चों को देखता उसका जी खुश हो जाता। दोनों बड़े शिष्ट और आज्ञाकारी थे। जो भी उनके घर आता था उससे नमस्ते कर विनम्रता पूर्वक बातें भी करते थे। एक दिन बकरी के घर भालू दादा आए। वो पास के एक जंगल के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। जंगल के जानवरों के इतने बच्चे उनके स्कूल में आते थे कि वो भरा रहता था। भालू दादा ने बकरी के बच्चों को देखा, उनकी शिष्टता से वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बकरी से कहा, दीदी तुम इन बच्चों को स्कूल में दाखिल क्यों नहीं करा देती? बकरी बोली, भैया तुम तो जानते ही हो, इनके पिता तो है नहीं, खाने पीने का इंतजाम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं सुबह जाती हूँ और दिन छिपे घर वापस आती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि इन्हें स्कूल छोड़ने जाऊँ और फिर समय से लेने भी आऊँ। पर ये तुम्हारे बच्चे तो बड़े समझदार हैं, अकेली ही आ जा सकते हैं। नहीं नहीं भैया, कालू भेड़िये को नहीं जानते तुम, वो तो बिना किसी बात के मुझसे दुश्मनी बांधे बैठा है। इन बच्चों को भी खाने की ताक में है। अम्मा हम कभी भेड़ियों की बातों में नहीं आएंगे, घर से सीधे स्कूल और स्कूल से सीधे घर ही आएंगे। हमें स्कूल जाने की आज्ञा दे दो। दोनों बच्चे एक साथ बोले। भालू दादा भी कहने लगे कि बच्चों को घर बैठाने से क्या लाभ, स्कूल जाकर पढ़ेंगे तो नई चीजें सीखेंगे, समय का उपयोग होगा। इस पर शीला बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन वो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाने गई और अपने बच्चों को अच्छी तरह समझा दिया कि वो स्कूल से सीधे घर आए और घर से सीधे स्कूल जाएं। रास्ते में कोई कुछ दे तो कभी ना लें, कहीं कोई चलने को कहे तो मना कर दें। उसने बच्चों को बताया कि भेड़िया बच्चों को मिठाई आदि चीजें देकर बहकाते हैं और फिर वो उन्हें अपने घर ले जाकर मार कर खा जाते हैं। दोनों ने माँ को विश्वास दिलाया कि वो कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे। इधर भेड़िये को पता लगा कि बकरी के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। उसने सोचा किसी तरह दोनों को पकड़ना चाहिए। एक दिन वो एक थैले में रस भरी मीठी मीठी घास भर लाया। पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा दोनों बच्चे चले आ रहे हैं। भेड़िया जोर से आवाज लगाकर बोला, अरे बच्चों लो आओ, ये लो मीठी मीठी घास खाओ। दोनों बच्चों को सहसा माँ की सीख याद आ गई। उन्होंने भेड़िये को मना कर दिया। भेड़िये ने बार बार कहा, थोड़ी सी चख लो बेटा, पर बच्चे बार बार मना करते रहे। हार कर भेड़िया वापस हो गया। घर पहुंचकर दोनों बच्चों ने सारी बातें माँ को बताई। बकरी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। कुछ दिनों के बाद दोनों बच्चे चले आ रहे थे। भेड़िया फिर उनके रास्ते में आया, हाथ में बिस्किट का डब्बा था, पर दोनों बच्चों ने बिस्किट लेने से साफ मना कर दिया। वे स्कूल की तरफ आगे बढ़ गए। बच्चों को फुसलाने की भेड़िये की सारी कोशिशें बेकार हो गई। भेड़िया जब लाचार होकर अपने होठों पर जी फिरा कर ही रह जाता। माँ की आज्ञा का पालन करने के कारण ही दोनों भेड़िये का शिकार नहीं बने और भेड़िया मन महसूस कर रह गए।
1: जीवन सौरभ।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि। 7:15 पर सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8:00 महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम में आज हम उड़िया के भाषाविद मांगई गोमांगो के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है देवगढ़ के गोंड राज्य की स्थापत्य कला। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। सुबह 9:00 कार्यक्रम योग संवाद। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा योग वशिष्ठ बाल्यावस्था एवं युवावस्था के दोष। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और इनसे बातचीत करेंगे सुनीता सिंह। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम भारत विभूति। आज का कार्यक्रम समाजसेवी एवं स्वाधीनता संग्राम सेनानी ओमियोदास गुप्ता के जीवन पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम को स्वर देंगे सुनीता सिंह एवं दीपक नेमा। हम एक बार फिर बताना चाहेंगे कि भारत विभूति कार्यक्रम आज ओमियो कुमार दास के जीवन पर केंद्रित होगा, जो कि स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक थे। इस कार्यक्रम को आप सुबह 9:30 पर सुन सकते हैं। सुबह 10:00 भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी के साथ देशभक्ति गीतों का प्रसारण होगा। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम आजाद हिंद। आज का कार्यक्रम स्वामी कुमारानंद के जीवन पर केंद्रित होगा। सुबह 11:00 सुर सागर कार्यक्रम में आज हम भक्ति गायन सुनेंगे। कलाकार होंगी माधवी मधुकर झा। सुबह 11:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 149वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा और चथ्य, देवता हैं अग्नि, छंद है विराट।
1: महः सराय एषते पतिर् दन्निन इनस्य वसुनः पद आ उप ध्रजन्त मद्रयो विधिन्नित। जब वे अग्निदेव धन संपदा प्रदान करने के लिए हमारे यज्ञों में आगमन करते हैं, तब पत्थरों द्वारा कूट कर अभिषुत सोम रस से उनका अभिनंदन किया जाता है। स यो वृषा नराम न रोदस्योः श्रवोभिरस्ति जीव पीत सर्गः प्र यः सस्राणः सिश्रीत योनौ। शक्तिशाली पुरुष की तरह अग्निदेव द्युलोक और भूलोक में यश सहित रहते हैं। वे प्राणियों के लिए उपयुक्त सृष्टि की रचना करते हैं। वे ही प्रदीप्त होकर यज्ञ वेदी में स्थापित होते हैं। आ यह पुरम नार्मिणी मदीदेत्यः कविर नभन्यो नार्वा सूरो न रुरुक्वांछतात्मा। जो अग्निदेव यजमानों द्वारा निर्मित यज्ञ वेदियों को प्रदीप्त करते हैं, जो द्रुतगामी घोड़े और वायु के सदृश गति वाले तथा दूरद्रष्टा हैं, वे अनेक रूपों में विद्युत, प्रकाश, ऊर्जा आदि सुशोभित अग्निदेव सूर्यदेव के सदृश तेजोमय हैं। अभिद्विजन्मा त्रि रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात् होता यजिष्ठो अपाम सधस्थे। ये अग्निदेव द्विजन्मा अर्थात दो अरणियों के मंथन से उत्पन्न होने वाले हैं। त्रिरोचन अर्थात सूर्य, विद्युत और लौकिक अग्नि रूप में शोभित होते हुए सारे विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं। ये होता अग्निदेव जलों के बीच भी विद्यमान है। अयम स होता यो द्विजन्मा विश्वादधे वार्याणि श्रवस्या मर्तो यो अस्मै सुतु को ददाश। दो अरणियों से उत्पन्न हुए अग्निदेव देवों का आवाहन करने वाले सब श्रेष्ठ धनों और यशस्वी कर्मों के धारक हैं। वे अग्निदेव अपने याजकों को उत्तम संपत्ति प्रदान करने वाले हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 149वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। रोज नए नए मार्गों की खोज करना ही जीवन है। जो मनुष्य बिना डरे मजबूत विचार शक्ति से नए नए प्रयोग करता है, वो सुधार करने और आगे बढ़ने में सक्षम होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, यदि आप बार बार एक ही काम को एक ही तरीके से करते हैं, तो अलग अलग परिणामों की अपेक्षा ना करें।

आपकी जिंदगी में हर परिवर्तन किसी विचार के आपके दिमाग में उपजने के साथ ही होगा। विचार ही भविष्य की कुंजियां हैं। विचारों में ही आपकी तमाम समस्याओं के उत्तर छिपे हुए हैं और लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते भी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने विचारों का जनरेटर बनना है, ताकि आपके दिमाग में लगातार हो रहे परिवर्तनों और आसपास बन रहे मौकों के लिए नित नए और बेहतर विचार आते रहें।

90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि जब भी कोई मौका उनके पास आता है तो वे उसे शक की नज़र से देखते हैं। वहीं 10% लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि जब भी कोई मौका उनके पास आता है तो वे उसे मौके की तरह ही देखते हैं।

एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि बुद्धि मात्र स्कूल जाने से नहीं मिलती, बल्कि ताउम्र सीखने से मिलती है। आप भी स्वयं से पूछें कि आपने नया क्या सीखा, और अगर नहीं सीख पाए हैं तो भी देर नहीं हुई है। आज से ही कुछ नया सीखने की शुरुआत कर दें।

अनुपयोग से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देती है, इसी तरह निष्क्रियता से मस्तिष्क अपनी ताकत खो देता है।

स्वयं से सवाल करते रहना जरूरी है कि क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, जीवन को, खेल को, काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप भी वैसे ही बनेंगे जैसा अपने आप को आप कल्पना करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। इसलिए हमेशा कुछ नया करते रहें, अपने काम को और बेहतर बनाने के तरीके खोजते रहें।

किसी से मदद मिलने का इंतजार ना करें, आगे बढ़ें और अपनी समस्याओं का हल खुद करें। किसी से मदद मिलने के इंतजार में समय हाथ से निकल सकता है, अवसर हमारे हाथ से निकल सकता है और जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमसे छूट सकता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम उड़िया भाषाविद मांगई गोमांगो के जीवन पर केंद्रित है।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

जैसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक दिशाओं को भरोसा देता है, वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही एक दीपशिखा का नाम है मंगेई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्मगौरव के साथ जीना सिखाया। मंगेई गोमांगो का जन्म 16 जून 1916 को ओडिशा के रायगढ़ा जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घन

युवा मंगेई ने देखा कि उनके समाज की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक स्वरूप देने का विचार था और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती सामने थी, इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगेई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगेई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे। लेकिन मंगेई गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

पंडिता मंगेई गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की विधियों को अपनी लिपि में लिखकर इस ज्ञान को संरक्षित भी किया। उन्होंने अपने निवास स्थान मरिचगुड़ा को एक चिकित्सा केंद्र में बदल दिया। उन दिनों ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल या डॉक्टर नहीं होते थे। उन्होंने मलेरिया, गंभीर त्वचा रोग, सर्पदंश और पेट की घातक बीमारियों का सफल इलाज किया और विशेष बात ये कि उनका ये काम पूरी तरह निशुल्क और सेवा भाव से प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने सोरा जनजाति के बौद्धिक पोषण पर भी ध्यान दिया तथा साहित्य रचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सोरांग सोमपेंग लिपि की पहली प्रामाणिक वर्णमाला की पुस्तक और बुनियादी व्याकरण की रचना की ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी धरोहर मौखिक परंपरा में तो मौजूद थी, लेकिन लिखित रूप से ये कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। मंगेई गोमांगो ने सोरांग सोमपेंग लिपि में इसे लिखकर संरक्षित किया। निरंतर शारीरिक श्रम, गांव-गांव की कठिन यात्राएं और ढलती हुई उम्र, इन सारी बातों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वो बिस्तर पर आ गए। लेकिन अब भी वो थके नहीं, रुके नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और अन्य युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके द्वारा बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। सरकार और भाषाविदों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम उड़िया भाषा के भाषाविद मंगई गोमंगो के जीवन पर केंद्रित था। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो आओ डी बैरोस ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्य के बीच एक पुर्तगाली जमींदार। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय इतिहास के सबसे विस्फोटक शरणार्थी संगठनों में से एक को संभालने के लिए पुर्तगाली मूल के एक जमींदार पर भरोसा किया था। ये कहानी है जोआओ डी बैरोस की, जिनकी चटगांव सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जागीर ब्रिटिश कंपनी और विस्तारवादी बर्मी साम्राज्य के बीच एक उच्च स्तरीय राजनयिक गतिरोध का केंद्र बन गई थी। ये नाटक सन 1785 में शुरू हुआ, जब अराकान पर बर्मी आक्रमण के बाद हजारों शरणार्थी ब्रिटिश कब्जे वाले चटगांव की ओर भागने लगे। इन हताश लोगों में केवूटी जैसे उच्च पदस्थ राजनीतिक विद्रोही और अराकान के दिवंगत राजा का परिवार भी शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर चार्ल्स क्रॉफ्ट्स उलझन में थे। वे इन शरणार्थियों को जिले के कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसाने के लिए संभावित श्रम शक्ति के रूप में चाहते थे, लेकिन उनके पास उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं थे। लिमिटेड राज की स्थानीय सहयोगियों पर निर्भरता को दर्शाते हुए क्रॉफ्ट्स ने इन शाही शरणार्थियों को जोआओ डी बैरोस के घर में ठहराया। एक पुर्तगाली जमींदार के पास उन्हें रखकर कंपनी डी बैरोस को एक मानव ढाल और प्रशासनिक बफर के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि बर्मी जनरल वानकेचा, जिसने अभी अभी अराकान जीता था, इस व्यवस्था से नहीं डरा। उसने क्रॉफ्ट्स को धमकी भरे पत्रों की एक श्रृंखला भेजी, जिसमें केवूटी और उनके अनुयायियों को तुरंत सौंपने की मांग की गई। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब अंग्रेजों ने बर्मी जनरल की धमकी को हल्के में लिया? क्रॉफ्ट्स ने शुरू में चटगांव बटालियन का एक हिस्सा नाफ नदी के मुहाने पर भेजा, लेकिन प्रांत के सुदूर कोनों में अनिश्चित काल के लिए सेना रखने का खर्च वो नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही उन्हें वापस बुला लिया। कमजोरी के इस संकेत को देखकर वानकेचा ने कंपनी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कंपनी की कई बंगाली प्रजा को मार डाला। शरणार्थियों को जल्द ही एहसास हो गया कि जोआओ डी बैरोस की शरण स्थली केवल खोखले वादों का एक जाल थी। वे पहाड़ियों में भाग गए। केवूटी को अंततः बर्मी लोगों ने पकड़ लिया और मार डाला। अपनी मृत्यु से पहले उसने ब्रिटिश शासन पर एक मार्मिक आरोप लगाया। उसने कहा, जो लोग सुरक्षा के लिए भागे थे, उन्हें वो सुरक्षा और संरक्षा नहीं मिली जिसकी वे अंग्रेजों से उम्मीद कर रहे थे। डी बैरोस की देखरेख में मौजूद लोगों की रक्षा करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हुए। सुरक्षा की उम्मीद खो चुके कई शरणार्थी जीवित रहने के लिए लुटेरे और डाकू बन गए। इसी अराजकता के कारण सन 1787 में एक ब्रिटिश नागरिक जेम्स रवि की कुख्यात हत्या हुई। जोआओ डी बैरोस की कहानी हमें एक दिलचस्प सबक सिखाती है। विचारों के साम्राज्य में जब कोई राज्य अपने सबसे कमजोर मेहमानों की रक्षा करने में विफल रहता है, तो वो केवल अपना सम्मान ही नहीं खोता, वो अपनी सीमाओं पर व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता भी खो देता है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय है देवगढ़ के गोंडे राज्य की स्थापत्य कला। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा।
2: इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और मैं लेकर आया हूं एक नया एपिसोड, एक नया अंक हमारे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का। और पिछले एपिसोड में हमने काफी दिलचस्प जानकारियां हमारी जो विशेषज्ञ हैं, पुरातत्वविद हैं पूजा सक्सेना जी, उनसे हमने हासिल की थी। उन्होंने बताया था छिंदवाड़ा के नजदीक, जो हमारा आज का जो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है, वहां पर देवगढ़ नाम का गोंड राज्य था, जहां पर जाटवा हुए, उनके बाद के बहुत सारे राजा हुए, शासक हुए और फिर जाटवा द्वितीय हुए। उन्होंने बताया कि उनके पास एक विचित्र हाथी था जिसका नाम था जटाशंकर, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और शाहजहां तक भी पहुंची। फिर शाहजहां ने न जाने कितने जतन किए उस विचित्र हाथी जटाशंकर को पाने के लिए। खुद अपने बेटे औरंगजेब को भी उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया, निर्देशित किया और दोनों के बीच में लगातार पत्र व्यवहार होता रहा कि किस तरह से रणनीति अपनाई जाए। एक एक कर उन्होंने जाटवा द्वितीय के पास जितने भी हाथी थे सब के सब छीन लिए, सिर्फ उस एक हाथी जटाशंकर को प्राप्त करने के लिए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो विचित्र है, बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है, लेकिन वो हाथी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इस बीच उन्होंने देवगढ़ पर बहुत सारे कर भी लगा दिए, उनका सारा पशुधन, उनके सारे हाथी भी उन्होंने हड़प लिए। इसके बाद भी वो हाथी उन्हें नहीं मिल सका। पूजा जी इस बार भी हमारे साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: पूजा जी, आज आप क्या बताने वाली हैं देवगढ़ के बारे में?
3: हमने अभी तक देखा कि देवगढ़ में गोंड राज्य की स्थापना हुई और उनका प्रतापी राजा हुआ जाटवा
2: जी।
3: तो वे जहाँ से शासन कर रहे थे उस किले का नाम है देवगढ़ का किला।
2: अच्छा,
3: आज भी वह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक संरक्षित स्मारक है।
2: अच्छा।
3: तो आज हम देवगढ़ के किले के बारे में जानेंगे।
2: तो हम श्रोता जिस किले के बारे में आज जानेंगे, क्या वो वहाँ जा भी सकते हैं बतौर पर्यटक?
3: जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर छिंदवाड़ा जाते हैं तो देवगढ़ का किला तो वहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है।
2: वाह, क्या बात है।
3: देवगढ़ का किला गोंड राजवंश द्वारा बनाया गया है
2: जी।
3: और इस किले के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि गोंड किस तरीके से अपने किलों को बनाते थे, या बनाने से पहले वो ऐसी क्या विशेषताएं देखते थे, या बनाने से पहले वह कैसे स्थान का चुनाव करते
2: जी,
3: थे।
2: पूरा नियोजन जो है वो किस तरह से होता था वहाँ?
3: बिल्कुल। तो देवगढ़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर है
2: जी,
3: यानी कि एक ऐसी ऊंची पहाड़ी चाहिए होती थी जो कि चारों ओर से सुरक्षित हो, यानी जिसके चारों तरफ अच्छा घना जंगल हो। और देवगढ़ की पहाड़ी से अगर हम देखें तो उसकी स्थिति इस तरीके से है कि उसके चारों ओर भी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं।
2: अच्छा।
3: तो आप बहुत नजदीक तक जब पहुंच भी जाते हैं ना, तो तब भी आपको देवगढ़ की पहाड़ी दिखाई नहीं पड़ती।
2: अच्छा, मालूम ही नहीं चलता कि कौन सी पहाड़ी पर वो किला होगा।
3: बिल्कुल। एक घटना मुझे याद आ रही है जो ऐतिहासिक है। शाहजहां के काल में एक उनका स्थानीय अधिकारी था, कुछ महमूद शाह जैसा कुछ नाम आता है उसका, और उसने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। जाटवा का शासन था
2: जी।
3: तो कहते हैं कि वो देवगढ़ की पहाड़ी तक पहुंच ही नहीं पाया। जो आसपास की पहाड़ियां थी ना, जो उसे सुरक्षा प्रदान करती थी, उन्हीं पहाड़ियों में कहीं उलझ के खो गया।
2: अच्छा।
3: और वो कभी देवगढ़ तक पहुंच ही नहीं पाया। तो इस तरीके की एक पहाड़ी चुनी जाती थी जो कि चारों ओर से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो
2: जी,
3: वनों से आच्छादित हो। फिर दूसरी जरूरत है किसी भी किले के लिए पानी का होना।
2: बिल्कुल।
3: और हम देखते हैं कि ज्यादातर किले पहाड़ी पर स्थित हैं
2: जी,
3: तो पानी कैसे हो इतनी ऊंची पहाड़ी पर?
2: ये तो मतलब प्रबंधन बहुत मुश्किल सी बात थी, और खास तौर पे उस वक्त की जिसकी हम बात कर रहे हैं।
3: बिल्कुल। तो किलों के लिए ऐसी पहाड़ी चुनी जाती थी जिस पर कि पानी हो
2: जी।
3: तो हम अक्सर देखते हैं ना कि जब हम किलों पर जाते हैं तो कोई ना कोई एक तालाब होता है।
2: बिल्कुल।
3: और अक्सर उसकी कहानी हम सुनते हैं कि इसमें पारस पत्थर है
2: जी,
3: और इसके पानी का सेवन करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। अक्सर आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी। तो ऐसा ही एक तालाब देवगढ़ की पहाड़ी पर भी पहले से ही स्थित होगा, इसीलिए उस पहाड़ी को किला बनाने के लिए चयनित किया गया। तो मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। 2003 में देवगढ़ के किले पर काम कर रही थी और मैंने वहां पर वो तालाब देखा जिसका नाम मोती तालाब है।
2: अच्छा।
3: मैंने फिर वहां सुना स्थानीय लोगों से कि इसका पानी बड़ा ही शुद्ध है और इसमें एक पारस पत्थर है, तो अच्छा। अगर इसका पानी का सेवन करेंगे तो कोई सी भी बीमारी दूर हो जाएगी। और मैंने देखा भी कि स्थानीय लोग आते हैं और उसका थोड़ा सा पानी लेते हैं और पी भी लेते हैं
2: जी।
3: तो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि ये किंवदंती क्यों चल रही है, ये क्या है, और इतनी ऊंची पहाड़ी पर तालाब है। लोग बताते हैं कि जब आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है गर्मियों के दिनों में, तब भी ये मोतिया तालाब नहीं सूखता
2: जी।
3: तो मेरी जिज्ञासा थी कि ये तालाब इतनी ऊंची पहाड़ी पर क्यों आया
2: जी।
3: और मैंने काम करते करते देवगढ़ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि देवगढ़ का किला कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक रूप से है
2: जी।
3: ऐसा सोचते सोचते मैं किले के अंदर की ओर जाने लगी और मेरा वो पहला दिन था काम का। मैं आगे बढ़ती गई और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि कोई ऐसा हो कि राजा जाटवा यहाँ आ जाए
2: और
3: मुझे बता दें कि ये तालाब क्यों है यहाँ पर
2: जी।
3: तो मैं आगे बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जूतों के आवाज सुन रही हूँ।
2: अच्छा।
3: चर चर चर ऐसे आवाज आ रही थी और जैसे ही मेरा ध्यान गया मैं घबरा गई कि ये क्या जाटवा आ गए। मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गई। मैंने चारों तरफ देखा तो सिर्फ पेड़ ही पेड़, सागौन के पेड़ ही पेड़ थे और कुछ भी नहीं। अब मेरी हालत खराब थी। थोड़ा सा मैंने अपने को संभाला तो देखा कुछ भी नहीं था, एक सागौन के पेड़ की डाल थी
2: जी।
3: जो कि टूट गई थी तो वो चरमरा रही थी, इसलिए आवाज आ रही थी चर चर चर। लेकिन ये बातें अपनी जगह हैं। पर हाँ, हमने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा आर्टिजन वेल के बारे में, पाताल तोड़ कुआं
2: जी।
3: तो पाताल तोड़ कुआं क्या होता है कि जहां पर सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं, बालुकाश्म चट्टाने होती हैं, वे परत दर परत बनती हैं। तो लाखों सालों से जो वर्षा का जल गिर रहा है वो इन परतों में जमा होता रहता है।
2: अच्छा।
3: तो यानी कि इन पहाड़ियों की परतों में काफी जल
2: इकट्ठा है,
3: पानी इकट्ठा है। और जहां कहीं भी पानी को ऐसी जगह मिलती है पहाड़ी में जो कि अपेक्षाकृत कठोर कम है, तो वहां पर पानी झिरी फोड़ लेता है और झिरी फोड़ कर बाहर आ जाता है। तो अगर वहां डिप्रेशन हुआ तो फिर तालाब बन जाता है। तो लगातार पानी उस झिरी से आता रहता है और तालाब का पानी हमेशा मेंटेन रहता है
2: जी।
3: इस तरीके से पहाड़ियों पर ये तालाब बन जाते हैं। और जहां तक पारस पत्थर की बात है तो वो तो मैं नहीं जानती
2: जी।
3: लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो झिरी से आया हुआ पानी होता है ये बहुत ही शुद्ध होता है
2: जी।
3: क्योंकि किसी तरीके के प्रदूषण के संपर्क में ये आता नहीं है, सदियों से लाखों वर्षों से पहाड़ियों की परतों में छिपा हुआ है
2: जी।
3: तो अति शुद्ध है। इसलिए भी अगर बीमारियों में इनके सेवन की परंपरा रही है तो शायद इसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोग कोई
2: वो एक तरह से मिनरल वाटर ही है क्योंकि उसमें मिनरल्स तो बहुत सारे मिले ही होते हैं
3: जी। हाँ बिल्कुल। तो ये परंपरा शायद इसी से चली है। हम देखते हैं कि जो देवगढ़ की पहाड़ी है उस पर एक ये मोतिया तालाब है
2: जी।
3: और इसी से जुड़े हुए तीन तालाब और है। तो अगर हम देवगढ़ के किले को देखें
2: जी
3: तो ये एक ऊंची पहाड़ी पर है और जब हम इस पे चढ़ेंगे तो कई सारी सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां भी चौड़ी चौड़ी सी हैं
2: जी।
3: क्योंकि हाथी भी इससे गुजरते होंगे।
2: अच्छा, जी।
3: और ये सीढ़ियां सर्पिलाकार हैं, मतलब आप नीचे से चलना शुरू हुए और फिर मुड़ते हुए ऊपर गए और फिर एक मोड़ आया, फिर एक मोड़ आया, फिर एक मोड़ आया, इस तरीके से सर्पिलाकार है। तो ये सर्पिलाकार सीढ़ियां इसलिए होती हैं कि जब शत्रु सेना आक्रमण करती है किले पर तो जो नीचे से शत्रु की सेना जब चढ़ना शुरू करती है, जब सर्पिलाकार मोड़ आता है तो वहां पर जो उस किले की सेना होती है वो छुप कर खड़ी होती है, इसकी टुकड़ी, तो वो अचानक से आक्रमण कर देती है। सर्पिलाकार भाग पर दौड़ना इतना आसान नहीं है। तो क्या होता है कि सेना की स्पीड कम हो जाती है तो उस पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के सर्पिलाकार मार्ग बनाए जाते हैं। इसके साथ ही सर्पिलाकार मार्ग पर बहुत सारे बुर्ज भी होते हैं जहां तोपें होती हैं या चौकसी के लिए कई सारे सैनिक खड़े होते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर इन बुर्जों पर खड़े होकर शत्रु सेना पर नियंत्रण पाना आसान होता है, उन पर आक्रमण करना आसान होता है, इसलिए इस प्रकार के सर्पिलाकार हमको पथ दिखाई देते हैं। फिर जैसे ही हम देवगढ़ के किले में जाते हैं तो एक बड़ा सा दरवाजा है देवगढ़ के किले का, और दरवाजे की कहानी तो हमने पिछली बार सुनी ही थी। जाटवा ने अपने हाथों से लकड़ी के दरवाजे को उठा लिया था जी। तो एक दरवाजा है। अब जो किला है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कई सारे दरवाजे हमको मिलेंगे। एक दरवाजे का नाम हाथीखाना भी है। अच्छा। तो असल में ये जो दरवाजे हैं ये किले की जो आंतरिक सुरक्षा होती है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कोई शत्रु मुख्य दरवाजे को पार करके अंदर पहुंच भी गया तो उसके लिए किले में प्रवेश इतना आसान नहीं होता। फिर एक दरवाजा पड़ता है जी। और उसके बाद फिर सर्पिलाकार आप घूमेंगे तो फिर तीसरा दरवाजा पड़ता है। तो इस तरीके से कई चौकियों से गुजरते हुए ही कोई व्यक्ति किले के अंदर पहुंच सकता था। इसी तरीके से हम अंदर के परिसर में देखते हैं कि हर एक परिसर में, मान लीजिए कि रनिवास है, रानी जहाँ रहती है ना, तो वो एक परिसर बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको घेरते हुए बड़ी बड़ी दीवारें होंगी और उसका भी अपना एक दरवाजा होगा
2: जी।
3: तो यहाँ पर देवगढ़ में हम देखते हैं कि जब हम मुख्य तीन द्वार क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद आ जाता है मोतिया तालाब, और मोतिया तालाब के बाद आता है एक हाथी दरवाजा। तो हाथी दरवाजा को जब आप दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो वहां पर एक खुला मैदान दिखाई देगा
2: जी।
3: तो ये खुला मैदान किस लिए है कि जो उस समय रिजर्व सेना रहती होगी उसको रखने के लिए, या जो शाही सवारियों के लिए जो हाथी यूज होते होंगे उनके लिए।
2: अच्छा।
3: ये हाथी खाना रहा होगा तो हाथी खाने का दरवाजा अभी शेष है। और जैसा आपने कहा था कि दरवाजों पर हाथी भी अंकित होते हैं तो यहाँ पर प्रतिमाएं तो नहीं है लेकिन प्लास्टर पर हाथियों का अंकन है।
2: अच्छा।
3: इसी हाथी खाने में जो खाली पड़ी हुई भूमि है उस पर एक और कक्ष है, उसे बारूद खाना कहते हैं।
2: अच्छा।
3: तो संभवतः यहाँ बारूद वगैरह असला रखा करते होंगे, अस्त्र शस्त्र रखते होंगे। और इसके साथ ही फिर हम दूसरा जो दरवाजा है हाथी खाना से लगकर दूसरा दरवाजा है इसको कहते हैं नक्कार खाना।
2: अच्छा।
3: ये विशाल दरवाजा है, लगभग 3 मंजिला है, इसकी गुंबजाकार छत है
2: जी।
3: और असल में नक्कार खाना वो होता है जब राजा की शाही सवारी निकलती है तो फिर यहाँ पर नगाड़े बजते थे।
2: अच्छा।
3: फूल वगैरह बरसाया करते थे। तो यहाँ पर दरवाजे के अंदर 2 प्लेटफॉर्म भी बने हुए हैं जिसमें कि
2: बैठकर
3: नगाड़े बजाए करते
2: होंगे, ध्वनि करेंगे
3: जी हाँ। और इस नक्कार खाने पर एक छोटा सा अभिलेख भी है जो गोंडी लिपि में है।
2: अच्छा।
3: लेकिन ये इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि इसको हम अभी तक पढ़ तो नहीं पाए हैं।
2: अच्छा।
3: अब जब नक्कार खाने से निकलकर हम दूसरी ओर आते हैं तो हम पहुंच जाते हैं राजा की कचहरी में।
2: अच्छा।
3: राजा की कचहरी का मतलब है दीवाने आम।
2: हाँ, जहाँ दरबार लगता था।
3: जी हाँ, जहाँ दरबार लगता था, आम जनता जहाँ पर आकर राजा से मिलती थी
2: जी।
3: तो अभी भी इसके कुछ अवशेष हैं। एक मंच जैसा हमको दिखाई देगा बड़ा सा, और उसके बीच में एक अष्टकोणीय स्ट्रक्चर है जैसे मान लीजिए कि कोई सिंहासन बना हो। तो अभी तो ये ईंट पत्थर का दिखता है लेकिन इसी सिंहासन को मेरे ख्याल से सुंदर वस्त्रों से, गद्दियों से और से सजाया करते होंगे जहाँ देवगढ़ के राजा बैठते होंगे। अभी तो ये मंच पर छत नहीं है लेकिन पहले लकड़ी, चूना, ईंट, गारे से इसकी छत भी रही होगी। और जहाँ पर गादी है उसके पीछे बड़े ही सुंदर आले बने हुए हैं, तो वहां पर सुंदर सुंदर इत्रदान या रोशनी के लिए दूसरे कुछ उपादान किए जाते होंगे। तो सामने मंच पर राजा बैठते होंगे और सामने जो खाली मैदान पड़ा हुआ है वहां से जनता अपनी बात जी हाँ राजा तक पहुंचाती होगी। और देखने वाली बात क्या है कि अगर नक्कार खाने के दरवाजे को बंद कर दिया जाए, हाथी खाने के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और जो आसपास की दीवारें हैं
2: जी,
3: उन सब पर भी सैनिक खड़े कर दिए जाएं, तो ये जो राजा की कचहरी है ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी जबरदस्त सुरक्षा उस समय रखा करते होंगे।
2: तो जिसे आजकल हम कोई घर बनाने के पहले कहते हैं, कोई जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, तो कितना मजबूत था वहाँ पर, कितनी योजनाएं थी और सारे राज्यों में, सारे गढ़ों में, सारे किलों में कितने पुख्ता इंतजाम किए जाते थे। जी पूजा जी।
3: बिल्कुल। राजा की कचहरी के बाद एक और दरवाजा आता है।
2: अच्छा।
3: यानी कि किले के हम और अंदरूनी भाग में जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है एक बहुत ही मजबूत कक्ष पत्थर की चिनाई से बना हुआ।
2: अच्छा,
3: ये खजाना है।
2: अच्छा,
3: ये राजा का खजाना
2: जी,
3: जहाँ पर खजाना रखते होंगे ऐसा लगता है। लेकिन खजाना रखते थे या नहीं रखते थे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हर किले में जब कर वसूला जाता है तो उसके लिए एक खास कार्यालय होता था। मेरे ख्याल से ये कार्यालय रहा होगा। और वैसे भी हमको इतिहास से पता चलता है कि देवगढ़ के राजाओं द्वारा भी तांबे के सिक्के चलाए गए थे।
2: अच्छा।
3: और उस पर हमको लेख भी मिलते हैं, जैसे कि जाटवा सुत एक नाम आता है
2: जी।
3: एक नाम आता है जाटवा प्रतिराज।
2: अच्छा,
3: ऐसा भी नाम आता है। तो ये जो है टकसाल भी हो सकती है,
2: जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे,
3: जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे या जहाँ सिक्के रखे जाते थे। तो ये एक खजाना है
2: जी।
3: इसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो हमको देवगढ़ के किले में दिखाई देता है एक राजा का महल, इसको बादल महल भी कहते हैं।
2: अच्छा
3: जी हाँ, कई मंजिला है।
2: ओ।
3: और इसके पास ही एक छोटा सा चौकोर तालाब भी दिखाई देता है, जैसे मोतिया ताल है ना, इसी तरीके का एक तालाब।
2: अच्छा, एक और तालाब वहाँ इस पहाड़ी
3: पर है। लेकिन इसमें प्राकृतिक रूप से पानी नहीं आता। देवगढ़ के किले में मैंने देखा कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी दीवारों के बीच में मुझे कुछ टेराकोटा पाइपलाइंस दिखाई दी। और मैंने एक टेस्ट करके भी देखा कि क्या ये बंद है या खुली है या सिर्फ हमको आगे का हिस्सा दिख रहा है और हम इसको पाइपलाइन समझ रहे हैं।
2: हाँ।
3: लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने एक जगह से धुआं किया तो दूसरी जगह से निकला। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कहा ना कि आजकल आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का बड़ा जोर है, उस समय भी था।
2: हाँ, बिल्कुल।
3: तो उस समय यानी कि आज से 400-500 साल पहले भी पानी का वितरण कैसे होगा, बागों तक कैसे पानी पहुंचाया जाएगा, ये पहले ही योजनाबद्ध हो जाता था। क्योंकि जब आप महल की दीवार बना रहे हो उसी समय दीवारों में टेराकोटा की पाइपलाइन बिछाई जाती थी, यानी कि निश्चित था कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। हमको दिखाई देता है कि महलों में कई फव्वारे हैं और फव्वारों को इन्हीं पानी से चलाया जाएगा। दूसरा, जो मैंने पास में तालाब बताया, जो मोतिया तालाब है ना, उससे इस तालाब के बीच में भी पाइपलाइन डली हुई है, यानी कि मोतिया तालाब का पानी जो बाकी के तालाब है देवगढ़ के किले में वहां तक पहुंचाया जाता था। तो ये देखिए कि कितना अच्छा जल प्रबंधन है। बारिश का पानी भी इकट्ठा हो रहा है और मोतिया तालाब का पानी भी लगातार, क्योंकि उसमें तो झिरी है, वो एक वाटर लेवल मेंटेन करेगा। तो जितना पानी है उसका उपयोग किया जा सके, इस तरीके का पूरा प्रबंधन यहाँ पर था।
2: वाह, क्या बात है। देखिए, एक तो इतनी दुर्गम पहाड़ी के ऊपर किला बनाना, रास्ता बनाना, फिर वहाँ पर बहुमंजिला इमारत बनाना, और फिर वो उसके पूरे इमारत और पूरे किले के कोने कोने में टेराकोटा का यूज करके पाइपलाइन बना करके पानी पहुँचाना, निश्चित रूप से क्या कुशल प्रबंधन हमें हमारे पुराने राज्यों में, शासकों में देखने को मिलता है। जल प्रबंधन के लिए तो आपने बताया कि टेराकोटा की पाइपलाइंस वहां पर बिछाई गई, एक प्राकृतिक ताल भी था और एक वर्षा जल वाला भी तालाब था। लेकिन जब आपने फव्वारों का जिक्र किया, तो फव्वारों के लिए तो आज हम प्रेशर के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तब क्या प्रबंधन किया जाता रहा होगा?
3: बिल्कुल, हम पुराने किले महलों में देखते हैं कि फव्वारे भी हैं
2: जी।
3: और उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये फव्वारे कैसे चलते थे? तो संदीप जी, आपको याद होगा हमने 7वीं-8वीं कक्षा में फिजिक्स में पढ़ा होगा साइफन
2: जी,
3: है ना
2: जी।
3: तो ये सिंपल फिजिक्स के नियम है जिनका उपयोग करके प्राचीन काल में भी फव्वारे चलाए जाते थे। साइफन क्या होता है कि यदि हम ऊपर से पानी गिराएं एक यू ट्यूब में
2: जी,
3: तो पानी हमेशा एक लेवल मेंटेन करता है
2: जी।
3: तो जैसा मैंने कहा कि टेराकोटा पाइपलाइन है, तो दीवारों से या महलों की छतों पर किसी भी प्रकार से पंचक्कियों के द्वारा पानी को ऊपर चढ़ाया जाता था और इन टंकियों में संग्रहित कर लिया जाता था। फिर इन टंकियों से होते हुए टेराकोटा पाइपलाइन थे जिनके अवशेष हमको दीवारों में मिल रहे हैं
2: जी।
3: तो ये यू शेप में थे, तो ये दीवार से होते हुए फर्श में होते हुए और फिर जहां गार्डन है या जहां फव्वारा है वहां पर फिर ये ऊपर की तरफ उठते थे ये पाइप
2: जी।
3: लेकिन उतना ऊपर नहीं उठाया जाता था जितना कि छत तक तो नहीं उठाएंगे, तो फर्श के लेवल पे छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि पानी जब छत से नीचे प्रेशर से गिरेगा तो फिर वो प्रेशर से ही ऊपर भी उठेगा। लेकिन यहाँ पर हमने फव्वारे का दूसरी ओर का सिरा है
2: जी।
3: तो और इस तरफ हम क्या करेंगे, इस सिरे को थोड़ा सा सकरा कर देंगे। तो क्या होगा, जब पानी प्रेशर से आएगा तो वो अपने आप फव्वारा बन जाएगा
2: जी। हाँ,
3: तो ये देखिए, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है कि किस तरीके से 500 साल पहले भी हम लोग भौतिकी के नियमों को जानते हैं,
2: को जानते थे और उनका उपयोग कर रहे थे।
3: जी हाँ,
2: कुशलता पूर्वक उपयोग कर रहे थे,
3: उसका उपयोग हम कर रहे थे।
2: वाकई बहुत ही दिलचस्प। देखिए यहाँ पर पूजा जी ने हमें जानकारियां दी हैं। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद इन उपयोगी जानकारियों का।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अब क्योंकि समय सीमा यहाँ पर समाप्त हो रही है, तो हम आपको बता दें इतिहास के पन्नों से ये जो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं इसकी परिकल्पना और निर्देशित किया है सुश्री अदिति गौड़ ने, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने, और मैं यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा अब आपसे इजाजत देता हूँ। गोंड राज्य देवगढ़ के बारे में और बातें जारी रहेंगी, कीजिए इंतजार हमारे अगले एपिसोड का। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद।
1: देवगढ़ के गोंड राज्य की स्थापत्य कला, अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी हमारे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से के अंतर्गत। जानकारी दे रही थी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत कर रहे थे संदीप शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने पेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5,00,000 रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
0: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: कर सोचे आओ, स्वच्छता अपनाओ, सबको स्वस्थ बनाओ, चलो चलो चलो चलो अपने हाथ धो ले।
2: नवे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद। इस कार्यक्रम में आज का विषय है योग वशिष्ठ, बाल्यावस्था एवं युवावस्था के दोष। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और सुनीता सिंह।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन एक नदी की भांति निरंतर बहता रहता है। कहीं बाल्यावस्था की चंचल लहरें हैं, कहीं युवावस्था का प्रबल वेग, और कहीं अनुभवों की गंभीर गहराइयां। संसार इन लहरों के सौंदर्य पर मुग्ध होता रहता है, लेकिन ऋषियों की दृष्टि उस सागर की ओर होती है जहां सभी लहरें अंततः विलीन हो जाती हैं। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में भगवान श्री राम का चिंतन हमें इसी गहन सत्य के समीप ले जाता है। जिस बाल्यावस्था को लोग निष्कपट आनंद का काल मानते हैं, उसमें श्री राम अज्ञान और अस्थिरता की छाया देखते हैं। जिस युवावस्था को संसार सामर्थ्य, सौंदर्य और सफलता का शिखर कहता है, उसमें वो कामनाओं के तूफान, अहंकार के जाल और क्षणभंगुर आकर्षणों की अनिश्चितता का दर्शन करते हैं। और उनकी ये दृष्टि किसी विरक्ति से उत्पन्न नहीं होती, ये उस जागरण का परिणाम है जब मन पहली बार जीवन से पूछता है कि जो बदल रहा है क्या वही सत्य है, जो आज है और कल नहीं रहेगा, क्या इस स्थिति में स्थायी सुख की खोज की जा सकती है। जैसे भोर की पहली किरण अंधकार से उत्पन्न भ्रमों को शांत कर देती है, वैसे ही विवेक का उदय मनुष्य को जीवन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। भगवान श्री राम का वैराग्य उसी विवेक की उज्ज्वल ज्योति है, एक ऐसी ज्योति जो अज्ञान को दूर करती है, जो संसार के यथार्थ का उद्घाटन करती है। आइए योग संवाद में हम उस दिव्य चिंतन के साक्षी बने जहां एक राजकुमार के प्रश्न समस्त मानवता के प्रश्न बन जाते हैं, और जहां वैराग्य जीवन से विमुख होने का नहीं बल्कि सत्य के प्रति जागृत होने का नाम हो जाता है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
4: नमस्कार।
3: योग वासिष्ठ में हमने प्रवेश किया है
4: जी,
3: और भगवान श्री राम के वैराग्य प्रकरण पर चर्चा चल रही है, और आज हम पहुंचे हैं जहां भगवान श्री राम बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर अपनी बात रखते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है शशिकांत जी कि बचपन जो होता है उसको हर इंसान अपने जीवन का स्वर्ण काल मानता है। हम बचपन की स्मृतियों में होते हैं, बचपन सबसे अधिक आनंददायी हमें लगता है, और बचपन के जो स्वाद हैं वही जीवन भर हम तलाशते हैं। ऐसे बचपन को भगवान श्री राम किस तरह से देख रहे हैं, ये आप हमें ज़रूर बताएं कि बाल्यावस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी होती है, वो किस तरह की चेष्टाएँ करता है, क्या कहते हैं श्री राम।
4: देखिए, बाल्यावस्था का जो सौंदर्य है वो बड़े लोग देखते हैं
3: जी।
4: क्या बच्चों को भी बाल्यावस्था में उस आनंद की अनुभूति होती है?
3: बिल्कुल भी नहीं।
4: तो इस बात पर विचार करना है, और जो आपने कहा कि वैराग्य एक प्रकार की जागृति है।

0: धारी जो जीव हैं उनके द्वारा चेष्टा कर रहा है, उनके जैसा चेष्टा कर रहा है, उसके पास अभी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो खिलौनों के लिए रोना, मूढ़ बुद्धता उसके जीवन में दिखाई देगी, दीनता, चंचलता, अभिलाषा, ये सब बाल्यावस्था में उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं हैं। हर जगह जहां भी कहीं देखेगा वो मांग करना शुरू कर देगा। कई बार बच्चों को पालना बड़ा कठिन लगता भी है इसी नाते कि वो कोई भी जिद करता है, अनावश्यक जिद। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक बार किसी राजा ने पूछा, ये अकबर बीरबल के संदर्भ में कहा जाता है, कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है। बीरबल ने कहा कि सबसे कठिन काम है बच्चे को पालना। कैसी बात कर रहे हो आप?
1: जी।
0: तो कहते हैं कि ठीक है, आपको यकीन ना आए तो मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चा क्या चाहिए उसको? तो हाथी चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो एक घड़ा चाहिए। तो घड़ा हाथी दोनों आ गए उसके सामने। फिर बच्चे ने कहा कि अब हाथी को घड़े में डाल दो। तो ये कहते संभव ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के असंभव कार्य बचपन में उत्पन्न होते हैं।
1: भगवान भी जब मानव शरीर लेकर इस धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने भी तो चंद्र खिलौने की जिद की।
0: हाँ, बिल्कुल। हाँ, चंद्र खिलौने की
1: चंद्रमा खिलौने के लिए चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये एक सहज बचपन की जो बचपन की रहती है।
0: लेकिन राम जी जब ये बाल्यावस्था देख रहे हैं, जिस समय जो वैराग्य हुआ है, वैराग्य का मतलब होता है कि उस पक्ष को देखना जो पक्ष नजरअंदाज करके हम जीते रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस समय जो पशु पक्षियों जैसी चेष्टा हो जाती है, इसलिए ये अवस्था जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर के बहुत याद किया जाए। और अक्सर बड़े लोग जब तकलीफों को देखते हैं तो कहते हैं इससे सुंदर बचपन था, बचपन को याद करते हैं, कहते हैं वो दिन कितने अच्छे थे। लेकिन बच्चा देखता है बड़े लोगों को तो सोचता है ये बड़े लोग कितने अच्छे हैं, हम कैसे बड़े हो जाएं,
1: कितनी जल्दी बड़े हो जाएं।
0: तो यही है जीवन, जो चीज मिल जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जब वो खो जाता है तो फिर बहुत कीमती हो जाता है।
1: ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बचपन के ख्यालों में हम खोए रहते हैं, उस आनंद को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन दरअसल जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी चिंताएं, हमारे तनाव, हमारी आकांक्षाएं सब वैसी ही होती हैं, और उसी तरह की परिस्थिति से हम गुजरते हैं जैसे कि बड़े होने के बाद।
0: बड़े होने के बाद
1: वो जो लीलाएं हैं या जो भी बचपना है वो बड़ों के लिए आनंद का कारक होता है, बच्चे के लिए तो नहीं होता। तो चलिए, आपने बताया कि पशु पक्षी की तरह चेष्टा करता है बच्चा जब छोटा होता है, वो बचपन जिसको हम बहुत मूल्यवान समझते हैं, सुखद मानते हैं, उसे श्रीराम किस तरह से देख रहे हैं इस ग्रंथ में?
0: वो कह रहे हैं कि ये जो बचपन को बहुत रमणीय समझता है वो एक प्रकार से मूढ़ बुद्धि है, उसका बार बार धिक्कारण होना चाहिए कि वो ऐसी स्थिति में बचपन को रमणीय समझ रहा है। कहते हैं मुने, सभी प्राणियों का मन अन्य सब अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में ही 10 गुना चंचल हो उठता है। राम जी कहते हैं कि बाल्यावस्था का जो मन है युवा अवस्था या अन्य अवस्थाओं की तुलना में 10 गुना चंचल है। तो उस अवस्था को रमणीय कहना एक प्रकार की मूढ़ बुद्धि होने का प्रमाण है। वो कभी रमणीय नहीं हो सकता, मन स्वभाव से चंचल है, लेकिन इसमें तो 10 गुना चंचल होता है, पदार्थों को ही सबसे बढ़ करके मानता है। और बचपन और मन ये दोनों सभी वृत्तियों में सहोदर की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। यानी आप देखें तो बचपन में मन इतना प्रबल होता है कि जैसे लगता है कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से मन ही जी रहा हो। यहाँ तो आदमी बुद्धि का भी प्रयोग करता है, विवेक का भी प्रयोग कर लेता है, लेकिन बच्चा जो है पूरे समय मन के साथ जीता है। तो जो ये कहते हैं कि वो बचपन और मन ये दोनों सहोदर हैं, एक साथ बचपन में प्रकट होते हैं, तो इसलिए ये अवस्था बहुत ही चंचलता की अवस्था है। यहाँ पर हमेशा दीनता का भाव बना रहता है, देखी और अनदेखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता रहता है, उसकी बुद्धि शरीर दोनों चंचल होते हैं, शरीर में भी चंचलता होती है और बुद्धि में भी होती है। आप देखें तो बच्चा कभी भी शरीर से स्थिर नहीं बैठ सकता,
1: बिल्कुल नहीं,
0: और मन से भी स्थिर नहीं है। आप जब बड़े हो जाते हैं तो कई बार मन अस्थिर होता है, शरीर स्थिर होता है, कई बार शरीर अस्थिर होता है, मन स्थिर होता है। जैसे किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो शरीर से तो आप गतिशील हैं, लेकिन आपका मन तो उस कार्य में लगा हुआ है ना। लेकिन बचपन में ना मन लगता है ना शरीर स्थिर है, ये दोनों के दोनों चंचल हैं। बाल्यावस्था भय का मंदिर कहा राम जी ने, क्योंकि सभी डराते ही तो है बच्चों को, डर डर के उसको खाना खिलाइए तो डरा के खिलाइए, अपने हिसाब से आपको जो करवाना है तो डराइए। तो ऐसे में बच्चा सबसे डरता है और उसके चित्त में अनेक प्रकार के दूषण पैदा होते हैं। बाल्यकाल अविवेक नामधारी विलासी का विलास भवन है, राम जी कह रहे हैं कि ये अविवेक नाम को धारण करने वाला जो विलासी है, जो हर चीज बिना विवेक के करता है, उसी का वो विलास भवन है जहां पर अविवेक से संबंधित सारे कार्य होते हैं।
1: जी
0: इसीलिए आप देखिए बचपन के किसी को याद दिलाओ तुम बचपन में ये करते हो तो बचपन की जिद बड़े होने के बाद आदमी नहीं करता, वो सारी चीजें छोड़ देता है।
1: जी बाल्यावस्था पर भगवान श्री राम क्या सोच रहे हैं वैराग्य दशा में,
0: जी
1: ये हमने जाना। और अब हम आते हैं युवावस्था पर। युवावस्था को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है, ऊर्जा के लिहाज से, अपने सपने पूरे करने के लिहाज से। अपने देश की हम बात कर लें तो भाई यही उसकी बड़ी महानता है कि सबसे अधिक युवा शक्ति वाला देश होने जा रहा है या है। तो उस युवावस्था में अगर अध्यात्म की दृष्टि से बात करें तो चित्त की क्या स्थिति होती है?
0: इस अवस्था में चित्त की स्थिति होती है कि भोग भोगने का उत्साह प्रबल होता है, भ्रांति और काम रूपी पिशाच चित्त को हमेशा दूषित करके नरक में गिराने के लिए उद्दत रहता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसको पिशाच नाम दिया कि, और आज के समय में तो और जहां पर युवा आज डिजिटल डिवाइस के साथ खड़ा है, तो ऐसे में आप देखिए तो उसके चित्त की स्थिति है कि अब तो एक ऐसी बीमारी विकसित हो रही है आज के समय में। बात करें राम जी ने तो उस समय कहा कि वो हमेशा व्यक्ति को नरक में गिराने के लिए उत्सुक रहता है काम रूपी पिशाच, लेकिन यहाँ पर तो आदमी उसका जो अटेंशन स्पेन है वही खत्म हो रहा है, वो कहीं बहुत देर तक एकाग्र नहीं हो सकता। इन संयंत्रों के द्वारा ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि व्यक्ति के चित्त को ऐसे तोड़ दिया जाए कि वो एक मिनट से अधिक कहीं एकाग्र ना हो सके। और जो ये रील देखने का, जो स्क्रॉल करने का जो प्रचलन चला है, वो एक प्रकार का ऐसी ही मानसिक रोग को जन्म देने का कारण बना हुआ है। वर्तमान में धीरे समाप्त हो चुका है, और इसका प्रभाव भी आप देखिए तो आए दिन खबरों में ये बात आती है कि थोड़ी सी बात पर युवा आत्महत्या या तमाम तरह के ऐसे कदम उठाने पर तैयार है कि थोड़ी सी भी सहनशीलता उसमें नहीं है, जबकि इस समय उसके पास शक्ति है, शक्ति का नियंत्रण परम आवश्यक है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा था कि मैं उन माता पिता को ये अपील करूंगा कि जो अपने बच्चों को तमाम सारे शक्ति के साधन अर्पित करते हैं, वो उन साधनों को देने से पहले उनके अंदर संस्कार पैदा करें। अगर संस्कार नहीं पैदा करेंगे तो वो सारे साधन ही उनके विनाश की वजह बनेंगे। और आज देखिए पाश्चात्य देशों में कई बार स्कूलों में बच्चे बंदूक चला देते हैं, हत्याएं कर देते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति होती है किशोरावस्था में कि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता, भावनाएं स्थिर नहीं होती, उसको मनोविज्ञान में तो आधी तूफान की अवस्था कहते हैं कि ऐसे भावनात्मक अस्थिरता का दौर होता है और आदमी भावनात्मक निर्णय देता है और भावनात्मक निर्णय हमेशा दोषपूर्ण होगा, ऐसा देखा गया है। तो इसमें जो चित्त की स्थिति होती है वो बार बार जो यौवनारूढ़ होता है वो निश्चित तौर पर कामनाओं के अधीन होता है, और कामनाओं का जो पिशाच है वो नर्क की तरफ व्यक्ति को ले जाता है, दुख से दुख को ही प्राप्त करता है इस अवस्था में व्यक्ति।
1: तो ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि युवावस्था में चित्त की दशा क्या होती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कहता है ये ग्रंथ कि यौवन का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
0: इसको कहते हैं राम जी कि हे मुने, इस अवस्था को जब मैंने देखा तो युवावस्था में स्त्री द्युत कलह आदि दुर्व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग लोभ आदि प्रसिद्ध दुष्ट दोष उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के चित्त में, और इसको राम जी कहते हैं कि ये नरक का बीज है। युवा अवस्था को नरक का बीज कहा, जबकि ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति बहुत शक्ति संपन्न होता है। तो अगर ये नरक का बीज है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य करा पाने में ये सक्षम है कि जहां व्यक्ति नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो जाए। इसीलिए आप देखिएगा कि ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि जिस अवस्था को किसी ने साध लिया तो वो पूरे जीवन को अपने अनुरूप जी सकता है, और जिसका ये अवस्था नहीं सदा युवा अवस्था,
1: इस अवस्था में बह गया
0: तो वो भटक जाता है। कहते हैं ना कि आप चंद खुशियों के लिए पूरे जीवन भर रोना चुन सकते हैं, और थोड़े दिन की साधना कर लें अगर युवा अवस्था की तो पूरे जीवन आप हंस सकते हैं, आनंद के साथ रह सकते हैं। और जिन लोगों ने साधा वो निश्चित तौर पर सफल हुए, सफल कहे भी जाते हैं। तो राम जी कहते हैं कि नरक का बीज है और सदा भ्रांति पैदा करता है। यौवन के द्वारा जिसका नाश नहीं हुआ वे मनुष्य किसी दूसरे से नष्ट ही नहीं हो सकते। यानी आप देखिए कि ये कैसी अवस्था है, जिस अवस्था को अगर आपने साध लिया तो फिर किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको नष्ट कर सके। तो यौवन कितना मतलब कठिन अवस्था है, जहां पर कहते हैं इस अवस्था ने अगर नष्ट नहीं किया तो फिर उसको कोई और मनुष्य नष्ट नहीं करेगा। यानी नष्ट होने के सारे जो साधन हैं वो इसी अवस्था में होने की संभावना है, और जीवन में देखें तो जीवन के सारे उत्थान भी इसी अवस्था में होने की संभावना है। तो ये बहुत ही कह सकते हैं विचार करने योग्य अवस्था है। जी
1: अच्छा, भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि युवावस्था कैसी है?
0: युवावस्था के लिए वो कहते हैं कि यह अमंगलकारी यौवन है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो भोगों के समय मधुर एवं स्वादिष्ट लगता है और अंत में दुखदायी होने के कारण तिक्त प्रतीत होता है। और आप देखें तो संसार का कोई भी भोग ऐसा नहीं है जिस भोग को भोगने के बाद पछतावा ना हो। तो ये कहते हैं कि अंत में तिक्त प्रतीत होता है और इसमें दोष ही दोष भरे हैं, सब दोषों का ये आभूषण है, मदिरा के मद के विलास के समान मोहक है। जैसे मदिरा में आदमी मद के सम्मोहन में आ जाता है, वैसे ही ये अवस्था है जिसमें आदमी दोषों के आभूषण को पहन लेता है और दोषपूर्ण कार्य के प्रभाव में आ जाता है और दोषपूर्ण कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है।
1: जी जी जी। लेकिन तभी जबकि युवावस्था साधा न जाए, अगर साध लिया तो फिर जिंदगी भर आनंद की भी स्थिति
0: बिल्कुल
1: होती है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, युवावस्था में व्यक्ति को क्या महसूस होता है, क्या कहते हैं युवराज राम?
0: जी, कहते हैं कि इस अवस्था में असत्य होकर भी सत्य प्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देने वाला है, तथा स्वप्नावस्था में जिस तरीके से हम तमाम सारे सुख वैभव भोग रहे होते हैं और उस भोग में स्वप्न टूटने के बाद वो खत्म हो जाता है, वैसे ही इस अवस्था की स्थिति है कि यहाँ पर भी आदमी स्वप्न के भोगों की भांति सुख की तरफ भागता है और जबकि सच ये है कि जाता है उसके पास और फिर जैसे वो मृग जो है पानी के भ्रम में दौड़ता है रेगिस्तान में और उसमें प्यास बढ़ता है, उसकी प्यास बुझती नहीं है,
1: प्यास बढ़ती
0: और अंत में वो प्यास से ही मर जाता है। तो ठीक ऐसी ही अवस्था है जहाँ पर जिन विषयों के प्रति व्यक्ति भागता है उन विषयों के प्रति और आकर्षण या और प्रबलता से उन भोगों की इच्छा और जन्म लेती है, इसलिए इन्होंने कहा कि ये आभूषण है दुख का, अमंगलकारी है और इसमें व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मतलब असत्य में सत्य सा प्रतीत होता है, वहां सत्य है नहीं, सुख है नहीं, लेकिन वहीं वो सुख खोजता है। जैसे आप देखिए ना, युवावस्था में बच्चे जहां जाकर के अपना समय बिताते हैं उसका वास्तव में वो अगर विश्लेषण करें तो क्या उस समय का उनके जीवन में कोई उपयोग है? अगर देखें तो वो जो करने योग्य है वो न करके जो नहीं करने योग्य है उनमें अधिक ध्यान देते हैं और अधिक समय व्यतीत करते हैं।
1: जी, जी,
0: तो इसलिए उसमें बहुत ध्यान की आवश्यकता होती है। असत्य कहा उन्होंने।
1: जी जी। अच्छा, ये बताएं कि इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है, एक युवा जो होता है, उसकी बुद्धि किस तरह से काम करती है?
0: जी, इस अवस्था में उसकी बुद्धि युवावस्था में सबको कष्ट प्रदान करने वाला जो आयोजन है, व्यक्ति उस तरफ बढ़ता है और उसकी बुद्धि मोह से युक्त होती है और बुद्धि कुंठित कर देता है मोह, और इस भ्रम से प्रेरित होकर वो अतिशय मात्रा में भ्रम का उत्पादन करता है। यानी बुद्धि जो होती है वो भ्रमोत्पादक होती है, माने भ्रम का निवारण करने वाली नहीं होती, भ्रम का उत्पादन करने वाली होती है। राम जी तो कहते हैं जैसे दावाग्नि वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार युवा अवस्था में जीव प्रियतमा के वियोग जनित दुस्सह शोकाग्नि से मन ही मन जलता रहता है, ऐसी स्थिति होती है। जैसे अत्यंत निर्मल विस्तृत और पवित्र नदी भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम निर्मल विशाल और शुद्ध बुद्धि भी युवावस्था में कलुषित हो जाती है। इसका आशय ये है कि अगर हम मन के या युवा अवस्थाओं के इस स्थिति को जान लें तो हमारे अंदर सावधानी बढ़ेगी, हम सजग होंगे, न कि ये उसका निंदा है। निंदा नहीं है
1: बिल्कुल, क्योंकि निंदा कहा भी नहीं, दोष कहा।
0: हाँ, दोष कहा है, दोष है। तो जब दोष की बात आती है तो इसका मतलब सावधान होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। जी,
1: ऐसा नहीं कि युवावस्था मूल्यहीन है,
0: नहीं नहीं बिल्कुल,
1: अत्यंत मूल्यवान है। लेकिन उसके जो दोष है उसको हम जब जान लेंगे
0: तो सजग रहेंगे
1: बिल्कुल,
0: अवेयर रहेंगे। जी,
1: अक्सर इस बातचीत में हम गुणों की चर्चा करते हैं, योग संवाद कार्यक्रम में कई बार गुणों की चर्चा हुई है कि हर इंसान की एक प्रकृति होती है, कुछ गुण होते हैं जो कम या ज्यादा होते हैं हर व्यक्ति में, तो क्या अवस्था के हिसाब से भी इन गुणों का घटना या बढ़ना होता है? युवावस्था में किन गुणों की वृद्धि होती है?
0: आपने बहुत सुंदर सवाल किया और बिल्कुल ऐसे ही इस अवस्था का वर्णन करते हुए राम जी गुरु जी से कहते हैं अपने जी, जी। कहते हैं कि ये वो अवस्था है जिसमें रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण यह विषम अवस्था है, यानी ये दो गुण जो हैं इसमें इतने प्रबल हैं कि सत्व गुण जो प्रकाश देता है, जो ज्ञान का प्रतीक है, वो हमेशा ये दोनों ढक लेते हैं। व्यक्ति जो सोचता है वो करने के लिए क्रियाशील होता है, जो विचार उसके मन में आया या जिस भी विषय के भोग या जिस वस्तु या व्यक्ति से मिलने की आकांक्षा विकसित हुई वो उसी के चिंतन में निरंतर रत रहेगा या उसी को प्राप्त करने की चेष्टा में निरंतर रत रहेगा। उसका क्या परिणाम होगा या वो करणीय है या अकरणीय है, ये विचार करने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहता, क्योंकि ये विचार करने के लिए सत्वगुण का प्रकाश चाहिए और सत्वगुण का प्रकाश ढक जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं कि नहीं होता, जो लोग साधते हैं वो सत्वगुण भी होता है, क्योंकि हर गुण में ये तीनों गुण होते हैं, तो लेकिन इस गुण की वृद्धि होती है, इस गुण की पूर्णता होती है इस अवस्था में। सद्गुण की स्थिरता को नष्ट करने में ये दोनों गुण दक्ष हैं, रजोगुण और तमोगुण, तो इसका जो है काफी विस्तार रहता है इस अवस्था में। और व्यक्ति इसी अवस्था से प्रेरित होकर के हमेशा क्रियाशील भोग की तरफ उन्मुख रहता है। जी, ये इस अवस्था के दोष।
1: अच्छा, अभी आपने चर्चा की मृग तृष्णा की।
0: हाँ,
1: यौवन को मृग तृष्णा कहा क्यों भगवान श्री राम ने?
0: मृग तृष्णा इसको इसलिए कहा कि आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं ये संसार एक मृग तृष्णा, कई बार अध्यात्म में मृग तृष्णा शब्द का बड़ा उपयोग किया जाता है कि ये जगत जैसे मृग को पानी का भ्रम होता है, उन उड़ती हुई रेतों में प्रकाश के अपवर्तन या प्रक्रिया के कारण उनको भ्रम होता है, और उसी तृष्णा से वो मृग उस पानी में प्राण गंवा देता है, अपना जीवन गंवा देता है, जबकि वहां पानी है नहीं। जितना ही दौड़ता है, जैसे हम कहते हैं ना क्षितिज पर आसमान और धरती को मिलते हुए हम देखते हैं आकाश और धरती का संध देखते हैं, लेकिन कहीं होता नहीं है, तो ठीक ऐसे ही इस जगत में व्यक्ति मृग तृष्णा जगत की होती है उसे, और युवा अवस्था में ये इतनी प्रबल होती है कि जिसमें व्यक्ति करने योग्य कर्म त्याग करके हमेशा प्यास बढ़ाने के क्रम में भागता रहता है। जैसे मृग प्यास बुझाने के प्रयास में दौड़ता है और प्यास बढ़ाता है, वैसे युवा अवस्था में आदमी अपने इच्छाओं को शांत करने की कोशिश में इच्छाओं को और बलवती करता है और उन इच्छाओं का वशीभूत होता है और इच्छाओं का पूरी तरीके से गुलाम होकर अपने भविष्य तक को नष्ट कर डालता है, अपने जीवन के उद्देश्य तक को भूल जाता है। या देखें तो जीवन में जो कहा गया नरक का बीज, यानी जीवन को नारकीय बनाने वाला अगर कोई अवस्था है तो युवा अवस्था है, अगर नहीं साधा गया या उनके दोषों के साथ हम सजग नहीं हुए तो। और सजग जो लोग हो जाते हैं वो पूरे जीवन जो है अपने जीवन को अपने वश में कर करके जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए मृग तृष्णा से नाम दिया उन्होंने कि जिसमें प्यास बुझाने की कोशिश में प्यास की ही बढ़ोतरी होगी और अंततः आदमी प्यासा ही मर जाएगा।
1: जी, तो आज योग संवाद कार्यक्रम में हमने योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण से चर्चा की कि बाल्यावस्था और युवावस्था के क्या दोष हैं, और विस्तार से आपने बताया कि भगवान श्री राम की दृष्टि क्या देख रही है दोनों अवस्थाओं में। जो आज के हमारे लोग हैं, जो आज के युवा हैं या आज के जो बच्चे हैं, क्या कहेंगे आप उनसे?
0: उनसे मैं यही कहूंगा कि यौवन रूपिणी जो रात्रि है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, इसका वो याद रखें। और उस
1: युवावस्था को रात्रि कहा,
0: रात्रि कहा राम जी ने, कहा कि ये रात्रि है, इसको दिन और हम लोग दिन समझते
1: दिन
0: हैं। देखिए कितनी दृष्टि, तो वो इसका अर्थ ये नहीं कि दिन नहीं है, दिन है तो रात को भी याद करो। योग का अर्थ ये नहीं हुआ, योग का अर्थ किसी एक पक्ष तक नहीं, समग्रता से देखने का जो कौशल है वो है योग। और योग बिना वैराग्य के, मैं स्पष्ट करूंगा कि वैराग्य का अर्थ कदापि ये नहीं है कि हम पलायन करें, वैराग्य पलायन नहीं है, वैराग्य जागरण है, एक सत्य का जागरण, जिसके बाद आप योग वासिष्ठ में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण की बात करेंगे। राम जी, जब वैराग्य की जब बात हो जाएगी कि वैराग्य किन किन कारणों से उनको हुआ है, तो जब गुरु से अपने पूरे चित्त की बात। अच्छा, एक बात और भी आप देखिएगा कि जब आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो उसको कहना चाहिए, कह करके ही आप उससे मुक्त होते हैं। कई बार हम उसी गुंतेड़े में उलझे रहते हैं, न कह पाते हैं और न मतलब छूट पाते हैं, तो वो बार बार हमारे अंदर बना रहता है और फिर हमको अस्थिर करता है हमारे भावनाओं को। इसलिए कहते हैं, एक मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कैथार्सिस, जिसमें कहते हैं हम लोग उसको निकालिए। तो यहाँ पर राम जी को जिन जिन कारणों से वैराग्य हुआ है, वो सारे कारण पहले वो गुरु से कह रहे हैं।
1: बिल्कुल, है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है।
0: और गुरु उसके लिए प्रसन्न हो रहे हैं सुनकर। ऐसा नहीं जैसे आपके सामने कोई आकर के ऐसे कहे तो हो सकता है कि आप उसे पॉजिटिव या उसको नेगेटिव कहने लगे। गुरु कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये विवेक से उत्पन्न हुआ है। तो राम जी को वो उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि तुम इन सारी बातों को कहो, देखो, क्योंकि वो देखना आवश्यक है। जब तक संपूर्णता से किसी चीज को नहीं देखेंगे तब तक आप मतलब न्यायशील नहीं हो पाएंगे।
1: बिल्कुल, और यही एक संदेश आज के माता पिता के लिए भी आपकी तरफ से हो गया, जो मैं समझ रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि बच्चा अगर गुमसुम हो जाए, किसी चिंतन में दिखाई दे बार बार असामान्य रूप से,
0: जी,
1: तो जिस तरह राम बोले इसके लिए प्रयास गुरुजनों का है, पिता का है, इस तरह का प्रयास परिवार में माता पिता का भी होना चाहिए।
0: बच्चा अगर बचपन के साथ नहीं है, या हम अपने आकांक्षाओं के नाते बच्चों को बचपन के साथ न रख करके उसे अपने जैसा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है और हमारी बहुत बड़ा अनदेखापन है कि हम बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्यों अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। आपका उससे संवाद होना चाहिए, ये एक संवाद है, योग संवाद है, वाद प्रतिवाद नहीं है, संवाद है। संवाद में जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहेगा तो उसको आप कहने का पूरा अवसर दीजिए ताकि वो कह के उससे मुक्त हो सके और फिर उसके दूसरे पक्ष को उसके सामने आप रख सकें, तभी तो योग होगा, तभी तो जुड़ना होगा। तो ऐसे में गुरुजी के सामने वो अपने मन की पूरी बात रख रहे हैं और वो बाल्यावस्था और युवावस्था के उन दोषों को देख रहे हैं, क्योंकि जहां बाल्यावस्था युवावस्था में जो लोग उन्हें आनंदित दिख रहे हैं उसके दूसरे पक्ष को राम जी देख रहे हैं, क्योंकि राम जी तटस्थ हैं, राम जी का विवेक जगा हुआ है और उन लोगों का जो भोग में लिप्त हैं वो विवेक के साथ नहीं है, वो तो उस अवस्था में बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं कि और हम किस तरीके से इस अवस्था में डूब सकें।
1: जी जी जी,
0: राम जी डूबने वाले नहीं है, वो तो जागे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर मतलब मैं कहता हूँ कि बड़ा सुंदर ये ग्रंथ है कि जहां पर स्वयं जो परम योगीश्वर है वही उन भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है जो आम लोगों के अंदर उत्पन्न होता है।
1: बिल्कुल। तो शशिकांत जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज योग संवाद कार्यक्रम में बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर, और मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी बातचीत है ये। अपने जीवन में भी जो हमारे सुनने वाले हैं वो इसको उतार सकते हैं और इस तरह से युवावस्था और बाल्यावस्था को देखा जाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपका रहा, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे थे बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, और इस कार्यक्रम से मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: बाल्यावस्था एवं युवावस्था के दोष, यह विषय था आज के योग संवाद कार्यक्रम का। इस विषय पर जानकारी दी डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी ने और इनसे बातचीत कर रही थी सुनीता सिंह। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। आज के इस कार्यक्रम में हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं समाज सेवी ओमियो कुमार दास के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह।
2: मैं हूं आपका दोस्त दीपक नेमा।
1: श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी, समाज सेवी और गांधीवादी विचारक लोकनायक ओमियो कुमार दास की। श्रोताओं, आज हम उस महान आत्मा को जानने समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का, एक ऐसे महापुरुष जो केवल असम के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव हैं।
2: लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन साधारण नहीं बल्कि असाधारण त्याग, तपस्या और समर्पण की एक अद्भुत गाथा है। वे एक ऐसे युग के साक्षी और निर्माता थे जब भारत की आजादी के लिए हर घर से दीप जल रहे थे, हर सीने में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। उस महान स्वतंत्रता संग्राम में ओमियो कुमार दास जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। आज के इस कार्यक्रम में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे, उनके योगदान को समझेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: श्रोताओं, ओमियो कुमार दास, जिन्हें लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, समाज सेवी, गांधीवादी विचारक, शिक्षाविद और असम के प्रमुख राजनेता थे। उनका जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्र सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया।
2: ओमियो कुमार दास का जन्म 21 मई 1895 को असम के नागांव जिले में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कारों से युक्त किया। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना और समाज सेवा की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तेजपुर हाई स्कूल में हुई। तेजपुर, जो असम का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, वहां की शैक्षणिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल के दिनों से ही वे मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे।
1: प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ओमियो कुमार दास ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉटन कॉलेज असम का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था, जहां उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हुई। यहां उनका संपर्क विभिन्न राष्ट्रवादी विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से हुआ। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सिटी कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी। कलकत्ता उस समय भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। यहां उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिला। इन महान नेताओं के विचारों और कार्यों ने युवा ओमियो कुमार दास को गहराई से प्रभावित किया।
2: कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। वे छात्र संगठनों से जुड़े और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। ये उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब ओमियो कुमार दास ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे गांधी जी के आदर्शों, सत्य, अहिंसा और स्वराज से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने असम में असहयोग आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
1: युवा ओमियो कुमार दास ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छात्रों और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उनके प्रभावशाली भाषणों और निष्ठा ने कई युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ओमियो कुमार दास इसके असम में प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया और नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की।
2: इस आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन जेल की कठोर परिस्थितियां भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकी। जेल में रहते हुए भी वे अन्य कैदियों को प्रेरित करते रहे और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनकी निष्ठा बनाए रखते रहे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा निर्णायक मोड़ था। ओमियो कुमार दास ने असम में इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो ओमियो कुमार दास ने इसे पूरी तरह से अपना लिया।
1: इस आंदोलन के दौरान गोपीनाथ बारडोली और सिद्धिनाथ शर्मा जैसे नेताओं के साथ ओमियो कुमार दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें असम के विभिन्न जेलों में कैद किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया। पूरे असम में लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ओमियो कुमार दास को अनेक बार कारावास में डाला गया। उन्होंने कुल मिलाकर कई वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उनकी अटूट देशभक्ति और निरंतर संघर्ष ने उन्हें असम के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया।
2: ओमियो कुमार दास की योग्यता और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। ये उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1945 में उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया, जहां उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद ओमियो कुमार दास ने अपने राजनीतिक कार्य को जारी रखा। उन्होंने ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीता। इन वर्षों के दौरान उन्होंने असम सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर कार्य किया।
1: जब ओमियो कुमार दास असम के श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने चाय बागान मजदूरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। असम में चाय उद्योग एक प्रमुख आर्थिक स्तंभ था, लेकिन चाय बागान के मजदूर अत्यंत शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते थे। ओमियो कुमार दास ने चाय बागान मजदूरों के लिए भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की स्थापना की। ये पहल एशिया में अपनी तरह की पहली योजनाओं में से एक थी। इस योजना ने हजारों मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: उन्होंने मजदूर वर्ग को संगठित करने और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। शिक्षा मंत्री के रूप में ओमियो कुमार दास ने असम में बुनियादी शिक्षा योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाना था।
1: उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। ओमियो कुमार दास ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि असम के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उचित आपूर्ति हो। उन्होंने विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
2: ओमियो कुमार दास केवल एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने असमिया भाषा में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। ओमियो कुमार दास की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसका असमिया भाषा में अनुवाद था। उन्होंने इसे मोर सत्य अनेश्वर काहिनी शीर्षक से अनुवादित किया।
1: ये अनुवाद असम के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उन्हें गांधी जी के जीवन और विचारों को उनकी अपनी भाषा में समझने का अवसर दिया। इस अनुवाद ने असम में गांधीवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास ने महात्मा गांधी पर कई अन्य पुस्तकें भी लिखीं। गांधी जीर जीवनी अर्थात गांधी जी की जीवनी, ये पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। महात्मा गांधी आमी किदोर बुजिलू अर्थात महात्मा गांधी को मैंने कैसे समझा, इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है।
2: असमोत महात्मा, असम में महात्मा, ये पुस्तक महात्मा गांधी की असम यात्रा और असम में उनके प्रभाव पर केंद्रित है। इन पुस्तकों ने असम के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास की लेखनी सरल और प्रभावी थी, जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकती थी। ओमियो कुमार दास का जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वे एक समर्पित समाज सेवी थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगा दिया।
1: ओमियो कुमार दास कई गांधीवादी और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे। ओमियो कुमार दास ने इस संगठन के माध्यम से असम में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से भी वो जुड़े थे। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया। इसके साथ ही भारत सेवक समाज से भी उनका संबंध था। ये संगठन समाज सेवा के लिए समर्पित था और ओमियो कुमार दास इसके सक्रिय सदस्य थे।
2: गांधी स्मारक निधि, ये संगठन महात्मा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। ओमियो कुमार दास इससे सक्रिय रूप से जुड़े थे। कस्तूरबा स्मारक निधि, ये संगठन महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता था। असम सेवा समिति, ये असम का एक प्रमुख समाज सेवी संगठन था जिसके संस्थापकों में ओमियो कुमार दास भी थे। ओमियो कुमार दास ने असम में नशा विरोधी अभियान चलाया। उस समय असम में विशेष रूप से चाय बागानों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन एक बड़ी समस्या था। उन्होंने लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाए।
1: ओमियो कुमार दास ने कुष्ठ रोग और तपेदिक से पीड़ित रोगियों के पुनर्वास के लिए भी कार्य। उस समय ये रोग एक बड़ी सामाजिक समस्या थे और इन रोगों से पीड़ित लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ओमियो कुमार दास ने इन रोगियों के लिए उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया। ओमियो कुमार दास एक सरल और विनम्र व्यक्ति थे। उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था। वे सत्य और अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें लोक नायक कहकर पुकारा करते थे।
2: उनमें अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाने और उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित करने में सक्षम थे। उनकी वाणी में जादू था। जब वे सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। ओमियो कुमार दास एक निडर व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका नेवर से डाई, कभी हार ना मानने वाला दृष्टिकोण उनके चरित्र का एक प्रमुख पहलू था।
1: श्रोताओं, वो एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति भी थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका थी। दोनों ने मिलकर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्य किए। उनकी बेटी ने भी पिता के आदर्शों का अनुसरण किया। ओमियो कुमार दास के समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1963 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के समर्पित कार्य के लिए दिया गया था।
2: भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने 15 मई 1998 को ओमियो कुमार दास के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये सम्मान उनके महान योगदान की स्वीकृति थी। 1995 में ओमियो कुमार दास की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुवाहाटी में ओमियो कुमार दास सामाजिक परिवर्तन और विकास संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। ये संस्थान सामाजिक शोध और विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। ढेकियाजुली में एक कॉलेज को लोकनायक ओमियो कुमार दास कॉलेज के नाम से नामित किया गया है। ये कॉलेज उनकी स्मृति में स्थापित किया गया है और असम में युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करता है।
1: ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी सन 1975 को हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग 79-80 वर्ष थी। उनके निधन से असम और पूरे भारत ने एक महान नेता और समाज सेवी को खो दिया। उनकी मृत्यु पर असम में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के समय उनकी पत्नी पुष्पलता दास और उनकी बेटी जीवित थीं। पुष्पलता दास स्वयं एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और संसद सदस्य थीं। उनका निधन सन 2003 में हुआ।
2: ओमियो कुमार दास की विरासत आज भी असम में जीवित है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। चाय बागान मजदूरों के लिए उनके द्वारा स्थापित भविष्य निधि योजना आज भी लाखों मजदूरों को लाभान्वित कर रही है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा किया गया गांधी की आत्मकथा का अनुवाद आज भी असम में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। ये पुस्तकें नई पीढ़ियों को गांधी जी के विचारों और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से परिचित कराती हैं।
1: ओमियो कुमार दास ने असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई संस्थान स्थापित किए और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। असम की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने चाय बागान मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। उनकी पहल से चाय बागान मजदूरों को न केवल बेहतर वेतन मिला बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई।
2: उन्होंने असम की बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी विरासत को समझा और सभी समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने चाय बागान मजदूरों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। ओमियो कुमार दास ने असम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने कृषि सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता की जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि स्वस्थ समाज ही विकसित समाज हो सकता है।
1: ओमियो कुमार दास के जीवन का केंद्र गांधीवादी विचारधारा थी। उन्होंने महात्मा गांधी के तीन प्रमुख सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और सर्वोदय को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। सत्य उनके जीवन का आधार था। वे हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके चरित्र की पहचान थी।
2: ओमियो कुमार दास अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उन्होंने हमेशा अहिंसक तरीकों को अपनाया। वे मानते थे कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि अहिंसा के माध्यम से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय यानी सभी का उत्थान उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे किसी एक वर्ग या समुदाय के विकास में विश्वास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान करना था। उन्होंने अपने जीवन में इस आदर्श को साकार करने का प्रयास किया।
1: गांधी जी की तरह ओमियो कुमार दास भी खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रबल समर्थक थे। वे हमेशा खादी के वस्त्र पहनते थे और लोगों को भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने असम में खादी उद्योग के विकास के लिए भी प्रयास किया। ओमियो कुमार दास महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास स्वयं एक सशक्त महिला थीं, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। ओमियो कुमार दास ने महिलाओं को शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
2: उन्होंने कस्तूरबा स्मारक निधि के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित करने में सहायता की। ओमियो कुमार दास का मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उन्होंने अपने जीवन में इस विचार को व्यवहारिक रूप दिया।
1: ओमियो कुमार दास युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। ओमियो कुमार दास ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
2: ओमियो कुमार दास अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहे, चाहे जेल की यातनाएं सहनी पड़ी या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास शिक्षा को समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के प्रसार के अथक प्रयास किए। युवाओं को उनसे ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही जीवन में सफलता की कुंजी है।
1: ओमियो कुमार दास ने सभी वर्गों और समुदायों के बीच समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। युवाओं को उनसे सामाजिक सद्भाव और एकता का पाठ मिलता है। ओमियो कुमार दास के जीवन में अनेक संघर्ष और चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में कठोर यातनाएं भी दी गईं। लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत किया।
2: स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण ओमियो कुमार दास को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी आर्थिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उस समय समाज में ये प्रथाएं गहराई से जड़े जमाई हुई थीं। उन्हें इन रूढ़ियों को तोड़ने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने प्रयासों में सफल रहे।
1: ओमियो कुमार दास के समकालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे। महात्मा गांधी उनके आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से भी भेंट की और उनके मार्गदर्शन में काम किया। गांधी जी भी ओमियो कुमार दास के समर्पण और कार्य से प्रभावित थे। स्वतंत्र भारत में ओमियो कुमार दास का संबंध कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन नेताओं के साथ काम किया।
2: असम के अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गोपीनाथ बारडोली, तरुण राम फूकन और अन्य के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध थे। इन सभी नेताओं ने मिलकर असम में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। लोकनायक ओमियो कुमार दास का जीवन त्याग, तपस्या और समर्पण की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, कुशल प्रशासक, प्रभावी लेखक और समर्पित समाज सेवी भी थे।
1: उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार में अपनाया और इस प्रकार एक आदर्श जीवन जिया। आज भी असम और पूरे भारत में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। लोकनायक अर्थात जनता के नायक, जिन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया।
2: ओमियो कुमार दास की जीवनी युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता त्याग में है, सेवा में है, निस्वार्थ भाव में है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से पूरे समाज को बदल सकता है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के मार्ग पर चलकर ही मानवता का वास्तविक विकास संभव है। दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम भारत विभूति में हमने ढेर सारी बातें की लोकनायक ओमियो कुमार दास जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा,
1: और मैं थी आपके साथ सुनीता सिंह।
2: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: भारत विभूति, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम समाज सेवी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ओमियो कुमार दास के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुन रहे थे। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जेम्स रबी की हत्या, एक मौत जिसने साम्राज्य को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। क्या आप जानते हैं कि 1887 में एक सुदूर जंगल में एक अकेले ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मी साम्राज्य के बीच लगभग युद्ध छेड़ दिया था। वो व्यक्ति था जेम्स रबी, और नाफ नदी के मुहाने पर हुई उसकी मौत केवल एक साधारण अपराध नहीं थी, ये उस मानवीय आपदा का रक्त रंजित चरमोत्कर्ष था जिसे अंग्रेज हताशा में अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। कहानी 1785 में शुरू होती है, जब बर्मा ने अराकान पर आक्रमण किया, जिसके कारण हजारों शरणार्थी भागकर कंपनी के चटगांव जिले में आ गए। ये मगह शरणार्थी अंग्रेजों के लिए कृषि श्रम का एक संभावित जरिया थे, लेकिन वे एक राजनयिक दुस्वप्न भी थे। बर्मी जनरल वानकेचा उच्च पदस्थ अराकानी विद्रोहियों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था और उसे कंपनी की सीमाओं की कोई परवाह नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने शरणार्थियों की इस पहली लहर को कैसे संभाला? उन्होंने उन्हें जुआओ डी बैरोस नामक एक पुर्तगाली जमींदार की देखरेख में रख दिया और उसे एक मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब बर्मी सेना ने वास्तव में सीमा पार की, तो कंपनी की स्थानीय सेना, जो संसाधनों की कमी से जूझ रही थी और अपनी हार से डरी हुई थी, पीछे हट गई। ये महसूस करते हुए कि ब्रिटिश सुरक्षा एक खोखला वादा है, शरणार्थी पहाड़ियों में भाग गए और जीवित रहने के लिए मुक्त लूटपाट और डकैती का रास्ता चुन लिया। इसी अराजकता के बीच जेम्स रबी को लूट लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रवि की मौत तक स्थानीय कलेक्टर छिपाने की संस्कृति का पालन कर रहा था। वो कलकत्ता में अपने वरिष्ठों के सामने अक्षम न दिखने के लिए बर्मी छापों की रिपोर्ट को हल्का करके पेश करता था। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी खबर थी जिसे अधिकारी अब दबा नहीं सकते थे, जिसने फोर्ट विलियम्स की केंद्र सरकार को आखिरकार ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि उनकी दक्षिणी सीमा एक कानून विहीन शून्य बन गई है। इस संकट का परिणाम वास्तव में विचित्र था। बर्मी गवर्नर वाजा, जिसे पेगु राजा के नाम से जाना जाता है, उसने रवि की हत्या को एक प्रोपेगेंडा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने ब्रिटिश कलेक्टर को एक ताना मारते हुए पत्र लिखा, जिसमें दावा किया गया कि वो 4,000 मस्कटधारियों के साथ चटगांव पर आक्रमण कर रहा है ताकि कानून व्यवस्था लागू की जा सके और उन लुटेरों को पकड़ा जा सके जिन्होंने अंग्रेज को मारा था। क्या आप इस संकट की दुखद विडंबना जानते हैं? कलेक्टर शियरमैन बर्ड ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शरणार्थियों को लुटेरा घोषित कर दिया और कहा कि वे कभी भी देश की कोई आवश्यक सेवा नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से इस तथ्य को भूल गए कि सुरक्षा प्रदान करने में उनकी अपनी विफलता ने ही उन्हें अपराध के लिए मजबूर किया था। जेम्स रवि की मौत इस बात की याद दिलाती है कि विचारों के साम्राज्य में ईआईसी अक्सर अपने झंडे के नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा से अधिक सत्ता की छवि की परवाह करती थी।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सोलहवीं शताब्दी की शुरुआत में होर्मुज या जारून का द्वीप शहर एक विरोधाभास था। यह एक खारा बंजर चट्टान पर स्थित नगर था, जहां नमक के अलावा कुछ पैदा नहीं होता था और पीने के लिए ताजा पानी तक नहीं था। फिर भी यह वैश्विक समुद्री व्यापार के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक था। हालांकि यहां नाम मात्र के लिए अरब मूल के शाहों का शासन था, लेकिन सत्ता की असली बागडोर एक अप्रत्याशित व्यक्ति के हाथ में थी, ख्वाजा अता, जिसे पुर्तगाली कोजितियार के नाम से बोलते थे, जो बंगाल मूल का एक हिजड़ा हुआ करता था। ख्वाजा अता का उत्थान शुरुआती आधुनिक एशिया में कुलीन वर्गों के संचलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बंगाल में जन्मे अता को हजारों मील दूर फारस की खाड़ी की जटिल राजनीतिक दुनिया में लाया गया। अपनी प्रशासनिक दक्षता के कारण

भारतीय माल, वस्त्र और कीमती धातुओं पर लगने वाली सीमा शुल्क से आती थी। अतः की शक्ति की असली परीक्षा 1507 में हुई, जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली बेड़ा फारस की खाड़ी के मुहाने पर पहुंचा। अल्बुकर्क का मिशन शाह को पुर्तगाली राजा डॉम मैनुअल प्रथम को कर देने के लिए मजबूर करना था। हालांकि अल्बुकर्क को जल्द ही एहसास हो गया कि उसका सामना किसी कमजोर राजा से नहीं बल्कि ख्वाजा अता जैसे एक चतुर रणनीतिकार से है। अता ने द्वीप की रक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें द्वीप की भौगोलिक स्थिति और पुर्तगाली कमांड के आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाया गया। जहां अल्बुकर्क नौसैनिक युद्ध का मास्टर था, वहीं अता राजनीतिक उत्तर जीविता का मास्टर था। उन्होंने इस शुरुआती मुठभेड़ के दौरान होर्मुज की सफलतापूर्वक रक्षा की और अल्बुकर्क को तब पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसके अपने कप्तानों ने किले पर कब्जा करने की उसकी आक्रामक योजनाओं को मानने से इनकार कर दिया। ख्वाजा अता का मॉडल मलक्का लाल सागर के बंदरगाहों से अलग था। होर्मुज के शासक और वजीर खुद जहाज नहीं रखते थे और ना ही सीधे व्यापार करते थे। इसके बजाय वे उच्च स्तरीय टैक्स फार्मर के रूप में कार्य करते थे, जो भारत और लेवेंट के बीच होने वाले विशाल व्यापार प्रवाह से कर वसूलते थे। अता के मार्गदर्शन में होर्मुज एक ऐसा राज्य बना जिसे केवल कूटनीतिक और कर के नाजुक संतुलन द्वारा ही प्रबंधित किया जा सकता था। उनकी कहानी एशियाई सीमा पर शक्ति की तरलता का प्रमाण है, जहां बंगाल का एक दास पुर्तगाली साम्राज्य की बढ़ती ताकत के खिलाफ प्रतिरोध का वास्तुकार बन सकता था।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे। ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रगनोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनोर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्मसम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं विगत दिवस भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर अलियांस फ्रांसिस भोपाल और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के साझा सहयोग से मोरक्को के संगीत पर आधारित सांगीतिक संध्या का आयोजन विगत दिवस भारत भवन में किया गया। इस अवसर पर फ्रैंको मोरक्कन बैंड ऑल राइट मेला ने प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के वार्षिक रंग उत्सव के तीसरे दिन नाटक मर्चकटिकम का मंचन हुआ। ध्रुपद संस्थान गुरुकुल में 22 से 24 जून तक 3 दिवसीय रेसिडेंशियल म्यूजिक कैंप वीणा और वाणी का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से संगीत से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे। शिविर में देश के सुप्रसिद्ध रुद्र वीणा वादिका विदुषी ज्योति हेगड़े प्रतिभागियों को रुद्र वीणा सिखाएंगी। वहीं पद्मश्री पंडित उमाकांत गुंदेचा ध्रुपद गायन सिखाएंगे। विश्व योग एवं संगीत दिवस के अवसर पर रविवार को मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शाम 7 बजे से शास्त्रीय संगीत और नृत्य की विशेष संध्या आयोजित होगी। इस निशुल्क कार्यक्रम में भोपाल की युवा शास्त्रीय गायिका प्रदक्षिणा भट्ट गायन प्रस्तुत करेंगी, जबकि पुणे की स्मिता महाजन भरतनाट्यम की प्रस्तुति देंगी। ये था हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: भारतीय रसायन विज्ञान के थ्री मस्केटियर्स। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रयोगशालाओं में एक गहरा बौद्धिक परिवर्तन आकार ले रहा था। प्रतिष्ठित रसायन शास्त्री एफ जी डोनन के मार्गदर्शन में तीन युवा भारतीय विद्वानों ने एक ऐसा बंधन बनाया जो अंततः उनके स्वदेश के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने वाला था। इतिहास में रसायन विज्ञान के थ्री मस्केटियर्स के रूप में प्रसिद्ध इस समूह में शांति स्वरूप भटनागर, ज्ञानचंद्र घोष और ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी शामिल थे। उनकी ब्रिटेन की यात्रा भारतीय छात्रों के उस रणनीतिक आंदोलन का हिस्सा थी जो सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पश्चिम में उच्च शिक्षा की तलाश कर रहे थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज में उन्हें डोनन के रूप में एक ऐसा गुरु मिला जिसने उपनिवेशिक परिधि और महानगरीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठान के बीच एक महत्वपूर्ण संस्थागत सेतु के रूप में कार्य किया। डोनन की प्रयोगशाला एक ऐसी भट्टी साबित हुई जहाँ इन विद्वानों के साथ उपनिवेशिक अधीनस्थों जैसा व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें एक वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के समान भागीदारों के रूप में देखा गया। लंदन में इन वर्षों के दौरान बनी इस मित्रता ने आपसी समर्थन का एक आजीवन नेटवर्क तैयार किया जो उपमहाद्वीप में लौटने पर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1920 के दशक में भारत लौटने पर थ्री मस्केटियर्स ने एक ऐसी शैक्षणिक दुनिया में प्रवेश किया जो तेजी से विस्तार कर रही थी। जेसी बोस और पीसी राय जैसे वरिष्ठ दिग्गजों की सलाह पर शांति स्वरूप भटनागर को 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भौतिक रसायन विज्ञान के अध्ययन के रूप में नियुक्त किया गया। भटनागर का करियर भारतीय वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रमाण बन गया। वे रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए नाइट की उपाधि दी गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक उन्हें ही नियुक्त किया गया। जेसी घोष ने भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया और बाद में स्वतंत्र भारत के योजना आयोग में सेवा दी। मुखर्जी के साथ मिलकर इन तीनों ने भारतीय वैज्ञानिकों की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया जिसने यूरोपीय सिद्धांतकारों के लिए केवल तथ्य संग्रहकर्ता की उपनिवेशिक भूमि को अस्वीकार कर दिया था। उनकी सफलता एच बी मेडलीकॉट जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के उन नस्लीय पूर्वाग्रहों को सीधा जवाब थी जिन्होंने कभी दावा किया था कि भारतीय मौलिक कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। इन थ्री मस्केटियर्स ने साबित कर दिया कि भारत का वैज्ञानिक तार मौलिक और प्रभावशाली था। अपने स्वयं के शोध संस्थानों और संघों की स्थापना करके उन्हें भारतीय विज्ञान का ध्यान शुद्ध प्रयोगशाला अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोग की ओर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक गुरुओं के रूप में कार्य किया और विज्ञान के आधुनिक मंदिर में शोधकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को तैयार किया। अंततः उनकी कहानी दर्शाती है कि कैसे एक महानगरीय गुरु और उनके भारतीय शिष्यों के बीच का व्यक्तिगत संबंध एक राष्ट्रवादी वैज्ञानिक भावना को जन्म दे सकता है जिसने भारत को एक आत्मनिर्भर और आधुनिक वैज्ञानिक शक्ति में बदल दिया।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वामी कुमारानंद के जीवन पर केंद्रित है।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उन जन नायकों से मिलाएं जिन्होंने अपने पौरुष और पराक्रम से समय की धार को बदल दिया और इतिहास में दर्ज करवा लिया अपना नाम स्वर्णाक्षरों में। आइए, इसी तारतम्य में आज बात करते हैं स्वामी कुमारनंद जी की, जिनका जन्म बर्मा के रंगून शहर में हुआ था और 29 जनवरी 1971 को दिल्ली में इनका निधन हुआ था।
2: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ में जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं की और संपन्नता को त्याग कर अपना सर्वस्व कुर्बान कर जन जन में चेतना का शंख भूका, उन महान देशभक्तों की श्रृंखला में स्वामी कुमार नंद का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। रंगून शहर के कमिश्नर एन के नाग के घर जन्मे स्वामी कुमार नंद का असली नाम द्विजेंद्र कुमार नाग था। इनके परिवार का संबंध श्री रविन्द्रनाथ टैगोर एवं प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त से था। प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु स्वामी जी के मामा लगते थे।
1: स्वामी कुमार नंद जी की प्रारंभिक शिक्षा बर्मा में हुई और उच्च शिक्षा ढाका और कलकत्ता में संपन्न हुई। नेशनल कॉलेज से बीए करने के बाद एक अनहोनी घटना घटी। तत्कालीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट एलन पर सन 1907 में किसी क्रांतिकारी ने गवालन स्टेशन पर गोली चला दी थी। यद्यपि इस कांड का कभी खुलासा नहीं हो सका, लेकिन जो लोग उसमें शक के घेरे में आए थे उनमें स्वामी जी का नाम भी था। कलकत्ता के जिला मजिस्ट्रेट जो एक अंग्रेज थे, उनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वामी जी के पिता से बात की और स्वामी जी को क्रांतिकारियों के चंगुल से निकालने के लिए सरकार के खर्च पर ICS की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव रखा गया।
2: स्वामी कुमार नंद जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपने तो सारा जीवन अंग्रेजों की गुलामी करने में बिता दिया, हमें गुलामी नहीं करनी है। भारत अंग्रेजों की दास्ता में बंधा है। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। जब तक भारत गुलाम है मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। आजन्म कुंवारा रहकर देश सेवा में जीवन अर्पण कर दूंगा। जब ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मालूम पड़ी तब वे अति प्रसन्न हुए। उन्हें बंगाल के क्रांतिकारियों के त्याग और निष्ठा पर गर्व हुआ।

0: स्वामी कुमारनंद जब अपने पिताजी के साथ पुरी गए, तब स्वामी सत्यानंद नाम के सन्यासी से आपकी भेंट हुई। वे ही स्वामी कुमारनंद के प्रथम गुरु सिद्ध हुए। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने नौजवानों को देशभक्ति से प्रेरित किया। उसका भी स्वामी कुमारनंद पे अत्यधिक प्रभाव पड़ा। स्वामी कुमारनंद अनेक भाषाओं के विद्वान थे, चीनी भाषा का भी उनको ज्ञान था। सन 1910 के नवंबर में वे चीन गए। चीनी क्रांति के समय वे चीन में थे और जब भारत लौट कर आए तो कलकत्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल तक कैद में रखकर यातनाएं दी गईं। फिर वे रिहा हुए।
1: स्वामी जी का जीवन कभी भी खतरों से खाली नहीं रहा। ढाका के एक मकान पर पुलिस ने छापा मारा। वहाँ पिस्तौल, कारतूस व डायनामाइट और बम बनाने का सामान पकड़ा गया। 4 नौजवान गिरफ्तार हो गए और स्वामी जी वहाँ से भागकर कलकत्ता आ गए। चित्तरंजन दास की सलाह से उन्होंने कलकत्ता छोड़ा और सन्यासी का वेश बदलकर कन्याकुमारी आ गए। तभी से उन्होंने अपना नाम द्विजेंद्र कुमार से बदलकर स्वामी कुमारनंद रख लिया। सन 1920 में चित्तरंजन दास के आग्रह पर ही स्वामी जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वैसे तो स्वामी कुमारनंद जी का राजनैतिक जीवन सन 1907 से ही आरंभ हो गया था। कलकत्ते में उनका परिचय पुरानी कृष्ण मिल ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी से हुआ। साथ में खरवा के राव गोपाल सिंह भी थे। इतिहास साक्षी है कि राव गोपाल दास सिंह खरवा विजय सिंह पथिक के महान सहयोगी रहे और सेठ दामोदर दास राठी ने अनेक क्रांतिकारियों की भरपूर सहायता की।
0: स्वामी कुमारनंद साम्यवादी विचारों के होते हुए भी कांग्रेस के साथ बने रहे। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब सन 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के समय बाबा सोहन सिंह जोश और कॉमरेड मुजफ्फर अहमद ने कांग्रेस से अलग होने का प्रस्ताव रखा तो स्वामी कुमारनंद ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि अभी कांग्रेस छोड़ने का समय नहीं है। काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में स्वामी जी ने बटुकेश्वर दत्त को जिस प्रकार बचाकर भगाया और पुलिस के अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट से बुरी तरह भिड़ पड़े, ये उनके साहसिक कार्य का एक जीता जागता उदाहरण है।

0: वैसे तो स्वामी कुमारानंद के विचार क्रांतिकारी व साम्यवादी थे और ब्यावर के मजदूर आंदोलन के प्राण माने जाते थे, फिर भी उनका व्यवहार कांग्रेस के नेताओं और विशेषकर रियासतों के नेताओं के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण था। अधिकतर नेता स्वामी जी के रियासतों में जन आंदोलन चलाने पर विचार विमर्श करते और कभी कभी स्वामी जी के साथ ही ठहरते।
1: क्रांतिकारी विचारों के होने के कारण और अंग्रेजों के कट्टर विरोधी होने से रात्रि में वे जब नींद में होते तो कई बार वे भयंकर रूप से दांत किटकिटाते हुए गुस्से में बड़बड़ाते, इन अंग्रेजों को मार डालो, भारत से भगा दो। तब नींद से जागने पर पूछते तो कहते, क्या हुआ, मैं तो गहरी नींद में सोया था। उनका आत्मबल बहुत तेज था और वे साहसी भी थे। उनके अनुसार पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी कभी मीलों लंबी दौड़ लगाकर भाग निकलते, कभी जंगलों में और खंडहरों में भटकते रहते। न खाने पीने की सुध, न रुकने का ठिकाना, मगर क्रांति कार्य की मशाल न बुझे, यही कोशिश रहती थी। स्वामी कुमारानंद जीवन भर कुंवारे रहे, वे सादा जीवन उच्च आदर्श के धनी थे।
0: स्वामी जी 1962 में विधानसभा के सदस्य रहे और राजपूताना मध्य भारत ट्रेड यूनियन के वर्षों तक अध्यक्ष भी रहे। स्वामी कुमारानंद का जीवन त्याग, तपस्या व आजादी के आंदोलनों में जेलों की यातनाएं सहने में बीता। उनका आदर प्रत्येक विचारधारा के राजनेता व आम नागरिक करते थे, वे सदा उनके आगे नतमस्तक रहते थे। 29 दिसंबर 1971 के दिन नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में इस महान क्रांतिकारी देशभक्त का पेट की बीमारी से निधन हो गया। स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा के निधन पर पंडित सुंदरलाल ने कहा था कि अजेय स्वातंत्र योद्धा, एक महान तपस्वी, त्याग की मूर्ति व साहसिक देशभक्त के देहावसान से भारत को अपार क्षति हुई है। ऐसे महान देशभक्त को हमारा सादर नमन।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति थी स्वराज संस्थान संचालनालय की। गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान द्वारा जारी ऑडियो श्रृंखला जन गर्जे में से।
3: अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग आप सुन सकते हैं विविध भारती के भोपाल इंदौर और जबलपुर केंद्रों से हर रविवार सुबह 9:30 बजे और मध्य प्रदेश स्थित आकाशवाणी के अन्य केंद्रों से हर गुरुवार सुबह 8:30 बजे से।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वामी कुमारानंद के जीवन पर केंद्रित था। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है सुर सागर। इस कार्यक्रम में आज हम भक्ति गायन सुनेंगे। कलाकार है माधवी मधुकर झा।

0: ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: आज की सभा का हम आरंभ करने जा रहे हैं सुश्री माधवी मधुकर झा के गायन से, और आज की सभा में उनके साथ जो संगत कलाकार मंचासीन हो रहे हैं, माधवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। कलाओं के गर्भार घोल के इस सिद्ध प्रसिद्ध मंच पर आपकी आमद का हम स्वागत करते हैं। बतौर संगत कलाकार कीबोर्ड पर हैं श्री सचिन गुप्ता, तबला वादन करेंगे श्री अमित कुमार, ऑक्टोपीट पर हैं श्री धर्मेंद्र कुमार, गिटार वादन करने के लिए मंच पर हैं श्री ध्रुव, और वेणु वादन मुरली वादन के लिए मंच पर हैं श्री हर्ष कुमार।

झा, यहाँ उपस्थित आप सभी श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को, श्रोतागणों को, प्रभु प्रेमी जनों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन की, जो मुझे इस संतवाणी समारोह में अपनी प्रस्तुति देने का अवसर दिया। इसके लिए मैं पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ, आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ।

सरस्वती भी कुछ इस प्रकार है। आचार्य शंकर कहते हैं माँ भवानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता माता भाई बहन स्वामी पत्नी विद्या और व्यापार इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे माँ भवानी, एकमात्र तुम्हारी शरण में मैं हूँ और एक तुम ही मेरी गति हो। अगली प्रस्तुति आचार्य विरचित भवानी दृष्टिकोण।

अगली प्रस्तुति भी आचार्य शंकर विरचित ही है। जिस स्तोत्र को आप सभी ने बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, श्री कृष्णाष्टकम प्रस्तुत करना चाहेंगे।

0: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे माधवी मधुकर झा का भक्ति गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गायन। कलाकार थी माधवी मधुकर झा। इसके साथ ही हमारा आज का सुर सागर कार्यक्रम संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। फरवरी 1537 में गुजरात के तट पर खारे पानी की लहरें एक ऐसी कूटनीतिक त्रासदी की गवाह बनी जिसने 100 से अधिक वर्षों तक एस्टाडो द इंडिया की प्रतिष्ठा पर एक गहरा दाग लगा दिया। गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर की मृत्यु। सुल्तान बहादुर एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य का संचालन कर रहा था और पुर्तगाल के राजा जोआओ तृतीय के साथ सीधे कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के प्रयासों में अग्रसर था। हालांकि उसके राज्य का तात्कालिक भाग्य पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा के साथ एक तनावपूर्ण बैठक पर टिका था। यह वार्ता गवर्नर के जहाज पर हुई जिसे बातचीत की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बजाय यह एक घातक विश्वासघात का मंच बन गया। जैसे ही सुल्तान कतूर नामक एक छोटी नाव में गवर्नर के जहाज से जाने के लिए तैयार हुए, उनके साथ पुर्तगाली अधिकारी मैनुअल डी सूसा भी थे। कुन्हा के बाद के चालाकी भरे विवरण के अनुसार उन्होंने जियाओ डे सेंटियागो नामक एक अनुवादक के माध्यम से सुल्तान को अंतिम संदेश भेजने का प्रयास किया था। उस पल के भ्रम में मैनुअल डी सूसा सुल्तान की अपनी छोटी नाव फुस्टा पर सवार हो गए। कुन्हा ने आरोप लगाया कि सुल्तान ने ही पहले हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही डी सूसा ने नाव पर कदम रखा, बहादुर ने अपने आदमियों को उन्हें मार डालने का आदेश दिया। जवाबी कार्यवाही में आसपास के नाव से पुर्तगाली सैनिकों ने सुल्तान की नाव पर धावा बोल दिया। इस हाथापाई के बीच वो अनहोनी हो गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुल्तान बहादुर पानी में गिर गए और संघर्ष और लहरों के बीच डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। गवर्नर कुन्हा ने इस घटना को अपने राजा के सामने एक दैवीय कृत्य के रूप में पेश करने की कोशिश की जिसने क्षेत्र की शांति सुनिश्चित की थी, लेकिन इसके परिणाम बिल्कुल विपरीत निकले। एक औपचारिक वार्ता के दौरान एक संप्रभु राजा के डूबने की घटना ने पूरे एशिया के दरबारों में पुर्तगालियों की धोखेबाज छवि पक्की कर दी। कई लोगों ने इसे एक गलतफहमी नहीं बल्कि एक ऐसे सम्राट की सोची समझी हत्या माना जो पुर्तगाली ताज का एक वैध कूटनीतिक भागीदार था। इस क्षण के अपराध बोध की गूंज वैश्विक स्तर पर सुनाई दी। इस घटना ने ऑटोमन साम्राज्य को हिंद महासागर में हस्तक्षेप करने के लिए एक नैतिक और कानूनी आधार प्रदान किया। उन्होंने तर्क दिया कि फ्रैंक्स अर्थात पुर्तगालियों के विश्वासघात से मुस्लिम शासकों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इस घटना को अकबरनामा ने भी अमर कर दिया। एक 17वीं सदी की लघु पेंटिंग सुल्तान को पुर्तगाली नावों से घिरा हुआ दिखाती है जो साम्राज्य की जवाबदेही की कमी का एक अदृश्य रिकॉर्ड है। बहादुर शाह की मृत्यु ने साबित कर दिया कि साम्राज्य के शुरुआती वर्षों में एक गवर्नर की कार्यवाही दशकों की कूटनीति को कमजोर कर सकती थी जिसमें अविश्वास और संघर्ष की एक ऐसी विरासत पैदा हुई जिससे पुर्तगाली कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके। नवे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका तथा यूरोप के शिक्षित समाज के सामने भारतीय दर्शन और वेदांत की बातों को रखकर एक क्रांति की सूचना कर दी थी। उनके भाषणों को सुनने के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ती थी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि फैलती गई और कई लोग उनके अनुयायी बन गए।
1: स्वामी जी के विदेशी शिष्यों और शिष्याओं में सबसे पहले याद आती हैं कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, यानी भगिनी निवेदिता। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया और अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम निवेदिता को पूर्णतः सार्थक कर दिया।
0: निवेदिता का अर्थ है समर्पिता, और उन्होंने अपने नाम और हिंदू गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप अपने श्रम के फल को अपने गुरु तथा परम गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें जो जीवन प्रकाश और अपार सामर्थ्य प्राप्त हुई थी, उसका उद्गम स्थान स्पष्ट करने के लिए ही वो अपना उल्लेख रामकृष्ण विवेकानंद की निवेदिता किया करती थी। उन्होंने उस पवित्र देवालय की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्हें तथा भविष्य में समस्त विश्व को ज्ञान का प्रकाश, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति मिली।
1: निवेदिता के जीवन को 3 स्वतंत्र विभागों में बांटा जा सकता है। पहला विभाग यानी वो काल जिसमें उनके जन्म से लेकर उस समय तक जब उनकी स्वामी विवेकानंद से भेंट हुई थी। दूसरा भाग जब वे अपने जीवन के कर्तव्यों के प्रति सचेत हुई थी से लेकर गुरु के महानिर्वाण तक का काल। और तीसरा भाग आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद एक निस्वार्थ और धैर्यवान कार्यकर्ता के रूप में उनका उदय काल।
0: मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 में टायरोन जिले के डुगनन नामक गांव में हुआ। उनके पितामह का नाम जॉन नोबल था। नोबल परिवार स्कॉटिश मूल का था और पिछली 5 शताब्दियों से आयरलैंड में आकर बस गया था।
1: मार्गरेट अपने पिता सैमुअल नोबल की बहुत लाडली थी। उनके पिता जब भी किसी धार्मिक अनुष्ठान या प्रवचन के लिए या दीन दुखियों की सेवा के लिए बाहर जाते तो मार्गरेट को वे अपने साथ जरूर ले जाया करते। पर सादगी पूर्ण और कठिन जीवन के श्रमसाध्य कष्टों ने सैमुअल के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाला और सिर्फ 34 वर्ष के अल्प वय में ही सैमुअल की मृत्यु हो गई।
0: अपने पिता के धर्माचरण का गहरा प्रभाव मार्गरेट के बाल मन पर पड़ा था। धार्मिक कार्यों तथा धर्म के प्रति गहरी रुचि तथा अदम्य उत्साह जिस प्रकार मार्गरेट ने अपने पिता से सीखा था, उसी तरह उसके नाना ने उसके मन में देश के प्रति प्रेम तथा स्वतंत्रता की भावना की ज्योत प्रज्वलित की थी। यथा समय मार्गरेट को हेलिफैक्स महाविद्यालय भेजने की व्यवस्था की गई, जहां उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी। मार्गरेट कितनी दृढ़ निश्चयी अन्वेषिका थी, ये उनकी इसी बात से पता चलता है जो उन्होंने हिंदू महिला मंडल मुंबई में सन 1902 में एक भाषण के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था,
2: एक अंग्रेज स्कूल में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ था तथा उम्र के 18वें वर्ष तक सर्व सामान्य अंग्रेज बालिका के समान ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। बचपन से ही मेरे मन पर क्रिश्चियन धर्म के संस्कारों का प्रभाव था। सभी धर्मों की शिक्षाओं और सिद्धांतों के प्रति मेरे मन में नितांत आदर था। जीसस की मैं समर्पित हृदय से पूजा करती थी, उसे प्यार करती थी। बालवय में भी यीशु दूसरों के लिए कैसे स्वेच्छा से त्याग करते थे, ये सुनकर तो मेरा मन उनके प्रति आदर से भर गया। मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयं को सूली पर चढ़ाकर, स्वयं का बलिदान कर जितना कुछ ईसा ने मानव जाति को दिया है, उसके लिए मैं कैसे उनकी पूजा ना करूं? किस तरह अपनी श्रद्धा के फूल उन पर चढ़ाऊं? कितना सम्मान उन्हें दूं? ये मैं कभी भी नहीं समझ पाई। मैंने हमेशा यही अनुभव किया है कि जितना कुछ प्रभु ईसा ने मानव जाति के लिए किया है, उसके अनुरूप मैं पर्याप्त रूप से उन्हें सम्मान आदर नहीं दे पा रही हूं।
1: निवेदिता फिर भी शांति और सत्य की खोज में भटकती रही।
2: इसके बाद मेरा ध्यान बुद्ध के जीवन ने आकर्षित किया। उनके जीवन और धर्म तत्वों का गहरा अभ्यास करने के बाद मुझे लगा कि बाल बुद्ध, जो बाल क्राइस्ट के कुछ शताब्दी पहले इस पृथ्वी पर आए थे, उनका आत्म त्याग किसी अन्य के त्याग से कम नहीं था। उन्होंने पूर्णतः स्वत्व का परित्याग किया था। इस प्यारे से बालक गौतम ने 3 वर्षों तक मेरे पर अधिकार जमाए रखा। 3 वर्षों तक मैं उनसे बहुत प्रभावित रही तथा बौद्ध धर्म के विस्तृत अभ्यास में पूर्णतः लीन रही।
0: परंतु निवेदिता का मन फिर भी अशांत रहा। उन्हें लगा कि वे सही रास्ते पर नहीं चल रही हैं।
2: और अब मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वासों में अमूल परिवर्तन लाने का क्षण आया। स्वामी जी, जिनसे मेरी भेंट हुई, वे और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद हैं, जो बाद में मेरे गुरु बने। उनकी शिक्षाओं, सिद्धांतों और उपदेशों ने मेरी व्याकुल आत्मा को वो शांति दी जिनकी मुझे लंबे समय से चाह थी।
1: उसके स्वयं के उदार मनोभाव और सत्य के प्रति उत्कट लालसा ने उसे स्वामी जी के वैदांतिक सिद्धांतों और शिक्षाओं को पूर्ण रूप से ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया। सत्य का प्रकाश कहीं से भी मिले, उसे खुले दिल से स्वीकार करना ही मार्गरेट के जीवन का मुख्य उद्देश्य था, और इसीलिए उसने स्वामी विवेकानंद के सर्वोत्तम शिष्य का स्थान प्राप्त किया था।
2: स्वामी जी के शब्दों ने हम में से कुछ लोगों के जीवन को ठीक उसी तरह प्रभावित तथा आनंदित किया जैसे प्यास से व्याकुल व्यक्ति के लिए जल करता है। हम में से बहुत से लोग पिछले कई वर्षों से धर्म के प्रति बढ़ती हुई अनिश्चितता तथा निराशा की स्थिति के प्रति सचेत रहे। ये भावनाएं यूरोप के बुद्धिजीवी जनमानस को करीब आधी शताब्दी तक व्याकुल करती रही, पर अब वे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं विवेकानंद विचारधारा के रूप में। इन वेदांतिक शिक्षाओं ने हमारे अविश्वासी अंतर्ज्ञान को एक बौद्धिक प्रमाणीकरण तथा दर्शन शास्त्रीय आकार दिया है। धर्म विषयक गलत कल्पनाओं के अंधकार में जो अब तक चल रहे थे, उन्हें अब प्रकाश का अनुभव होगा।
1: सन 1895 में जब स्वामी जी लंदन गए, तब उन्हें हिंदू योगी के नाम से जाना गया। उन्होंने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता हासिल की थी। लंदन में ही एक दिन सुश्री इजाबेल मार्गेसन ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। स्वामी जी से मिलने और उनके भाषण को सुनने के लिए ही कुमारी मार्गेसन ने अपने कुछ मित्रों को भी बुलवाया। इन निमंत्रित अतिथियों में मार्गरेट भी एक थी। मार्गरेट के बहुत से दोस्त उनकी मानसिक धार्मिक लालसा के बारे में जानते थे, और उन मित्रों में से एक ने मार्गरेट को सलाह दी कि ये हिंदू योगी सत्य की खोज के मार्ग में उसकी मदद कर सकते हैं। मार्गरेट वहां जाना नहीं चाहती थी, केवल कौतूहलवश वहां क्या हो रहा है ये जानने के लिए मार्गरेट ने इजाबेल का आमंत्रण स्वीकार किया। इसी तरह की एक एक घटनाएं धीरे धीरे उसके लक्ष्य की ओर जाने का मार्ग दिग्दर्शित कर रही थी।
0: लेडी इजाबेल मार्गेसन के घर पर मार्गरेट की स्वामी विवेकानंद से प्रथम भेंट हुई। नवंबर का महीना था, रविवार का दिन और दोपहर का वक्त था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। 15-16 व्यक्ति स्वामी जी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार में बैठे हुए थे। मध्य भाग में गैरिक रंग के लबादे समान वस्त्र धारण कर स्वामी जी उन लोगों के समक्ष बैठे थे। कमर में उन्होंने कमरबंद लपेटा था। उनके पीछे गर्माहट हेतु अग्निकुंड प्रज्वलित था। वे बार बार शिव शिव इस शब्द का जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे।
1: स्वामी जी वहाँ शाम को देर तक बैठे थे। एक हिंदू योगी अपने पश्चिमी श्रोताओं और स्नेही जनों के समूह के बीच बैठकर उन्हें अपने देश के अनंत धर्म के सनातन सत्यों के बारे में बता रहा था। उनसे हिंदू धर्म के अक्षर तत्वों की चर्चा कर रहा था। लंदन के उस पाश्चात्य ढंग से सजी बैठक में ठीक भारत के किसी गांव के वातावरण के समान वातावरण निर्मित हो गया था। जैसे कि भारत के किसी गांव में वृक्ष के नीचे बैठे साधु के इर्द गिर्द लोगों का समूह परमार्थ की बातों को तल्लीनता से सुनता है। गोधुली बेला रात्रि के अंधकार में परिवर्तित हो रही थी।
0: स्वामी जी ने कहा कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वे समझते हैं कि अब वो समय आ चुका है जब इन दोनों देशों के बीच विचारों का, जीवन कल्पनाओं का आदान प्रदान हो, जिस तरह इन दोनों देशों के बीच व्यापार विनिमय प्राचीन काल से होता आ रहा है। स्वामी जी के संभाषण में अनेक विविध विषय आ रहे थे। स्वामी जी ने वहां उपस्थित लोगों को ईश्वर के बारे में बताया। आध्यात्मिक उन्नति के 3 मार्ग बताए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। उन्होंने अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद, एक तत्ववाद की चर्चा की। उन्हें बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया।
1: मार्गरेट के मन पर कुछ अलग ही प्रतिक्रिया हुई। आने वाले सप्ताहों में जब मार्गरेट ने स्वामी जी के कार्यों का अवलोकन किया, तो उसके समक्ष स्वामी जी के विचार स्पष्ट होने लगे। जब स्वामी जी अवतार के जन्म के बारे में बोल रहे थे, तब उन्होंने भगवद गीता के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा कि जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब सज्जनों के रक्षण हेतु और दुष्टों के नाश हेतु मैं बार बार जन्म ग्रहण करता हूँ। साधु धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को दृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। मार्गरेट गीता के इस विचार की महानता से बहुत प्रभावित हुई थी। अब उसे समझ में आया कि क्यों स्वामी जी ने कहा था कि सभी धर्म सत्य है, अतः किसी भी ईश्वरीय अवतार की ईश्वरीय आविर्भाव व पुनर्जन्म की निंदा नहीं करनी चाहिए।
0: और वो समय आया जब मार्गरेट ने स्वामी जी को गुरु कहकर संबोधित किया। वो वक्त था लंदन से स्वामी जी की वापसी का। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए मार्गरेट लिखती है,
2: मैंने इस व्यक्ति के ईश्वरीय अंशों को, असामान्य नेतृत्व गुणों को पहचान लिया है। मेरी इच्छा है कि मैं उनके सामाजिक विषयक, उनके प्रेम का दासत्व स्वीकार कर लूं। मैं चाहती हूं कि जिस समाज से वे इतना प्रेम करते हैं, उस समाज की सेवा के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। ये वही व्यक्तित्व है जिसको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। ये वही चरित्र है जिन्होंने मुझे विनम्र बनाया है, यद्यपि मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई थी, पर फिर भी मेरे मन में पूर्ण शंकाओं के समाधान के बाद ही मेरी उन पर श्रद्धा दृढ़ हो सकी। उनके संपर्क में आने के बाद मेरे समक्ष अब किसी भी असामान्य बुद्धिमान व्यक्ति और स्वामी जी में अंतर स्पष्ट हो गया है।
1: और जब स्वामी जी शरद ऋतु में अमेरिका की ओर रवाना हुए, तो मार्गरेट उनके तीनों गुणों का बार बार मनन कर रही थी। पहली थी उनकी विशाल धर्म दृष्टि या धार्मिक विचारों की विस्तीर्णता, दूसरी थी उनके विचारों की महानता, नूतनता तथा बुद्धि निष्ठा। उन्होंने जो विचार उन लोगों के समक्ष रखे थे, उन विचारों के प्रति गहरी रुचि। और तीसरी थी वो सच्चाई जिसकी शुद्धता और महान ऊंचाई को मानव मन के आधारभूत तत्व स्पर्श भी नहीं कर सकते थे।
0: स्वामी जी ने 15 अप्रैल 1896 को लंदन जाने के लिए न्यूयॉर्क छोड़ा। उनके दोस्त तथा सहयोगी उन्हें फिर अपने बीच पाकर अति प्रसन्न हुए। स्वामी जी स्वतः भी बहुत ही खुश थे, क्योंकि स्वामी शारदानंद भारत से यहाँ आ पहुंचे थे और 2 वर्ष के वियोग के पश्चात ये 2 गुरु भाई भी स्टडी के निवास स्थान पर, जो सेंट जॉर्ज रोड पर स्थित है, मिले।
1: स्वामी जी के वार्तालाप और भाषणों के विषय अलग अलग होते थे, और ये तो भाग्य की ही बात है, उन भाषणों को लिपिबद्ध करने के लिए श्री गुडविन ने, जो आशुलिपिक थे, अपनी सेवाएं प्रदान की, और उन्हीं की मेहनत के फलस्वरूप स्वामी जी के अधिकांश भाषण सुरक्षित और लिपिबद्ध रह सके। श्री गुडविन स्वामी जी के सानिध्य में बहुत वर्षों तक कार्य करते रहे, और वे स्वामी जी से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। अपने घर परिवार के माया मोह के बंधनों को तोड़कर वे आजीवन स्वामी जी के साथ ही रहे, और उन्होंने अपने गुरु की सेवा में गुरु के कार्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया।
0: मार्गरेट तथा उसके कुछ साथी उन लोगों में से थे जो बिना एक भी दिन नागा किए स्वामी जी के भाषणों में उपस्थित रहते। खुले और उदार मस्तिष्क के धनी ये लोग स्वामी जी के वेदांतिक उपदेशों की सत्यता को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनमें से प्रत्येक उन्हें जितना भी सिखाया जाता, उसके अर्थ को अपने अनुभवों तथा धर्म कल्पनाओं के आधार पर समझने की कोशिश करता। अपनी धार्मिक परिकल्पनाओं को ध्यान में रखकर ये लोग स्वामी जी के उपदेशों के गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयत्न करते।
1: एक दिन प्रश्नोत्तर की कक्षा के दौरान स्वामी जी एकाएक उठ खड़े हुए और जोरदार गर्जना करते हुए बोले,
3: क्या इस पूरे इतने बड़े संसार में 20 ऐसे स्त्री पुरुष भी नहीं हैं, जो किसी शहर के मुख्य मार्ग पर सबके समक्ष खड़े होकर ये बोलने की हिम्मत करें कि उनमें ईश्वरीय अंश मौजूद है? बोलिए, आप में से कौन खड़ा होकर सबके समक्ष ये स्वीकार करेगा? क्यों हमें ये स्वीकार करने में डरना चाहिए? यदि ये सत्य है कि ईश्वर हम में मौजूद है, यदि हमारा ईश्वर सानिध्य सत्य है, तो फिर इसे स्वीकार करने में हिचक क्यों? और यदि नहीं है तो फिर हमारे जीवन का क्या लाभ, ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ।
0: इन शब्दों को जो स्वामी जी ने कहे थे मानो उन वास्तविकताओं के सार थे जो वास्तविकता या सच्चाई स्वामी जी विश्व को दिखाने आए थे, और इन्हीं शब्दों ने मार्गरेट के हृदय को आंदोलित कर दिया तथा वो स्वामी जी का साथ देने के लिए तत्पर हो उठी।
1: एक दिन वार्तालाप के दौरान स्वामी जी ने उसकी ओर मुखातिब होकर कहा,
4: मैं मेरे देश में वहां की स्त्रियों की प्रगति हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि उस कार्य में तुम मुझे बहुत मदद कर सकोगी।
0: मार्गरेट भी भारत जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी, पर उसने अभी तक इस बारे में स्वामी जी से कुछ कहा नहीं था। एक संध्या को जब कुमारी मुलर ने स्वामी जी के समक्ष मार्गरेट की इच्छा का जिक्र किया कि मार्गरेट स्वामी जी के साथ भारत जाकर उनके कार्यों में मदद करने की इच्छुक है, तब स्वामी जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने बड़ी ही शांति के साथ कहा,
4: जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जन कल्याण का जो कार्य अपने जिम्मे लिया है उस कार्य को करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने लोगों के बीच 200 बार जन्म लेने के लिए तैयार हूं।
1: स्वामी जी भारत लौट आए। स्वामी जी का ध्यान इस देश की जिन बहुत सारी समस्याओं ने आकृष्ट कर रखा था उनमें से एक समस्या थी महिलाओं की समस्या। वे प्रायः अपनी भावना इन शब्दों से दर्शाते थे कि किसी भी देश की सर्वांगीण उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इसका एक अंश शक्तिहीन हो। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक ही पंख के सहारे कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकता, वे स्त्री और पुरुष को देश रूपी गाड़ी के दो पहिए मानते थे और देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए दोनों पहिए स्वस्थ, शिक्षित और सबल होने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने सुश्री बुल को 25 फरवरी 1897 में लिखा था, मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा यदि मैं दो पृथक पृथक केंद्रों की स्थापना किए बिना ही इस संसार से विदा ले लूं। वे दो केंद्र हैं, एक तो सन्यासियों के लिए और एक महिलाओं के लिए। यदि उसके पूर्व ही मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे जीवन का व्रत अधूरा रह जाएगा।
0: श्रीमती बुल ने स्वामी जी के समक्ष सन्यासियों के लिए मठ का निर्माण करने हेतु आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव रखा था, परंतु उन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया क्योंकि अभी तक उनके पास मठ निर्माण हेतु कोई निश्चित रूपरेखा नहीं थी। उन्हें धन की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें ये बात खूब अच्छी तरह से मालूम थी कि काम जब एक बार शुरू हो जाएगा तो धन की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से अपने आप हो जाएगी, परंतु इस महान कार्य का प्रारंभ करने के लिए महिलाएं कहां थी। सिर्फ शिक्षित महिलाएं ही इस कार्य में उन्हें मदद कर सकती थी।
1: स्वामी जी जानते थे कि मार्गरेट इस कार्य के प्रति गंभीर है और बहुत ही अधिक निष्कपट तथा सच्ची है। भारतीय महिलाओं की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा रखती है। अतः स्वामी जी ने उसे ढेर सारे पत्र लिखे और प्रत्येक पत्र द्वारा उसे भारत में इस कार्य की प्रगति से अवगत कराया।
0: मार्गरेट भारत आकर उनके कामों में हाथ बटाना चाहती है, ये जानकर स्वामी जी खुश तो हुए, परंतु उन्होंने मार्गरेट को पत्र लिखकर यहाँ की कठिनाइयों के बारे में बार बार आगाह किया।
4: मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है, या यूं कहो कि मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि मुझे अब निश्चित रूप से लगने लगा है कि यहाँ भारत में तुम्हें काम के ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे कि यहाँ तुम्हारा भविष्य उज्जवल रूप धारण करेगा। ये कार्य ऐसा है कि इसमें एक पुरुष की अपेक्षा एक स्त्री की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्य एक स्त्री ही सुव्यवस्थित रूप से कर सकती है। एक वीर, साहसी तथा सिंहनी की भांति निडर स्त्री ही इस कार्य को भली भांति कर सकेगी। विशेषकर भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए किए जाने वाले इस कार्य की पहली आवश्यकता एक स्त्री ही है। अभी भारत ने महान नारियों को उत्पन्न नहीं किया है, अतः उसे ऐसी महान नारियां दूसरे देशों से उधार मांग कर लानी होंगी। तुम्हारी शिक्षा, पवित्रता, कार्य के प्रति लगन, दृढ़ निश्चय प्रवृत्ति तथा इस देश के प्रति अगाध प्रेम और सबसे ऊपर तुम्हारे सेल्टिक वंश के रक्त ने तुम्हें वो नारी बना दिया है जो इस कार्य के लिए पूर्णतः योग्य है। यहां बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियां बहुत हैं, तुम यहां की गरीबी, दुख, अंधविश्वासों और गुलामी की जंजीरों से जकड़े लोगों के बारे में कोई धारणा बना ही नहीं सकती। ये सब तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हें यहां अर्धनग्न स्त्री पुरुषों की भीड़ के बीच कार्य करना होगा, जिनके जाति प्रथा तथा छुआछूत संबंधी बड़े विचित्र तथा पुरातन विचार हैं, जो गोरी चमड़ी के लोगों को डर और घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अछूत मानते हैं, और सफेद चमड़ी वाले लोग भारतीयों से तीव्र घृणा करते हैं। दूसरी ओर गोरे लोग तुम्हें सनकी समझेंगे। यहां तुम्हारे प्रत्येक कार्यकलापों के आचार व्यवहार का निरीक्षण किया जाएगा तथा हर पल तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। यहां की जलवायु बहुत ही अधिक गर्म है। अधिकांश स्थानों पर हमारी शीत ऋतु तुम्हारे ग्रीष्म के समान है। सारे दक्षिण में तो हमेशा गर्म लू चलती रहती है, मानो आग बरस रही हो। यहां के शहरों के बाहर यूरोपीय ऐशो आराम की कोई भी सामग्री तुम्हें नहीं मिलेगी। इतना पढ़ने के बाद भी यदि तुम में इस साहसिक कार्य में शिरकत करने की हिम्मत है तो तुम्हारा यहां स्वागत है, शत शत बार स्वागत है। जैसा बाहरी देशों में मेरा प्रभाव है उतना यहां तो नहीं, फिर भी जितना थोड़ा सा प्रभाव है और जो कुछ मेरा सामर्थ्य है उतना मैं तुम्हारी सहायता तथा सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा।
1: इस पत्र को पढ़ने के बाद मार्गरेट को कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। मार्गरेट के लिए भारत आने का मार्ग खुला था और वो जब भी आना चाहे आ सकती थी। अतः जैसे ही उसे स्वामी जी का ये पत्र मिला, उसने अपने मित्रों से जो भी पहला मौका मिले उस पर भारत जाने की व्यवस्था करने के लिए कहा।
0: 28 जनवरी 1898 को उनका जहाज कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंचा। स्वामी जी खुद बंदरगाह पर उसका स्वागत करने आए।
1: कलकत्ता के पहले के कुछ दिन मार्गरेट ने अपने अंग्रेज दोस्त मैकडोनल्ड डटसन और अर्बर्ट नॉट के कलकत्ता के दर्शनीय स्थल देखने में बिताए। इसी बीच उसका भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु तथा उनकी बहन लावण्य प्रभा बसु से परिचय हुआ। लावण्य प्रभा बसु एक विद्यालय का संचालन करती थी। साथ ही मार्गरेट ने टैगोर परिवार के लोगों से, माताजी से और सरला घोषाल से भी परिचय प्राप्त किया।
0: तब तक स्वामी जी ने मार्गरेट के बंगाली भाषा सीखने की व्यवस्था की। इसी बीच 8 फरवरी को स्वामी सारदानंद रेलगाड़ी द्वारा मुंबई से कलकत्ता पहुंचे। मुंबई में वे इंग्लैंड से आए थे तथा उनके साथ कुमारी जोसेफाइन मैकलाउड तथा श्रीमती सारा सी बुल थी।
1: भारत पहुंचने के बाद उन्होंने स्वामी जी से पूछा था कि वे किस तरह उनके कार्यों में सर्वोत्तम ढंग से मदद कर सकती हैं। जब स्वामी जी ने उत्तर दिया था, भारत को प्यार करो, इसके पश्चात ही एक महत्वपूर्ण अवसर मार्गरेट के भाषण का था, जो रामकृष्ण मिशन के उद्घाटन सभा पर आयोजित किया गया था, जो स्टार थिएटर में 11 मार्च को हुआ। मार्गरेट का परिचय कराते हुए उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होते हुए कहा,
4: पहले ही इंग्लैंड ने अपने कुछ महान विद्वान हमारे इस रामकृष्ण मिशन की सहायतार्थ दिए हैं, और जब इंग्लैंड ने मार्गरेट नोबल के रूप में एक और बहुमूल्य उपहार हमें दिया है, जिनसे हमें ढेर सारी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और अधिक आपका समय ना लेते हुए मैं आप लोगों का परिचय कुमारी मार्गरेट नोबल से कराता हूं।
5: मैं यहां आप लोगों को इंग्लैंड में इन 1.5 वर्षों के दौरान हुए काम के बारे में निश्चित रूप से कुछ बताने आई हूँ। 1.5 वर्ष पहले आपके आध्यात्मिक विचारों का प्रचार प्रसार हम लोगों के बीच हुआ था। मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयत्न कर रही हूँ कि आप लोगों ने जो इन महापुरुष के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश हम लोगों के बीच इंग्लैंड भेजा था, वो संदेश हमारे बीच में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है।
0: मार्च 17 गुरुवार को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। उस दिन निवेदिता माँ शारदा मणि देवी से, जो रामकृष्ण देव की पत्नी थी, मिली।
5: वो अविस्मरणीय दिन मेरे जीवन में किसी उत्सव से कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन कट्टरवादी हिंदू धर्म परायण महिलाओं के साथ सहभोजन की याद भी भूलने लायक नहीं है, और ना ही वे पवित्र तथा सुखदायक बंधन जो उस दिन संस्कारित हुए और अपने अस्तित्व में मुझे जीवन भर के लिए बांध गए, उन बंधनों को मैं आज जन्म भुला नहीं पाऊंगी।
0: इस तरह मार्गरेट नोबल सच्चे अर्थों में निवेदिता बन गई। उसके बाद की घटनाएं और भी रोमांचकारी हैं, जिन्हें अगली कड़ियों में आप जान पाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की, क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। शाम 5:10 पर सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज केंद्रित होगा। उड़िया भाषा के भाषाविद मंगई गोमंगो के जीवन पर। शाम 6:30 पर कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा देवगढ़ के गोंड राज्य की स्थापत्य कला। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। शाम 7 बजे योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय होगा योग वशिष्ठ बाल्यावस्था एवं युवावस्था के दोष। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और सुनीता सिंह। शाम 7:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम आज केंद्रित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं समाज सेवी ओमियो कुमार दास के जीवन पर। रात्रि के 8 बजे सुने देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। 8:30 पर आजाद हिंद कार्यक्रम आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वामी कुमारानंद के जीवन पर केंद्रित होगा। रात्रि के 9 बजे कार्यक्रम सुर सागर में आज हम आपको सुनवाएंगे भक्ति गायन, कलाकार होंगी माधवी मधुकर झा। और 9:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम भारत भारती का, जिसमें आप गायन और वादन का आनंद लेते हैं।

आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रूपन सामंता का गायन, जिसमें वो पेश कर रही हैं ठुमरी, चैती, झूला। बिना देर किए सुनते हैं गायन रूपन सामंता का।

चैती गाने जा रही हूँ। चैती चैत्र महीने में ज़्यादातर गाया जाता है। चैती के जो भाव है वो विरह होती है, नायिका नायक के विरह में या उसको याद करके जो गाते हैं चैती। चैती में जरूर रामा शब्द होता ही है, क्योंकि चैत्र महीने में भगवान राम जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए चैती गायन में जरूर रामा शब्द होता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज चैती। तो चैती मैं गाती हूँ।

गुरु माँ की कंपोजिशन है, मिश्र चारों दिशी में है। तड़प तड़प जिया जाए, जब कृष्ण जी वृंदावन चढ़ के मथुरा चले गए थे तो वो सीन इसमें दर्शाया गया है, कैसे उनकी रथ धीरे धीरे आंखों से उजाल हो जाती है राधा जी की, वो थोड़ी सी कल्पना इसमें है।

0: कार्यक्रम भारत भारती में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ब्रेक के बाद संगीत का ये सफर जारी रहेगा।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बोली गारियों आँखी न भरत गुलाल रसिया नामा।

एक कजरी मिश्र पिल में झीरे झीरे बरसते सावन रस बूंदिया अब आई गए लेना। शब्द इसके कजरी रेनी सीजन में गाया जाता है, झूला भी रेनी सीजन में गाया जाता है। झूला में कृष्ण जी की हिंडोरा की वर्णना होती है, इसमें सिर्फ सावन की वर्णना होती है जो कजरी के रूप में हम लोग बनारस घराने में गाते हैं।

0: कार्यक्रम भारत भारती में आप सुन रहे थे रूपन सामंता का गायन। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे और आपको लिए चलेंगे संगीत की दुनिया में। नमस्कार,
1: मैं हूं हरिप्रसाद चौरसिया। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के।

आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा अभी मुरझाने के डर से डर जाए फूल अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है अभी भरी आंसुओं की मदिरा बस

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के, किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि ऋण के लिए, श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके, आश्रय कर ध्रुव पद का संतन उसके, आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए, निकली ही होगी तो

और आचरण करके एक तप, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवर्ण के लिए रणवाद्य बजा के थड़ थड़ और बढ़ भागे हमला करके ठीक उसी क्षण को जब हो गई प्रभु की प्रथम रणाज्ञा और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी आ मृत्यु आ तू या आने के लिए निकली ही होगी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से प्रस्तुत है रूस के महान कहानीकार चेखव की लिखी एक प्रसिद्ध कहानी, ए जोक, यानी एक छोटा सा मजाक का रेडियो रूपांतरण। कहानी का ताना बाना कुछ इस प्रकार है।

19वीं शताब्दी के रूस में एतोन चेखाव नाम के एक महान कथाकार हुए। वे कहते थे, साहित्य मेरी प्रेमिका है। उनकी कहानियां दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। उनकी कहानियां

छोटा सा टुकड़ा उठाकर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी का नाम है अजोक, एक मजाक। ये मजाक नायक नायिका के साथ करता है। इस मजाक का क्या अंजाम होता है, इसे जानने के लिए सुनते हैं कहानी अजोक, एक मजाक का रेडियो नाट्य रूपांतर। श्रोताओं, इस नाटक में चेक खानते हैं जो कि कहानीकार हैं, और साथ ही इस कहानी में दो पात्र होंगे, चेखव और नात्या पित्रोना।

0: सर्दियों की खूबसूरत दोपहर, सर्दी बहुत तेज है, नादिया ने मेरे बाह पकड़ रखी है, उसके घुंघराले बालों में बर्फ इस तरह जम गई है कि वे चांदनी की तरह झलकने लगे हैं, उसके ओंठों के ऊपर भी बर्फ की एक लकीर सी दिखाई देती है। हम एक पहाड़ी पर खड़े हैं, हमारे पैरों के नीचे मैदान पर एक ढलान पसरी हुई है, ढलान पर बर्फ की चादर बिछी है, सूरज की रोशनी उस पर ऐसे चमक रही है जैसे उसकी परछाई शीशे में पड़ रही हो। हमारे नज़दीक ही एक स्लेज पड़ी है जिसकी गद्दी पर लाल कपड़ा लगा हुआ है।
1: श्रोताओं, ये रूस है जहां ठंड बेहद पड़ती है, यहाँ बर्फ पर फिसलने वाली बिना पहियों की गाड़ियां होती हैं, जिन्हें हम स्लीज कहते हैं। टंड्रा क्षेत्र में इन गाड़ियों को कुत्ते खींचते हैं। लेकिन ढलान पर खुद ब खुद नीचे फिसलती हैं ये गाड़ियां। ये खेल है, जैसे जैसे गाड़ियां नीचे उतरती जाती हैं, उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। ऐसे में अगर कोई खूबसूरत साथी साथ हो तो फिर क्या कहने, और रोमांस दुगना हो जाता है।

0: नादिया, नादिया।
1: हाँ जेकब।
0: आओ नादिया, एक बार फिसलते आओ।
1: नहीं जेकब, मुझे नहीं फिसलना है यहाँ से।
0: अरे सिर्फ एक बार आओ ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं आना।
0: अरे घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक ठाक नीचे पहुँच जाएंगे, आओ।
1: उफ, देखो तो कितनी ठंड है यहाँ पे, और मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे ये क्या, तुम्हारा चेहरा तो देखो, डर के मारे पीला भर गया है।
1: डर के मारे पीला तो पड़ेगा ही, उफ, देखो तो कितनी ऊंचाई पर है हम।
0: अरे मैं हूँ ना, डरो मत, आओ आओ यहाँ बैठो, आओ आओ ना, आओ।
1: ठीक है, तुम कहते हो तो चलो चलती हूँ।
2: मैं महसूस करता हूँ कि स्लेज पर बैठने के नाम पर नादिया का जैसे दम निकल जाता है, लेकिन तब क्या होगा जब यह खतरा उठाकर स्लेज पर बैठ जाएगी। ये तो डर के मारे मर ही जाएगी, मुझे ऐसा लगता है।
0: नादिया, नादिया मेरी बात मान लो, नादिया डरो नहीं, आई नो कि तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है, आओ नादिया।
1: नहीं जेकब, नहीं। अच्छा अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ।
0: आओ यहाँ आओ, आ जाओ।
2: वो मान जाती है, मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़ता हूँ, साफ दिखता है कि जैसे उसने मौत का खतरा उठाकर ही मेरी ये बात मानी है। वो डर के मारे सफ़ेद पड़ चुकी है और कांप रही है। मैं उसे स्लेज पर बिठाकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसके पीछे बैठ जाता हूँ। हम उस गहराई में फिसलने लगते हैं, बंदूक की गोली की तरह स्लेज नीचे उतर रही है, बेहद ठंडी हवा हमारे चेहरों पर चोट कर रही है, हवा चीरती हुई सीटी बजा रही है, हवा जैसे गुस्से से हमारे बदन को चीर रही है, वो जैसे हमारा सिर उतार लेना चाहती है। हवा इतनी तेज व ठंडी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लगता है मानो शैतान हमें अपने पंजों में जकड़कर नरक की ओर खींच रहा है। आसपास की सारी चीजें जैसे एक तेजी से लकीर में बदल जाती है।

0: नादिया,
1: ये कैसी आवाज है? क्या चीखा?
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया, आई लव यू नादिया, आई लव यू नादिया।
1: क्या क्या चीखा ने मुझसे कहा?
0: आई लव यू नादिया, आई लव यू।
2: स्लेज की गति धीरे धीरे कम होती जाती है। हवा का गरजना और स्लेज का गूंजना अब इतना भयानक नहीं लगता। हमारे दम में दम आता है और आखिर हम नीचे पहुंच जाते हैं। नादिया बेहोशी हो रही है, वो बिल्कुल सफेद पड़ चुकी है, उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही है। मैं स्ले से उतरने में उसकी मदद करता हूं।
0: नादिया, आओ नादिया, आंखें खोलो नादिया, क्या हो गया नादिया? जस्ट ओपन योर आईज नादिया, बी केयरफुल, आओ नादिया।
1: आज तो मैं मरते मरते बची हूं। चेखा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा कभी नहीं फिसलूंगी, कभी भी नहीं।
0: नादिया, डरो मत नादिया, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा नादिया, मैं हूं ना।
1: नहीं नहीं, अब मैं कभी नहीं आऊंगी।
2: जब मेरी ओर देखते उसने ये शब्द कहे तो मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ देखा, पर थोड़ी देर बाद ही वो सहज हो गई और मेरी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। क्या उसने सचमुच ये अल्फाज सुने थे या उसे ऐसा बस महसूस हुआ था कि सिर्फ हवा की गरज थी वो, और ये अल्फाज इसी गरज से पैदा हुए थे।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया।
2: क्या ये एक भ्रम? नादिया मेरे हाथ अपने हाथों में ले लेती है और हम देर तक पहाड़ी के आसपास घूमते हैं। ये पहली उसे अब भी परेशान कर रही है कि जो अल्फाज उसने पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए सुने थे सच में कहे गए थे या नहीं, ये बात वास्तव में हुई थी या नहीं, ये सच है या झूठ। अब ये सवाल उसके लिए स्वाभिमान का सवाल हो गया है, जैसे उसकी जिंदगी और उसके जीवन की खुशी इसी बात पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का उत्तर उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नादिया मुझे अपनी आशा भरी नजरों से ताकती है, मानो मेरे अंदर की बात भांपना चाहती हो। वो इस इंतजार में है कि मैं फिर उसे वही बात शुरू करूं। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूं। अरे, उसके प्यारे चेहरे पर ये कैसे भाव हैं? मैं देखता हूं कि वो अपने आप से लड़ रही है। वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो अपने ख्यालों को, अपने भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर पाती। वो हिचकिचा रही है, वो डर रही है, उसकी अपनी ही खुशी उसे तंग कर रही है।
0: नादिया, नादिया चलो घर चलते हैं।
1: नहीं जेकब, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे।
0: What? तुम्हें मजा आ रहा है?
1: हाँ जेकब, बहुत ही ज्यादा मजा। क्यों ना जेकब, एक बार फिर फिसलते हैं।
0: एक बार फिर?
1: हाँ ना जेकब, चलो ना प्लीज, चलो।
0: अच्छा चलो।
2: हम फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, मैं फिर से डर से सफेद पड़ चुकी नादिया को स्लेज पर बिठा देता हूँ। हम फिर से भयानक गहराई की ओर फिसलते हैं। फिर से हवा की गरज और स्लेज की गूंज हमारे कानों को फाड़ती है, और जैसे जैसे शोर बढ़ता जा रहा था, मैं धीमी आवाज में कहता हूं,
0: मैं तुमसे प्यार करता हूं नादिया, आई लव यू नादिया।
2: नीचे पहुंचकर जब स्लेज रुक जाती है तो नादिया एक नजर पहले ऊपर की तरफ उस ढलान को देखती है जिससे हम अभी अभी नीचे फिसले थे, फिर दूसरी नजर मेरे चेहरे पर डालती है। वो ध्यान से मेरे बेपरवाह और भावहीन आवाज को सुनती है। उसके चेहरे पर हैरानी है, न सिर्फ चेहरे पर बल्कि उसके सारे हाव भाव से हैरानी झलकती है। वो चकित है और जैसे उसके चेहरे पर लिखा है, क्या बात है, ये अल्फाज किसने कहे थे, शायद इसी ने, या हो सकता है मुझे बस ऐसा लगता हो, बस ऐसे ही वे शब्द सुनाई दे गए हों।
0: I love you, I love you।
2: उसकी उलझन बढ़ती जाती है, वो सच्चाई से अनजान है, ये अनजानापन उसकी बेचैनी बढ़ा रही है। मुझे उस पर तरस आ रहा है, बेचारी लड़की। वो मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं देती, लगता है वो रोने वाली है।

0: नादिया नादिया चलो घर चलते।
1: नहीं जेकब, बिल्कुल नहीं, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है।
0: क्या?
1: बहुत मजा आ रहा है सच्ची में। चलो ना जेकब, एक बार फिर फिसलते हैं, चलो ना।

0: और यह पहेली पहेली ही रह जाती है। नादिया चुप रहती है, वो कुछ सोचती है। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता हूँ। वो धीमे धीमे कदमों से चल रही है और इंतज़ार कर रही है कि मैं शायद उसे कुछ कहूँगा, लेकिन वो चुप रहने की कोशिश कर रही है और अपने मन की बात को अपने दिल में ही रखे हुए है। शायद वो कुछ सोच रही है। दूसरे दिन जैकब को चिट्ठी मिलती है जिसमें नादिया ने लिखा है,
1: जैकब, ये चिट्ठी मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ फिर फिसलने का मन कर रहा है। अगर आज तुम पहाड़ी पर फिर फिसलने जाओ तो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलना।
2: और चिट्ठी के आखिर में बड़े ही प्यार से उसने अपना नाम लिखा था, नादिया, नादिया।
0: उस दिन से हम दोनों फिसलने के लिए रोज पहाड़ी पर जाते हैं और स्लेज पर नीचे फिसलते हुए हर बार मैं धीमी आवाज से मैं वही शब्द कहता हूँ,
2: आई लव यू, आई लव यू।
0: जल्दी ही नादिया को उन शब्दों का नशा हो जाता है, वैसा ही नशा जैसा शराब या मॉर्फिन में होता है। अब वो इन शब्दों की खुमारी में रहने लगी है। हालांकि उसे पहाड़ी से नीचे फिसलने में पहले की तरह ही डर लगता है, लेकिन अब भाई और खतरा मोहब्बत से भरे उन शब्दों में एक नया स्वाद पैदा करता है जो पहले की तरह ही उसके लिए एक पहेली बनी हुई है और उसके दिल को तड़पाती है। उसका शक हम दोनों पर है, मुझ पर और हवा पर। हम दोनों में से कौन उसके सामने अपनी भावना का इजहार करता है उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन अब उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन दोपहर के वक्त मैं अकेले ही उस पहाड़ी पर पहुंच गया। नादिया को उस दिन मैंने नहीं बुलाया। भीड़ के पीछे से मैंने देखा कि नादिया नीचे ढलान के पास खड़ी है। उसकी आंखें मुझे ही तलाश रही हैं। वो मेरा इंतजार कर रही है कि मैं आऊं और उसे लेकर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ूं, लेकिन वो मुझे नहीं पाती। वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगती है, हालांकि उसे अकेले फिसलने में डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर। वो बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ चुकी है, वो कांप रही है, पर वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, बिना झिझक के, बिना रुके। शायद उसने फैसला कर लिया है कि इस बार वो अकेले फिसल कर देखेगी कि वे मीठे शब्द सुनाई पड़ते हैं कि नहीं। मैं देखता हूँ कि बेहद घबराई हुई नादिया डर से अपना मुंह खोलकर स्लेज पर बैठ जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है, जैसे जीवन से विदा लेकर नीचे की ओर फिसलने जा रही हो। स्लेज के फिसलने की गूंज सुनाई पड़ती है। नादिया को वो शब्द सुनाई दिए या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये देखता हूँ कि वो बेहद थकी हुई और कमज़ोर स्लेज से उतरती है। मैं उसके चेहरे पर यह पढ़ सकता हूँ कि वो खुद ही नहीं जानती उसे कुछ सुनाई दिया या नहीं। नीचे फिसलते हुए उसे इतना डर लगा, उसके लिए कुछ भी सुनना या समझना मुश्किल था। कुछ समय बाद वसंत का मौसम आया। मार्च का महीना है। सूरज की किरणें पहले से अधिक गर्म हो गई हैं। हमारी बर्फ से ढकी रहने वाली वो सफ़ेद पहाड़ी भी काली पड़ गई है। उसकी बर्फ पिघल चुकी है, उसकी चमक खत्म हो चुकी है। अब सूरज की रोशनी उस पर शीशे की तरह नहीं चमकती। हमारा फिसलना बंद हो गया है और अब नादिया भी उन शब्दों को नहीं सुन पाएगी। उससे वे शब्द कहने वाला कोई नहीं। हवा खामोश हो गई है और मैं ये शहर छोड़कर पीटर्सबर्ग जा रहा हूं। हो सकता है कि मैं वहां हमेशा के लिए चला जाऊं। मेरे पीटर्सबर्ग रवाना होने से शायद 2 दिन पहले की बात है। शाम के वक्त मैं बगीचे में बैठा था। जिस मकान में नादिया रहती है वो बगीचा उससे जुड़ा हुआ था और एक ऊंची बाड़ जो नादिया के मकान को बगीचे से अलग करती थी। अभी भी मौसम में काफ़ी ठंड है, कहीं कहीं बर्फ भी दिखाई पड़ती है। हरियाली अभी नहीं है लेकिन वसंत की सुगंध महसूस होने लगी है। शाम को पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है। मैं बाड़ के पास आता हूँ और एक दरार में से नादिया के घर की तरफ देखता हूँ। नादिया बरामदे में खड़ी है और उदास नजरों से आसमान की ओर ताक रही है। वसंती हवा उसके उदास फीके चेहरे को सहला रही है। ये हवा उसे उस हवा की याद दिलाती है जो तब पहाड़ी पर गरजा करती थी जब उसने वे शब्द सुने थे। उसका चेहरा और उदास हो जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और बेचारी लड़की अपने हाथ इस तरह से आगे बढ़ाती है मानो वो उस हवा से प्रार्थना कर रही हो कि एक बार फिर से उसके लिए वो शब्द दोहराएं। और जब हवा का एक झोंका आता है तो मैं फिर धीमी आवाज में कहता हूँ,
2: मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया, आई लव यू नादिया।
0: बुझी हुई नादिया अचानक मुस्कुराने लगती है और हवा की ओर हाथ बढ़ाती है। वो बेहद खुश है, बेहद खुश और बेहद सुंदर दिख रही है। उसकी उलझन खत्म हो चुकी है, वो जान चुकी है कि ये शब्द उसे हवा कहती है। हाँ, हवा ही कहती है।

0: और मैं अपना सामान बांधने के लिए घर लौट जाता हूँ। कई साल गुजर चुके हैं, अब नादिया की शादी हो चुकी है। शादी का फैसला उसने खुद लिया था या नहीं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका पति एक बड़ा ऑफिसर है और उससे उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन उस समय को नादिया अब भी नहीं भूल पाई है। हवा के वो शब्द उसे आज भी याद हैं। ये उसके जीवन की सबसे खूबसूरत और सुखद याद है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि नादिया से वो शब्द मैंने क्यों कहे थे, क्यों मैंने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया था।
1: श्रोताओं, आपने सुना, एक लड़की के द्वारा एक लड़की के साथ किया गया एक छोटा सा मजाक, अ जोक। लड़के के लिए ये दिल लगी थी, एक विनोद था, लेकिन लड़की के लिए दिल का मामला। लड़की आई लव यू सुनने के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, और लड़का सिर्फ अपना मनोरंजन करता रहता है। उफ, कितनी क्रूरता है ये। शादी हो जाने के और 3 बच्चे हो जाने के बाद भी नादिया इन शब्दों को नहीं भुला पाती। क्या इतना क्रूर मजाक लड़के को उसे करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूस के महान कहानीकार चेखव की लिखी प्रसिद्ध कहानी ए जोक, यानी एक छोटा सा मजाक का रेडियो रूपांतरण। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सागर की डॉक्टर रचना श्रीवास्तव का लेत गायन।

लेत शास्त्रीय संगीत वो कठिन विधा है जो भिन्न भिन्न तालों में गाई जाती है। अब आपके समक्ष एक ताल में राग यमन कल्याण पर लेत।

0: बहुत ही सधी आवाज में एक ताल में आपने राग यमन कल्याण प्रस्तुत किया और अब प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में झूला।
1: झूला प्रस्तुत करें।

घिर आए बदरा, इतनी मोहक प्रस्तुति डॉक्टर रचना श्रीवास्तव के द्वारा। और अब ये प्रस्तुत करने जा रही हैं होली गीत।

सावन का महीना है और सावन में कजरी सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। रचना जी की अगली प्रस्तुति कजरी।

0: बहुत ही मोहक दिलकश प्रस्तुति हमने सुनी डॉक्टर रचना श्रीवास्तव से।
1: तो श्रोताओं, ये थी प्रस्तुति डॉक्टर रचना श्रीवास्तव के लेत गायन की। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज के भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर शायर जनाब मजरूह सुल्तानपुरी का कलाम, जिसे पेश कर रही हैं गायिका कीर्ति सूद।

0: 90.8 MHz पर हम बोल रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे तराने आजादी। अब हमारी दोपहर कालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम के 5 बजने को है। आप सभी श्रोताओं का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 5 बजे हैं। आप सभी का हम पुनः स्वागत करते हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी का पुनः अभिनंदन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 149वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा और चथ्य, देवता हैं अग्नि, छंद है विराट।
3: महः सराय एषते पतिर् दन्निन इनस्य वसुनः पद आ उप ध्रजन्त मद्रयो विधिन्नित। जब वे अग्निदेव धन संपदा प्रदान करने के लिए हमारे यज्ञों में आगमन करते हैं, तब पत्थरों द्वारा कूटकर अभिषुत सोमरस से उनका अभिनंदन किया जाता है। स यो वृषा नराम न रोदस्योः श्रवोभिरस्ति जीव पीत सर्गः प्र यः सस्राणः सिश्रीत योनौ। शक्तिशाली पुरुष की तरह अग्निदेव द्युलोक और भूलोक में यश सहित रहते हैं। वे प्राणियों के लिए उपयुक्त सृष्टि की रचना करते हैं। वे ही प्रदीप्त होकर यज्ञ वेदी में स्थापित होते हैं। आ यह पुरम नार्मिणी मदीदेत्यः कविर् नभन्यो नार्वा सूरो न रुरुक्वांछतात्मा। जो अग्निदेव यजमानों द्वारा निर्मित यज्ञ वेदियों को प्रदीप्त करते हैं, जो द्रुतगामी घोड़े और वायु के सदृश गति वाले तथा दूरदृष्टा हैं, वे अनेक रूपों में विद्युत, प्रकाश, ऊर्जा आदि सुशोभित अग्निदेव सूर्यदेव के सदृश तेजोमय हैं। अभिद्विजन्मा त्रि रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात् होता यजिष्ठो अपाम सधस्थे। ये अग्निदेव द्विजन्मा अर्थात दो अरणियों के मंथन से उत्पन्न होने वाले हैं। त्रिरोचन अर्थात सूर्य, विद्युत और लौकिक अग्नि रूप में शोभित होते हुए सारे विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं। ये होता अग्निदेव जलों के बीच भी विद्यमान है। अयम स होता यो द्विजन्मा विश्वादधे वार्याणि श्रवस्या मर्तो यो अस्मै सुतुको ददाश। दो अरणियों से उत्पन्न हुए अग्निदेव देवों का आवाहन करने वाले सब श्रेष्ठ धनों और यशस्वी कर्मों के धारक हैं। वे अग्निदेव अपने याजकों को उत्तम संपत्ति प्रदान करने वाले हैं।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 149वें सूक्त से वाचन प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आपके साथ मैं हूं आज आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। शाम के 5:05 होने को है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

जो हमें दिख नहीं रहा है उस पर भी भरोसा करना। जैसे हम हवा को देख नहीं पाते किंतु उसे महसूस जरूर करते हैं, श्रद्धा भी इसी तरह का माध्यम है, जैसे बीज के लिए पानी।

बिना श्रद्धा के पूजा सिर्फ एक कर्मकांड रह जाती है। श्रद्धा से उस कर्मकांड का रिश्ता भक्ति के माध्यम से जुड़ता है। भगवान को हमारे चढ़ावे से मतलब नहीं है, उन्हें केवल हमारे भाव से मतलब है।

जब सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम टूटते नहीं हैं, क्योंकि श्रद्धा हमारे साथ होती है। हम विकट परिस्थिति में भी सोच लेते हैं कि कोई तो है जो हमें संभाल लेगा, और यही वह ईश्वर होता है।

जी हाँ, भजन में आनंद होता है जो हमारी आत्मा के लिए औषधि है। आइए श्रोताओं, हम भी ईश्वर का भजन करें। कार्यक्रम भक्ति संगीत की ये अगली और अंतिम भक्ति रचना।

श्रोताओं, ये था आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम। शाम के ठीक 6 बजने को है, हम रेडियो आज़ाद हिंद से बोल रहे हैं। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद के कार्यक्रमों को आप रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

जैसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक दिशाओं को भरोसा देता है, वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही एक दीपशिखा का नाम है मंगेई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्म गौरव के साथ जीना सिखाया। मंगेई गोमांगो का जन्म 16 जून सन 1916 को ओडिशा के रायगढ़ा जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घनी आबादी थी। मंगेई गोमांगो का जन्म इसी सोरा समाज के एक अत्यंत संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। सोरा समाज में गोमांगो का अर्थ होता है मुखिया या प्रधान। उनके पूर्वज और पिता गांव के मार्गदर्शक थे। परिवार में आध्यात्मिक चेतना और जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फले फूले सोरा जनजातीय समाज में एक गहरा सन्नाटा भी था। आधुनिक शिक्षा से वो सभी बहुत दूर थे। युवा मंगेई ने देखा कि उनके समाज की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक स्वरूप देने का विचार था और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती सामने थी, इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगेई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगेई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे। लेकिन मंगेई गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

पंडिता मंगेई गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की विधियों को अपनी लिपि में लिखकर इस ज्ञान

और बुनियादी व्याकरण की रचना की ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी धरोहर मौखिक परंपरा में तो मौजूद थी, लेकिन लिखित रूप से ये कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। मंगेई गुमांगो ने सोरांग सोमपेंग लिपि में इसे लिखकर संरक्षित किया। निरंतर शारीरिक श्रम, गांव-गांव की कठिन यात्राएं और ढलती हुई उम्र, इन सारी बातों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वो बिस्तर पर आ गए। लेकिन अब भी वो थके नहीं, रुके नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और अन्य युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके द्वारा बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। सरकार और भाषाविदों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: पन्नों से
1: इतिहास के
0: पन्नों। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और मैं लेकर आया हूं एक नया एपिसोड, एक नया अंक हमारे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का। और पिछले एपिसोड में हमने काफी दिलचस्प जानकारियां हमारी जो विशेषज्ञ हैं, पुरातत्वविद हैं पूजा सक्सेना जी, उनसे हमने हासिल की थी। उन्होंने बताया था छिंदवाड़ा के नजदीक, जो हमारा आज का जो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है, वहां पर देवगढ़ नाम का गोंड राज्य था, जहां पर जाटवा हुए, उनके बाद के बहुत सारे राजा हुए, शासक हुए और फिर जाटवा द्वितीय हुए। उन्होंने बताया कि उनके पास एक विचित्र हाथी था जिसका नाम था जटाशंकर, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और शाहजहां तक भी पहुंची। फिर शाहजहां ने न जाने कितने जतन किए उस विचित्र हाथी जटाशंकर को पाने के लिए। खुद अपने बेटे औरंगजेब को भी उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया, निर्देशित किया और दोनों के बीच में लगातार पत्र व्यवहार होता रहा कि किस तरह से रणनीति अपनाई जाए। एक एक कर उन्होंने जाटवा द्वितीय के पास जितने भी हाथी थे सब के सब छीन लिए, सिर्फ उस एक हाथी जटाशंकर को प्राप्त करने के लिए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो विचित्र है, बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है, लेकिन वो हाथी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इस बीच उन्होंने देवगढ़ पर बहुत सारे कर भी लगा दिए, उनका सारा पशुधन, उनके सारे हाथी भी उन्होंने हड़प लिए। इसके बाद भी वो हाथी उन्हें नहीं मिल सका। पूजा जी इस बार भी हमारे साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: पूजा जी, आज आप क्या बताने वाली हैं देवगढ़ के बारे में?
2: हमने अभी तक देखा कि देवगढ़ में गोंड राज्य की स्थापना हुई और उनका प्रतापी राजा हुआ जाटवा
0: जी।
2: तो वे जहाँ से शासन कर रहे थे उस किले का नाम है देवगढ़ का किला।
0: अच्छा,
2: आज भी वह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक संरक्षित स्मारक है।
0: अच्छा,
2: तो आज हम देवगढ़ के किले के बारे में जानेंगे।
0: तो हम श्रोता जिस किले के बारे में आज जानेंगे, क्या वो वहाँ जा भी सकते हैं बतौर पर्यटक?
2: जी हाँ बिल्कुल, आप अगर छिंदवाड़ा जाते हैं तो देवगढ़ का किला तो वहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है।
0: वाह क्या बात है।
2: देवगढ़ का किला गोंड राजवंश द्वारा बनाया गया है
0: जी,
2: और इस किले के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि गोंड किस तरीके से अपने किलों को बनाते थे या बनाने से पहले वो ऐसी क्या विशेषताएं देखते थे या बनाने से पहले वह कैसे स्थान का चुनाव करते थे,
0: पूरा नियोजन जो है वो किस तरह से होता था वहाँ।
2: बिल्कुल, तो देवगढ़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर है
0: जी,
2: यानी कि एक ऐसी ऊंची पहाड़ी चाहिए होती थी जो कि चारों ओर से सुरक्षित हो, यानी जिसके चारों तरफ अच्छा घना जंगल हो। और देवगढ़ की पहाड़ी से अगर हम देखें तो उसकी स्थिति इस तरीके से है कि उसके चारों ओर भी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं।
0: अच्छा,
2: तो आप बहुत नजदीक तक जब पहुंच भी जाते हैं ना तो तब भी आपको देवगढ़ की पहाड़ी दिखाई नहीं पड़ती।
0: अच्छा, मालूम ही नहीं चलता कि कौन सी पहाड़ी पर वो किला होगा।
2: बिल्कुल, एक घटना मुझे याद आ रही है जो ऐतिहासिक है। शाहजहां के काल में एक उनका स्थानीय अधिकारी था, कुछ महमूद शाह जैसा कुछ नाम आता है उसका, और उसने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। जाटवा का शासन था
0: जी।
2: तो कहते हैं कि वो देवगढ़ की पहाड़ी तक पहुंच ही नहीं पाया, जो आसपास की पहाड़ियां थी ना जो उसे सुरक्षा प्रदान करती थी, उन्हीं पहाड़ियों में कहीं उलझ के खो गया।
0: अच्छा।
2: और वो कभी देवगढ़ तक पहुंच ही नहीं पाया। तो इस तरीके की एक पहाड़ी चुनी जाती थी जो कि चारों ओर से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो
0: जी,
2: वनों से आच्छादित हो। फिर दूसरी जरूरत है किसी भी किले के लिए पानी का होना।
0: बिल्कुल,
2: और हम देखते हैं कि ज्यादातर किले पहाड़ी पर स्थित हैं
0: जी,
2: तो पानी कैसे हो इतनी ऊंची पहाड़ी पर,
0: ये तो मतलब प्रबंधन बहुत मुश्किल सी बात थी, और खास तौर पे उस वक्त की जिसकी हम बात कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, तो किलों के लिए ऐसी पहाड़ी चुनी जाती थी जिस पर कि पानी हो
0: जी।
2: तो हम अक्सर देखते हैं ना कि जब हम किलों पर जाते हैं तो कोई ना कोई एक तालाब होता है।
0: बिल्कुल,
2: और अक्सर उसकी कहानी हम सुनते हैं कि इसमें पारस पत्थर है
0: जी,
2: और इसके पानी का सेवन करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। अक्सर आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी।
0: बिल्कुल,
2: तो ऐसा ही एक तालाब देवगढ़ की पहाड़ी पर भी पहले से ही स्थित होगा, इसीलिए उस पहाड़ी को किला बनाने के लिए चयनित किया गया। तो मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। 2003 में देवगढ़ के किले पर काम कर रही थी और मैंने वहां पर वो तालाब देखा जिसका नाम मोती तालाब है।
0: अच्छा,
2: मैंने फिर वहां सुना स्थानीय लोगों से कि इसका पानी बड़ा ही शुद्ध है और इसमें एक पारस पत्थर है, तो अगर इसका पानी का सेवन करेंगे तो कोई सी भी बीमारी दूर हो जाएगी। और मैंने देखा भी कि स्थानीय लोग आते हैं और उसका थोड़ा सा पानी लेते हैं और पी भी लेते हैं
0: जी।
2: तो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि ये किंवदंती क्यों चल रही है, ये क्या है, और इतनी ऊंची पहाड़ी पर तालाब है। लोग बताते हैं कि जब आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है गर्मियों के दिनों में, तब भी ये मोतिया तालाब नहीं सूखता
0: जी।
2: तो मेरी जिज्ञासा थी कि ये तालाब इतनी ऊंची पहाड़ी पर क्यों आया
0: जी।
2: और मैंने काम करते करते देवगढ़ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि देवगढ़ का किला कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक रूप से है
0: जी।
2: ऐसा सोचते सोचते मैं किले के अंदर की ओर जाने लगी और मेरा वो पहला दिन था काम का। मैं आगे बढ़ती गई और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था। मेरा मन ऐसा कर रहा था कि कोई ऐसा हो कि राजा जाटवा यहाँ आ जाए
0: और बस
2: और मुझे बता दे कि ये तालाब क्यों है यहाँ पर
0: जी।
2: तो मैं आगे बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जूतों के आवाज सुन रही हूँ।
0: अच्छा।
2: चर चर चर ऐसे आवाज आ रही थी और जैसे ही मेरा ध्यान गया मैं घबरा गई कि ये क्या जाटवा आ गए। मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गई। मैंने चारों तरफ देखा तो सिर्फ पेड़ ही पेड़, सागौन के पेड़ ही पेड़ थे और कुछ भी नहीं। अब मेरी हालत खराब थी। थोड़ा सा मैंने अपने को संभाला तो देखा कुछ भी नहीं था, एक सागौन के पेड़ की डाल थी
0: जी।
2: जो कि टूट गई थी
0: जी।
2: तो वो चरमरा रही थी इसलिए आवाज आ रही थी चर चर चर। लेकिन ये बातें अपनी जगह हैं। पर हाँ, हमने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा आर्टिजन वेल के बारे में, पाताल तोड़ कुआं
0: जी।
2: तो पाताल तोड़ कुआं क्या होता है कि जहां पर सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं, बालुकाश्म चट्टाने होती हैं, वे परत दर परत बनती हैं। तो लाखों सालों से जो वर्षा का जल गिर रहा है वो इन परतों में जमा होता रहता है।
0: अच्छा।
2: तो यानी कि इन पहाड़ियों की परतों में काफी जल इकट्ठा है,
0: पानी
2: इकट्ठा है। और जहां कहीं भी पानी को ऐसी जगह मिलती है पहाड़ी में जो कि अपेक्षाकृत कठोर कम है, तो वहां पर पानी झिरी फोड़ लेता है और झिरी फोड़ कर बाहर आ जाता है। तो अगर वहां डिप्रेशन हुआ तो फिर तालाब बन जाता है। तो लगातार पानी उस झिरी से आता रहता है और तालाब का पानी हमेशा मेंटेन रहता है
0: जी।
2: इस तरीके से पहाड़ियों पर ये तालाब बन जाते हैं। और जहां तक पारस पत्थर की बात है तो वो तो मैं नहीं जानती
0: जी।
2: लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये जो झिरी से आया हुआ पानी होता है ये बहुत ही शुद्ध होता है
0: जी।
2: क्योंकि किसी तरीके के प्रदूषण के संपर्क में ये आता नहीं है, सदियों से लाखों वर्षों से पहाड़ियों की परतों में छिपा हुआ है
0: जी।
2: तो अति शुद्ध है। इसलिए भी अगर बीमारियों में इनके सेवन की परंपरा रही है तो शायद इसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोग कोई
0: वो एक तरह से मिनरल वाटर ही है क्योंकि उसमें मिनरल्स तो बहुत सारे मिले ही होते हैं।
2: जी हाँ बिल्कुल। तो ये परंपरा शायद इसी से चली है। हम देखते हैं कि जो देवगढ़ की पहाड़ी है उस पर एक ये मोतिया तालाब है
0: जी।
2: और इसी से जुड़े हुए तीन तालाब और है। तो अगर हम देवगढ़ के किले को देखें
0: जी
2: तो ये एक ऊंची पहाड़ी पर है और जब हम इस पे चढ़ेंगे तो कई सारी सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां भी चौड़ी चौड़ी सी हैं
0: जी।
2: क्योंकि हाथी भी इससे गुजरते होंगे।
0: अच्छा, जी।
2: और ये सीढ़ियां सर्पिलाकार हैं, मतलब आप नीचे से चलना शुरू हुए और फिर मुड़ते हुए ऊपर गए और फिर एक मोड़ आया, फिर एक मोड़ आया, फिर एक मोड़ आया, इस तरीके से सर्पिलाकार है। तो ये सर्पिलाकार सीढ़ियां इसलिए होती हैं कि जब शत्रु सेना आक्रमण करती है किले पर तो जो नीचे से शत्रु की सेना जब चढ़ना शुरू करती है, जब सर्पिलाकार मोड़ आता है तो वहां पर जो उस किले की सेना होती है वो छुप कर खड़ी होती है, इसकी टुकड़ी, तो वो अचानक से आक्रमण कर देती है। सर्पिलाकार भाग पर दौड़ना इतना आसान नहीं है। तो क्या होता है कि सेना की स्पीड कम हो जाती है तो उस पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के सर्पिलाकार मार्ग बनाए जाते हैं। इसके साथ ही सर्पिलाकार मार्ग पर बहुत सारे बुर्ज भी होते हैं जहां तोपे होती हैं या चौकसी के लिए कई सारे सैनिक खड़े होते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर इन बुर्जों पर खड़े होकर शत्रु सेना पर नियंत्रण पाना आसान होता है, उन पर आक्रमण करना आसान होता है, इसलिए इस प्रकार के सर्पिलाकार हमको पथ दिखाई देते हैं। फिर जैसे ही हम देवगढ़ के किले में जाते हैं तो एक बड़ा सा दरवाजा है देवगढ़ के किले का, और दरवाजे की कहानी तो हमने पिछली बार सुनी ही थी। जाटवा ने अपने हाथों से लकड़ी के दरवाजे को उठा लिया था
0: जी।
2: तो एक दरवाजा है। अब जो किला है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कई सारे दरवाजे हमको मिलेंगे। एक दरवाजे का नाम हाथीखाना भी है।
0: अच्छा।
2: तो असल में ये जो दरवाजे हैं, ये किले की जो आंतरिक सुरक्षा होती है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कोई शत्रु मुख्य दरवाजे को पार करके अंदर पहुंच भी गया तो उसके लिए किले में प्रवेश इतना आसान नहीं होता। फिर एक दरवाजा पड़ता है
0: जी।
2: और उसके बाद फिर सर्पिलाकार आप घूमेंगे तो फिर तीसरा दरवाजा पड़ता है। तो इस तरीके से कई चौकियों से गुजरते हुए ही कोई व्यक्ति किले के अंदर पहुंच सकता था। इसी तरीके से हम अंदर के परिसर में देखते हैं कि हर एक परिसर में, मान लीजिए कि रनिवास है, रानी जहाँ रहती है ना, तो वो एक परिसर बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको घेरते हुए बड़ी बड़ी दीवारें होंगी और उसका भी अपना एक दरवाजा होगा
0: जी।
2: तो यहाँ पर देवगढ़ में हम देखते हैं कि जब हम मुख्य तीन द्वार क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद आ जाता है मोतिया तालाब, और मोतिया तालाब के बाद आता है एक हाथी दरवाजा। तो हाथी दरवाजा को जब आप दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो वहां पर एक खुला मैदान दिखाई देगा
0: जी।
2: तो ये खुला मैदान किस लिए है कि जो उस समय रिजर्व सेना रहती होगी उसको रखने के लिए, या जो शाही सवारियों के लिए जो हाथी यूज होते होंगे उनके लिए।
0: अच्छा।
2: ये हाथी खाना रहा होगा तो हाथी खाने का दरवाजा अभी शेष है। और जैसा आपने कहा था कि दरवाजों पर हाथी भी अंकित होते हैं तो यहाँ पर प्रतिमाएं तो नहीं है लेकिन प्लास्टर पर हाथियों का अंकन है।
0: अच्छा।
2: इसी हाथी खाने में जो खाली पड़ी हुई भूमि है उस पर एक और कक्ष है, उसे बारूद खाना कहते हैं।
0: अच्छा।
2: तो संभवतः यहाँ बारूद वगैरह असला रखा करते होंगे, अस्त्र शस्त्र रखते होंगे। और इसके साथ ही फिर हम दूसरा जो दरवाजा है हाथी खाना से लगकर दूसरा दरवाजा है इसको कहते हैं नक्कार खाना।
0: अच्छा।
2: ये विशाल दरवाजा है, लगभग 3 मंजिला है, इसकी गुंबजाकार छत है
0: जी।
2: और असल में नक्कार खाना वो होता है जब राजा की शाही सवारी निकलती है तो फिर यहाँ पर नगाड़े बजते थे।
0: अच्छा।
2: फूल वगैरह बरसाया
0: जी,
2: करते
0: जी,
2: थे
0: जी, जी।
2: तो यहाँ पर दरवाजे के अंदर 2 प्लेटफॉर्म भी बने हुए हैं जिसमें कि
0: बैठकर
2: नगाड़े बजाए करते
0: होंगे, ध्वनि करेंगे।
2: जी हाँ। और इस नक्कार खाने पर एक और एक छोटा सा अभिलेख भी है जो गोंडी लिपि में है।
0: अच्छा।
2: लेकिन ये इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि इसको हम अभी तक पढ़ तो नहीं पाए हैं।
0: अच्छा।
2: अब जब नक्कार खाने से निकलकर हम दूसरी ओर आते हैं तो हम पहुंच जाते हैं राजा की कचहरी में।
0: अच्छा।
2: राजा की कचहरी का मतलब है दीवाने आम।
0: हाँ, जहां दरबार लगता था।
2: जी हाँ, जहाँ दरबार लगता था, आम जनता जहाँ पर आकर राजा से मिलती थी
0: जी।
2: तो अभी भी इसके कुछ अवशेष हैं। एक मंच जैसा हमको दिखाई देगा, बड़ा सा, और उसके बीच में एक अष्टकोणीय स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए कि कोई सिंहासन बना हो। तो अभी तो ये ईंट पत्थर का दिखता है लेकिन इसी सिंहासन को मेरे ख्याल से सुंदर वस्त्रों से, गद्दियों से और उससे सजाया करते होंगे, जहाँ देवगढ़ के राजा बैठते होंगे। अभी तो ये मंच पर छत नहीं है लेकिन पहले लकड़ी, चूना, ईंट, गारे से इसकी छत भी रही होगी। और जहाँ पर गादी है उसके पीछे बड़े ही सुंदर आले बने हुए हैं, तो वहां पर सुंदर सुंदर इत्रदान या रोशनी के लिए दूसरे कुछ उपादान किए जाते होंगे। तो सामने मंच पर राजा बैठते होंगे और सामने जो खाली मैदान पड़ा हुआ है वहां से जनता अपनी बात, जी हाँ, राजा तक पहुंचाती होगी। और देखने वाली बात क्या है कि अगर नक्कार खाने के दरवाजे को बंद कर दिया जाए, हाथी खाने के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और जो आसपास की दीवारें हैं उन सब पर भी सैनिक खड़े कर दिए जाएं, तो ये जो राजा की कचहरी है ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी जबरदस्त सुरक्षा उस समय रखा करते होंगे।
0: तो जिसे आजकल हम कोई घर बनाने के पहले कहते हैं, कोई जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, तो कितना मजबूत था वहाँ पर, कितनी योजनाएं थी और सारे राज्यों में, सारे गढ़ों में, सारे किलों में कितने पुख्ता इंतजाम किए जाते थे। जी पूजा जी,
2: बिल्कुल। राजा की कचहरी के बाद एक और दरवाजा आता
0: अच्छा।
2: है, यानी कि किले के हम और अंदरूनी भाग में जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है एक बहुत ही मजबूत कक्ष, पत्थर की चिनाई से बना हुआ।
0: अच्छा।
2: ये खजाना है।
0: अच्छा।
2: ये राजा का खजाना
0: जी।
2: जहां पर खजाना रखते होंगे ऐसा लगता है, लेकिन खजाना रखते थे या नहीं रखते थे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हर किले में जब कर वसूला जाता है तो उसके लिए एक खास कार्यालय होता था, मेरे ख्याल से ये कार्यालय रहा होगा। और वैसे भी हमको इतिहास से पता चलता है कि देवगढ़ के राजाओं द्वारा भी तांबे के सिक्के चलाए गए थे।
0: अच्छा।
2: और उस पर हमको लेख भी मिलते हैं, जैसे कि जाटवा सुत एक नाम आता है
0: जी।
2: एक नाम आता है जाटवा प्रतिराज।
0: अच्छा।
2: ऐसा भी नाम आता है, तो ये जो है टकसाल भी हो सकती है
0: जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे,
2: जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे या जहाँ सिक्के रखे जाते थे, तो ये एक खजाना है
0: जी।
2: इसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो हमको देवगढ़ के किले में दिखाई देता है एक राजा का महल, इसको बादल महल भी कहते हैं।
0: अच्छा।
2: जी हाँ, कई मंजिला है।
0: ओ।
2: और इसके पास ही एक छोटा सा चौकोर तालाब भी दिखाई देता है, जैसे मोतिया ताल है ना, इसी तरीके का एक तालाब।
0: अच्छा, एक और तालाब वहाँ इस पहाड़ी पर है।
2: लेकिन इसमें प्राकृतिक रूप से पानी नहीं आता। देवगढ़ के किले में मैंने देखा कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी दीवारों के बीच में मुझे कुछ टेराकोटा पाइपलाइंस दिखाई दी।
0: ओ।
2: और मैंने एक टेस्ट करके भी देखा कि क्या ये बंद है या खुली है या सिर्फ हमको आगे का हिस्सा दिख रहा है और हम इसको पाइपलाइन समझ रहे हैं।
0: हाँ।
2: लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने एक जगह से धुआं किया तो दूसरी जगह से निकला। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कहा ना कि आजकल आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का बड़ा जोर है, उस समय भी था।
0: हाँ, बिल्कुल।
2: तो उस समय यानी कि आज से 400-500 साल पहले भी पानी का वितरण कैसे होगा, बागों तक कैसे पानी पहुंचाया जाएगा, ये पहले ही योजनाबद्ध हो जाता था। क्योंकि जब आप महल की दीवार बना रहे हो उसी समय दीवारों में टेराकोटा की पाइपलाइन बिछाई जाती थी, यानी कि निश्चित था कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। हमको दिखाई देता है कि महलों में कई फव्वारे हैं और फव्वारों को इन्हीं पानी से चलाया जाएगा। दूसरा, जो मैंने पास में तालाब बताया, जो मोतिया तालाब है ना, उससे इस तालाब के बीच में भी पाइपलाइन डली हुई है, यानी कि मोतिया तालाब का पानी जो बाकी के तालाब है देवगढ़ के किले में वहां तक पहुंचाया जाता था। तो ये देखिए कि कितना अच्छा जल प्रबंधन है, बारिश का पानी भी इकट्ठा हो रहा है और मोतिया तालाब का पानी भी लगातार, क्योंकि उसमें तो झिरी है, वो एक वाटर लेवल मेंटेन करेगा, तो जितना पानी है उसका उपयोग किया जा सके, इस तरीके का पूरा प्रबंधन यहाँ पर था।
0: वाह, क्या बात है। देखिए, एक तो इतनी दुर्गम पहाड़ी के ऊपर किला बनाना, रास्ता बनाना, फिर वहाँ पर बहुमंजिला इमारत बनाना, और फिर वो उसके पूरे इमारत और पूरे किले के कोने कोने में टेराकोटा का यूज करके पाइपलाइन बना करके पानी पहुँचाना, निश्चित रूप से क्या कुशल प्रबंधन हमें हमारे पुराने राज्यों में, शासकों में देखने को मिलता है। जल प्रबंधन के लिए तो आपने बताया कि टेराकोटा की पाइपलाइंस वहां पर बिछाई गई, एक प्राकृतिक ताल भी था और एक वर्षा जल वाला भी तालाब था। लेकिन जब आपने फव्वारों का जिक्र किया, तो फव्वारों के लिए तो आज हम प्रेशर के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तब क्या प्रबंधन किया जाता रहा होगा?
2: बिल्कुल, हम पुराने किले महलों में देखते हैं कि फव्वारे भी हैं
0: जी।
2: और उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये फव्वारे कैसे चलते थे? तो संदीप जी, आपको याद होगा हमने 7वीं-8वीं कक्षा में फिजिक्स में पढ़ा होगा साइफन
0: जी,
2: है ना
0: जी।
2: तो ये सिंपल फिजिक्स के नियम है जिनका उपयोग करके प्राचीन काल में भी फव्वारे चलाए जाते थे। साइफन क्या होता है कि यदि हम ऊपर से पानी गिराएं एक यू ट्यूब में
0: जी,
2: तो पानी हमेशा एक लेवल मेंटेन करता है
0: जी।
2: तो जैसा मैंने कहा कि टेराकोटा पाइपलाइन है, तो दीवारों से या महलों की छतों पर किसी भी प्रकार से पंचक्कियों के द्वारा पानी को ऊपर चढ़ाया जाता था और इन टंकियों में संग्रहित कर लिया जाता था। फिर इन टंकियों से होते हुए टेराकोटा पाइपलाइन थे जिनके अवशेष हमको दीवारों में मिल रहे हैं
0: जी।
2: तो ये यू शेप में थे, तो ये दीवार से होते हुए फर्श में होते हुए और फिर जहां गार्डन है या जहां फव्वारा है वहां पर फिर ये ऊपर की तरफ उठते थे ये
0: जी,
2: पाइप
0: जी।
2: लेकिन उतना ऊपर नहीं उठाया जाता था जितना कि छत तक तो नहीं उठाएंगे, तो फर्श के लेवल पे छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि पानी जब छत से नीचे प्रेशर से गिरेगा तो फिर वो प्रेशर से ही ऊपर भी उठेगा। लेकिन यहाँ पर हमने फव्वारे का दूसरी ओर का सिरा है
0: जी।
2: तो और इस तरफ हम क्या करेंगे, इस सिरे को थोड़ा सा सकरा कर देंगे। तो क्या होगा, जब पानी प्रेशर से आएगा तो वो अपने आप फव्वारा बन जाएगा
0: जो बौछारों में
2: जी। हाँ, तो ये देखिए, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है कि किस तरीके से 500 साल पहले भी हम लोग भौतिकी के नियमों को जानते हैं,
0: को जानते थे और उनका उपयोग कर रहे थे।
2: जी हाँ,
0: कुशलता पूर्वक उपयोग कर रहे थे,
2: उसका उपयोग हम कर रहे थे।
0: वाकई बहुत ही दिलचस्प। देखिए यहाँ पर पूजा जी ने हमें जानकारियाँ दी हैं। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद इन उपयोगी जानकारियों का।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अब क्योंकि समय सीमा यहाँ पर समाप्त हो रही है तो हम आपको बता दें इतिहास के पन्नों से ये जो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं इसकी परिकल्पना और निर्देशित किया है सुश्री अदिति गौड़ ने, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने, और मैं यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा अब आपसे इजाजत देता हूँ। गोंड राज्य देवगढ़ के बारे में और बातें जारी रहेंगी, कीजिए इंतजार हमारे अगले एपिसोड का। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद। इतिहास के पन्नों से, इतिहास

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन एक नदी की भांति निरंतर बहता रहता है। कहीं बाल्यावस्था की चंचल लहरें हैं, कहीं युवावस्था का प्रबल वेग और कहीं अनुभवों की गंभीर गहराइयां। संसार इन लहरों के सौंदर्य पर मुग्ध होता रहता है, लेकिन ऋषियों की दृष्टि उस सागर की ओर होती है जहां सभी लहरें अंततः विलीन हो जाती हैं। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में भगवान श्री राम का चिंतन हमें इसी गहन सत्य के समीप ले जाता है। जिस बाल्यावस्था को लोग निष्कपट आनंद का काल मानते हैं, उसमें श्री राम अज्ञान और अस्थिरता की छाया देखते हैं। जिस युवावस्था को संसार सामर्थ्य, सौंदर्य और सफलता का शिखर कहता है, उसमें वो कामनाओं के तूफान, अहंकार के जाल और क्षणभंगुर आकर्षणों की अनिश्चितता का दर्शन करते हैं। और उनकी ये दृष्टि किसी विरक्ति से उत्पन्न नहीं होती, ये उस जागरण का परिणाम है जब मन पहली बार जीवन से पूछता है कि जो बदल रहा है क्या वही सत्य है, जो आज है और कल नहीं रहेगा, क्या इस स्थिति में स्थायी सुख की खोज की जा सकती है। जैसे भोर की पहली किरण अंधकार से उत्पन्न भ्रमों को शांत कर देती है, वैसे ही विवेक का उदय मनुष्य को जीवन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। भगवान श्री राम का वैराग्य उसी विवेक की उज्ज्वल ज्योति है, एक ऐसी ज्योति जो अज्ञान को दूर करती है, जो संसार के यथार्थ का उद्घाटन करती है। आइए योग संवाद में हम उस दिव्य चिंतन के साक्षी बने जहां एक राजकुमार के प्रश्न समस्त मानवता के प्रश्न बन जाते हैं, और जहां वैराग्य जीवन से विमुख होने का नहीं बल्कि सत्य के प्रति जागृत होने का नाम हो जाता है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: योग वासिष्ठ में हमने प्रवेश किया है
1: जी,
0: और भगवान श्री राम के वैराग्य प्रकरण पर चर्चा चल रही है, और आज हम पहुंचे हैं जहां भगवान श्री राम बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर अपनी बात रखते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है शशिकांत जी कि बचपन जो होता है उसको हर इंसान अपने जीवन का स्वर्ण काल मानता है। हम बचपन की स्मृतियों में होते हैं, बचपन सबसे अधिक आनंददायी हमें लगता है और बचपन के जो स्वाद हैं वही जीवन भर हम तलाशते हैं। ऐसे बचपन को भगवान श्री राम किस तरह से देख रहे हैं, ये आप हमें जरूर बताएं कि बाल्यावस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी होती है, वो किस तरह की चेष्टाएं करता है, क्या कहते हैं श्री राम।
1: देखिए, बाल्यावस्था का जो सौंदर्य है वो बड़े लोग देखते हैं
0: जी।
1: क्या बच्चों को भी बाल्यावस्था में उस आनंद की अनुभूति होती है?
0: बिल्कुल भी नहीं।
1: तो इस बात पर विचार करना है, और जो आपने कहा कि वैराग्य एक प्रकार की जागृति है जहां पर हम उन पक्षों को भी देखें जिनको हम नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि मन प्रायः एक पक्ष जिसे वो चाहता है या जिसे नहीं चाहता है उसी पर फोकस होता है और बाकी चीजों को नकार देता है
0: जी जी।
1: तो एक बहुत बड़ा इसका दोष भी है, ये गुण तो है किसी क्रम में, लेकिन दोष भी है कि आप समग्रता से नहीं देख पाते, राग द्वेषात्मक वृत्तियों से प्रेरित होकर देखते हैं। राम जी कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो चेष्टाएं होती हैं वो पशु पक्षियों की तरह होती हैं, जैसे पशु पक्षी चेष्टा करते हैं। यानी मनुष्य उस समय, यद्यपि मनुष्य का शरीर है लेकिन वो जो शरीरधारी जो जीव हैं उनके द्वारा चेष्टा कर रहा है, उनके जैसा चेष्टा कर रहा है। उसके पास अभी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। वो खिलौनों के लिए रोना, मूढ़ बुद्धिता उसके जीवन में दिखाई देगी, दीनता, चंचलता, अभिलाषा, ये सब बाल्यावस्था में उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं हैं। हर जगह जहां भी कहीं देखेगा वो मांग करना शुरू कर देगा। कई बार बच्चों को पालना बड़ा कठिन लगता भी है इसी नाते कि वो कोई भी जिद करता है, अनावश्यक जिद। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक बार किसी राजा ने पूछा, ये अकबर बीरबल के संदर्भ में कहा जाता है, कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है। बीरबल ने कहा कि सबसे कठिन काम है बच्चे को पालना। कैसी बात कर रहे हो आप
0: जी, जी, जी।
1: तो कहते हैं कि ठीक है, आपको यकीन ना आए तो मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चा क्या चाहिए उसको? तो हाथी चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो एक घड़ा चाहिए। तो घड़ा हाथी दोनों आ गए उसके सामने। फिर बच्चे ने कहा कि अब हाथी को घड़े में डाल दो। तो ये कहते संभव ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के असंभव कार्य बचपन में उत्पन्न होते हैं।
0: भगवान भी जब मानव शरीर लेकर इस धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने भी तो चंद्र खिलौने की जिद की।
1: हाँ बिल्कुल, हाँ चंद्र खिलौने,
0: चंद्रमा खिलौने के लिए चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये एक सहज बचपन की
1: बचपन की रहती है। लेकिन राम जी जब ये बाल्यावस्था देख रहे हैं, जिस समय जो वैराग्य हुआ है, वैराग्य का मतलब होता है कि उस पक्ष को देखना जो पक्ष नजरअंदाज करके हम जीते रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस समय जो पशु पक्षियों जैसी चेष्टा हो जाती है, इसलिए ये अवस्था जो है मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर के बहुत याद किया जाए। और अक्सर बड़े लोग जब तकलीफों को देखते हैं तो कहते हैं इससे सुंदर बचपन था, बचपन को याद करते हैं, कहते हैं वो दिन कितने अच्छे थे। लेकिन बच्चा देखता है बड़े लोगों को तो सोचता है ये बड़े लोग कितने अच्छे हैं, हम कैसे बड़े हो जाएं,
0: कितनी जल्दी बड़े हो जाएं।
1: तो यही है जीवन, जो चीज मिल जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जब वो खो जाता है तो फिर बहुत कीमती हो जाता है।
0: ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बचपन के ख्यालों में हम खोए रहते हैं, उस आनंद को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन दरअसल जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी चिंताएं, हमारे तनाव, हमारी आकांक्षाएं सब वैसी ही होती हैं, और उसी तरह की परिस्थिति से हम गुजरते हैं जैसे कि बड़े होने के बाद।
1: बड़े होने के बाद
0: वो जो लीलाएं हैं या जो भी बचपना है वो बड़ों के लिए आनंद का कारक होता है, बच्चे के लिए तो नहीं होता। तो चलिए, आपने बताया कि पशु पक्षी की तरह चेष्टा करता है बच्चा जब छोटा होता है, वो बचपन जिसको हम बहुत मूल्यवान समझते हैं, सुखद मानते हैं, उसे श्रीराम किस तरह से देख रहे हैं इस ग्रंथ में?
1: वो कह रहे हैं कि ये जो बचपन को बहुत रमणीय समझता है वो एक प्रकार से मूढ़ बुद्धि है, उसका बार बार धिक्कारण होना चाहिए कि वो ऐसी स्थिति में बचपन को रमणीय समझ रहा है। कहते हैं मुने, सभी प्राणियों का मन अन्य सब अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में ही 10 गुना चंचल हो उठता है। राम जी कहते हैं कि बाल्यावस्था का जो मन है युवा अवस्था या अन्य अवस्थाओं की तुलना में 10 गुना चंचल है।
0: जी जी।
1: तो उस अवस्था को रमणीय कहना एक प्रकार की मूढ़ बुद्धि होने का प्रमाण है। वो कभी रमणीय नहीं होता, मन स्वभाव से चंचल है, लेकिन इसमें तो 10 गुना चंचल होता है, पदार्थों को ही सबसे बढ़कर के मानता है। और बचपन और मन ये दोनों सभी वृत्तियों में सहोदर की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। यानी आप देखें तो बचपन में मन इतना प्रबल होता है कि जैसे लगता है कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से मन ही जी रहा हो। यहाँ तो आदमी बुद्धि का भी प्रयोग करता है, विवेक का भी प्रयोग कर लेता है, लेकिन बच्चा जो है पूरे समय मन के साथ जीता है।
0: जी
1: तो जो ये कहते हैं कि वो बचपन और मन ये दोनों सहोदर हैं, एक साथ बचपन में प्रकट होते हैं, तो इसलिए ये अवस्था बहुत ही चंचलता की अवस्था है। यहाँ पर हमेशा दीनता का भाव बना रहता है, देखी और अनदेखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता रहता है, उसकी बुद्धि शरीर दोनों चंचल होते हैं, शरीर में भी चंचलता होती है और बुद्धि में भी होती है। आप देखें तो बच्चा कभी भी शरीर से स्थिर नहीं बैठ सकता,
0: बिल्कुल नहीं,
1: और मन से भी स्थिर नहीं है। आप जब बड़े हो जाते हैं तो कई बार मन अस्थिर होता है, शरीर स्थिर होता है, कई बार शरीर अस्थिर होता है, मन स्थिर होता है। जैसे किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो शरीर से तो आप गतिशील हैं, लेकिन आपका मन तो उस कार्य में लगा हुआ है ना, लेकिन बचपन में ना मन लगता है ना शरीर स्थिर है, ये दोनों के दोनों चंचल हैं। बाल्यावस्था भय का मंदिर कहा राम जी ने, क्योंकि सभी डराते ही तो है बच्चों को, डर डर के उसको खाना खिलाइए तो डरा के खिलाइए, अपने हिसाब से आपको जो करवाना है तो डराइए। तो ऐसे में बच्चा सबसे डरता है और उसके चित्त में अनेक प्रकार के दूषण पैदा होते हैं। बाल्यकाल अविवेक नामधारी विलासी का विलास भवन है, राम जी कह रहे हैं कि ये अविवेक नाम को धारण करने वाला जो विलासी है, जो हर चीज बिना विवेक के करता है, उसी का वो विलास भवन है जहां पर अविवेक से संबंधित सारे कार्य होते हैं।
0: जी
1: इसीलिए आप देखिए बचपन के किसी को याद दिलाओ तुम बचपन में ये करते हो तो बचपन की जिद बड़े होने के बाद आदमी नहीं करता, वो सारी चीजें छोड़ देता है।
0: जी बाल्यावस्था पर भगवान श्री राम क्या सोच रहे हैं वैराग्य दशा में,
1: जी
0: ये हमने जाना। और अब हम आते हैं युवावस्था पर।
1: जी
0: युवावस्था को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है, ऊर्जा के लिहाज से, अपने सपने पूरे करने के लिहाज से। अपने देश की हम बात कर लें तो भाई यही उसकी बड़ी महानता है कि सबसे अधिक युवा शक्ति वाला देश होने जा रहा है या है। तो उस युवावस्था में अगर अध्यात्म की दृष्टि से बात करें तो चित्त की क्या स्थिति होती है?
1: इस अवस्था में चित्त की स्थिति होती है कि भोग भोगने का उत्साह प्रबल होता है, भ्रांति और काम रूपी पिशाच चित्त को हमेशा दूषित करके नरक में गिराने के लिए उद्दत रहता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, उसको पिशाच नाम दिया कि, और आज के समय में तो और जहां पर युवा आज डिजिटल डिवाइस के साथ खड़ा है तो ऐसे में आप देखिए तो उसके चित्त की स्थिति है कि अब तो एक ऐसी बीमारी विकसित हो रही है आज के समय में बात करें। राम जी ने तो उस समय कहा कि वो हमेशा व्यक्ति को नरक में गिराने के लिए उत्सुक रहता है काम रूपी पिशाच, लेकिन यहाँ पर तो आदमी उसका जो अटेंशन स्पेन है वही खत्म हो रहा है, वो कहीं बहुत देर तक एकाग्र नहीं हो सकता। इन संयंत्रों के द्वारा ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि व्यक्ति के चित्त को ऐसे तोड़ दिया जाए कि वो एक मिनट से अधिक कहीं एकाग्र ना हो सके। और जो ये रील देखने का, जो स्क्रॉल करने का जो प्रचलन चला है, वो एक प्रकार का ऐसी ही मानसिक रोग को जन्म देने का कारण बना हुआ है। वर्तमान में धीरे समाप्त हो चुका है। और इसका प्रभाव भी आप देखिए तो आए दिन खबरों में ये बात आती है कि थोड़ी सी बात पर युवा आत्महत्या या तमाम तरह के ऐसे कदम उठाने पर तैयार है कि थोड़ी सी भी सहनशीलता उसमें नहीं है, जबकि इस समय उसके पास शक्ति है। शक्ति का नियंत्रण परम आवश्यक है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा था कि मैं उन माता पिता को ये अपील करूंगा कि जो अपने बच्चों को तमाम सारे शक्ति के साधन अर्पित करते हैं, वो उन साधनों को देने से पहले उनके अंदर संस्कार पैदा करें। अगर संस्कार नहीं पैदा करेंगे तो वो सारे साधन ही उनके विनाश की वजह बनेंगे। और आज देखिए पाश्चात्य देशों में कई बार स्कूलों में बच्चे बंदूक चला देते हैं, हत्याएं कर देते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति होती है किशोरावस्था में कि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता, भावनाएं स्थिर नहीं होती। उसको मनोविज्ञान में तो आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं कि ऐसे भावनात्मक अस्थिरता का दौर होता है और आदमी भावनात्मक निर्णय लेता है और भावनात्मक निर्णय हमेशा दोषपूर्ण होगा, ऐसा देखा गया है। तो इसमें जो चित्त की स्थिति होती है वो बार बार जो यौवनारूढ होता है वो निश्चित तौर पर कामनाओं के अधीन होता है और कामनाओं का जो पिशाच है वो नर्क की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। दुख से दुख को ही प्राप्त करता है इस अवस्था में व्यक्ति।
0: तो ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि युवावस्था में चित्त की दशा क्या होती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कहता है ये ग्रंथ कि यौवन का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: इसको कहते हैं राम जी कि हे मुने, इस अवस्था को जब मैंने देखा तो युवावस्था में स्त्री द्युत कलह आदि दुर्व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग लोभ आदि प्रसिद्ध दुष्ट दोष उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के चित्त में। और इसको राम जी कहते हैं कि ये नरक का बीज है। युवा अवस्था को नरक का बीज कहा, जबकि ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति बहुत शक्ति संपन्न होता है। तो अगर ये नरक का बीज है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य करा पाने में ये सक्षम है कि जहां व्यक्ति नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो जाए। इसीलिए आप देखिएगा कि ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि जिस अवस्था को किसी ने साध लिया तो वो पूरे जीवन को अपने अनुरूप जी सकता है, और जिसका ये अवस्था नहीं सदा युवा अवस्था,
0: इस अवस्था में बह गया
1: तो वो भटक जाता है। कहते हैं ना कि आप चंद खुशियों के लिए पूरे जीवन भर रोना चुन सकते हैं और थोड़े दिन की साधना कर लेंगे युवा अवस्था की तो पूरे जीवन आप हंस सकते हैं, आनंद के साथ रह सकते हैं। और जिन लोगों ने साधा वो निश्चित तौर पर सफल हुए, सफल कहे भी जाते हैं। तो राम जी कहते हैं कि नरक का बीज है और सदा भ्रांति पैदा करता है। यौवन के द्वारा जिसका नाश नहीं हुआ वे मनुष्य किसी दूसरे से नष्ट ही नहीं हो सकते। यानी आप देखिए कि ये कैसी अवस्था है, जिस अवस्था को अगर आपने साध लिया तो फिर किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको नष्ट कर सके। तो यौवन कितना मतलब कठिन अवस्था है, जहां पर कहते हैं इस अवस्था ने अगर नष्ट नहीं किया तो फिर उसको कोई और मनुष्य नष्ट नहीं करेगा। यानी नष्ट होने के सारे जो साधन हैं वो इसी अवस्था में होने की संभावना है, और जीवन में देखें तो जीवन के सारे उत्थान भी इसी अवस्था में होने की संभावना है। तो ये बहुत ही कह सकते हैं विचार करने योग्य अवस्था है। जी
0: अच्छा, भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि युवावस्था कैसी है?
1: युवावस्था के लिए वो कहते हैं कि यह अमंगलकारी यौवन है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो भोगों के समय मधुर एवं स्वादिष्ट लगता है और अंत में दुखदायी होने के कारण तिक्त प्रतीत होता है। और आप देखें तो संसार का कोई भी भोग ऐसा नहीं है जिस भोग को भोगने के बाद पछतावा ना हो। तो ये कहते हैं कि अंत में तिक्त प्रतीत होता है और इसमें दोष ही दोष भरे हैं। सब दोषों का ये आभूषण है, मदिरा के मद के विलास के समान मोहक है। जैसे मदिरा में आदमी मद के सम्मोहन में आ जाता है, वैसे ही ये अवस्था है जिसमें आदमी दोषों के आभूषण को पहन लेता है और दोषपूर्ण कार्य के प्रभाव में आ जाता है और दोषपूर्ण कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है।
0: जी लेकिन तभी जबकि युवावस्था साधा ना जाए, अगर साध लिया तो फिर जिंदगी भर आनंद की भी स्थिति होती है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, युवावस्था में व्यक्ति को क्या महसूस होता है, क्या कहते हैं युवराज राम?
1: जी कहते हैं कि इस अवस्था में असत्य होकर भी सत्य प्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देने वाला है, तथा स्वप्नावस्था में जिस तरीके से हम तमाम सारे सुख वैभव भोग रहे होते हैं और उस भोग में स्वप्न टूटने के बाद वो खत्म हो जाता है, वैसे ही इस अवस्था की स्थिति है कि यहाँ पर भी आदमी स्वप्न के भोगों की भांति सुख की तरफ भागता है, और जबकि सच ये है कि जाता है उसके पास, और फिर जैसे वो मृग जो है पानी के भ्रम में दौड़ता है रेगिस्तान में और उसमें प्यास बढ़ता है, उसकी प्यास बुझती नहीं है,
2: प्यास बढ़ती जाती
1: और अंत में वो प्यास से ही मर जाता है। तो ठीक ऐसी ही अवस्था है जहां पर जिन विषयों के प्रति व्यक्ति भागता है उन विषयों के प्रति और आकर्षण या और प्रबलता से उन भोगों की इच्छा और जन्म लेती है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये आभूषण है दुख का, अमंगलकारी है और इसमें व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मतलब असत्य में सत्य सा प्रतीत होता है, वहां सत्य है नहीं, सुख है नहीं, लेकिन वहीं वो सुख खोजता है। जैसे आप देखिए ना, युवा अवस्था में बच्चे जहां जाकर के अपना समय बिताते हैं उसका वास्तव में वो अगर विश्लेषण करें तो क्या उस समय का उनके जीवन में कोई उपयोग है? अगर देखें तो वो जो करने योग्य है वो न करके जो नहीं करने योग्य है उनमें अधिक ध्यान देते हैं और अधिक समय व्यतीत करते हैं। तो इसलिए उसमें बहुत ध्यान की आवश्यकता होती है। असत्य कहा उन्होंने, असत्य। जी जी।
2: अच्छा ये बताएं कि इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है, एक युवा जो होता है, उसकी बुद्धि किस तरह से काम करती है?
1: जी, इस अवस्था में उसकी बुद्धि युवा अवस्था में सबको कष्ट प्रदान करने वाला जो आयोजन है, व्यक्ति उस तरफ बढ़ता है और उसकी बुद्धि मोह से युक्त होती है और बुद्धि कुंठित कर देता है मोह, और इस भ्रम से प्रेरित होकर वो अतिशय मात्रा में भ्रम का उत्पादन करता है। यानी बुद्धि जो होती है वो भ्रमोत्पादक होती है, माने भ्रम का निवारण करने वाली नहीं होती, भ्रम का उत्पादन करने वाली होती है। राम जी तो कहते हैं जैसे दावाग्नि वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार युवा अवस्था में जीव प्रियतमा के वियोग जनित दुस्सह शोकाग्नि से मन ही मन जलता रहता है। ऐसी स्थिति होती है जैसे अत्यंत निर्मल विस्तृत और पवित्र नदी भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम निर्मल विशाल और शुद्ध बुद्धि भी युवा अवस्था में कलुषित हो जाती है। इसका आशय ये है कि अगर हम मन के या युवा अवस्थाओं के इस स्थिति को जान लें तो हमारे अंदर सावधानी बढ़ेगी, हम सजग होंगे, न कि ये उसका निंदा है। निंदा नहीं है
2: बिल्कुल, क्योंकि निंदा कहा भी नहीं, दोष कहा।
1: हाँ, दोष कहा है, दोष है। तो जब दोष की बात आती है तो इसका मतलब सावधान होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। जी,
2: ऐसा नहीं कि युवा अवस्था मूल्यहीन है,
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
2: अत्यंत मूल्यवान है,
1: अत्यंत मूल्यवान।
2: लेकिन उसके जो दोष है उसको हम जब जान लेंगे
1: तो सजग रहेंगे,
2: तो सजग रहेंगे, बिल्कुल
1: अवेयर रहेंगे। जी,
2: अक्सर इस बातचीत में हम गुणों की चर्चा करते हैं, योग संवाद कार्यक्रम में कई बार गुणों की चर्चा हुई है कि हर इंसान की एक प्रकृति होती है, कुछ गुण होते हैं जो कम या ज्यादा होते हैं हर व्यक्ति में, तो क्या अवस्था के हिसाब से भी इन गुणों का घटना या बढ़ना होता है? युवा अवस्था में किन गुणों की वृद्धि होती है?
1: आपने बहुत सुंदर सवाल किया और बिल्कुल ऐसे ही इस अवस्था का वर्णन करते हुए राम जी गुरु जी से कहते हैं अपने कहते हैं कि ये वो अवस्था है जिसमें रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण यह विषम अवस्था है। यानी ये दो गुण जो है इसमें इतने प्रबल है कि सत्व गुण जो प्रकाश देता है, जो ज्ञान का प्रतीक है, वो हमेशा ये दोनों ढक लेते हैं। व्यक्ति जो सोचता है वो करने के लिए क्रियाशील होता है, जो विचार उसके मन में आया या जिस भी विषय के भोग या जिस वस्तु या व्यक्ति से मिलने की आकांक्षा विकसित हुई वो उसी के चिंतन में निरंतर रत रहेगा या उसी को प्राप्त करने की चेष्टा में निरंतर रत रहेगा। उसका क्या परिणाम होगा या वो करणीय है या अकरणीय है, ये विचार करने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहता, क्योंकि ये विचार करने के लिए सत्वगुण का प्रकाश चाहिए और सत्वगुण का प्रकाश ढक जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं कि नहीं होता, जो लोग साधते हैं वो सत्वगुण भी होता है, क्योंकि हर गुण में ये तीनों गुण होते हैं। तो लेकिन इस गुण की वृद्धि होती है, इस गुण की पूर्णता होती है इस अवस्था में। सद्गुण की स्थिरता को नष्ट करने में ये दोनों गुण दक्ष हैं, रजोगुण और तमोगुण। तो इसका जो है काफी विस्तार रहता है इस अवस्था में, और व्यक्ति इसी अवस्था से प्रेरित होकर के हमेशा क्रियाशील भोग की तरफ उन्मुख रहता है। जी, ये इस अवस्था के दोष।
2: अच्छा, अभी आपने चर्चा की मृग तृष्णा की।
1: हाँ,
2: यौवन को मृग तृष्णा कहा क्यों भगवान श्री राम ने?
1: मृग तृष्णा इसको इसलिए कहा कि आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं ये संसार एक मृग तृष्णा, कई बार अध्यात्म में मृग तृष्णा शब्द का बड़ा उपयोग किया जाता है कि ये जगत जैसे मृग को पानी का भ्रम होता है, उन उड़ती हुई रेतों में प्रकाश के अपवर्तन या प्रक्रिया के कारण उनको भ्रम होता है, और उसी तृष्णा से वो मृग उस पानी में प्राण गमा देता है। अपना जीवन गंवा देता है, जबकि वहां पानी है नहीं, जितना ही दौड़ता है, जैसे हम कहते हैं ना क्षितिज पर आसमान और धरती को मिलते हुए हम देखते हैं आकाश और धरती का संध देखते हैं, लेकिन कहीं होता नहीं है। तो ठीक ऐसे ही इस जगत में व्यक्ति मृग तृष्णा जगत की होती है उसे, और युवा अवस्था में ये इतनी प्रबल होती है कि जिसमें व्यक्ति करने योग्य कर्म त्याग करके हमेशा प्यास बढ़ाने के क्रम में भागता रहता है, जैसे मृग प्यास बुझाने के प्रयास में दौड़ता है और प्यास बढ़ाता है, वैसे युवा अवस्था में आदमी अपने इच्छाओं को शांत करने की कोशिश में इच्छाओं को और बलवती करता है और उन इच्छाओं का वशीभूत होता है और इच्छाओं का पूरी तरीके से गुलाम होकर अपने भविष्य

0: कि वैराग्य प्रकरण से चर्चा की कि बाल्यावस्था और युवावस्था के क्या दोष हैं, और विस्तार से आपने बताया कि भगवान श्री राम की दृष्टि क्या देख रही है दोनों अवस्थाओं में। जो आज के हमारे लोग हैं, जो आज के युवा हैं या आज के जो बच्चे हैं, क्या कहेंगे आप उनसे?
1: उनसे मैं यही कहूंगा कि यौवन रूपिणी जो रात्रि है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, इसका वो याद रखें। और उस
0: युवावस्था को रात्रि कहा,
1: रात्रि कहा, राम जी ने कहा कि ये रात्रि है, इसको दिन, और हम लोग दिन समझते
0: दिन
1: हैं,
0: दिन समझते हैं जी,
1: देखिए कितनी दृष्टि, तो वो इसका अर्थ ये नहीं कि दिन नहीं है, दिन है तो रात को भी याद करो। योग का अर्थ ये नहीं हुआ, योग का अर्थ किसी एक पक्ष तक नहीं, समग्रता से देखने का जो कौशल है वो है योग। और योग बिना वैराग्य के, मैं स्पष्ट करूंगा कि वैराग्य का अर्थ कदापि ये नहीं है कि हम पलायन करें, वैराग्य पलायन नहीं है, वैराग्य जागरण है, एक सत्य का जागरण, जिसके बाद आप योग वासिष्ठ में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण की बात करेंगे राम जी, जब वैराग्य की जब बात हो जाएगी कि वैराग्य किन किन कारणों से उनको हुआ है, तो जब गुरु से अपने पूरे चित्त की बात। अच्छा एक बात और भी आप देखिएगा कि जब आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो उसको कहना चाहिए, कह करके ही आप उससे मुक्त होते हैं। कई बार हम उसी गुंतेड़े में उलझे रहते हैं, न कह पाते हैं और ना मतलब छूट पाते हैं, तो वो बार बार हमारे अंदर बना रहता है और फिर हमको अस्थिर करता है हमारे भावनाओं को। इसलिए कहते हैं, एक मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कैथार्सिस, जिसमें कहते हैं हम लोग उसको निकालिए। तो यहाँ पर राम जी को जिन जिन कारणों से वैराग्य हुआ है, वो सारे कारण पहले वो गुरु से कह रहे हैं,
0: कह रहे हैं बिल्कुल, है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है।
1: और गुरु उसके लिए प्रसन्न हो रहे हैं सुनकर, ऐसा नहीं जैसे आपके सामने कोई आकर के ऐसे कहे तो हो सकता है कि आप उसे पॉजिटिव या उसको नेगेटिव कहने लगे। गुरु कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये विवेक से उत्पन्न हुआ है। तो राम जी को वो उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि तुम इन सारी बातों को कहो, देखो, क्योंकि वो देखना आवश्यक है। जब तक संपूर्णता से किसी चीज को नहीं देखेंगे, तब तक आप मतलब न्यायशील नहीं हो पाएंगे।
0: बिल्कुल, और यही एक संदेश आज के माता पिता के लिए भी आपकी तरफ से हो गया, जो मैं समझ रही हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि बच्चा अगर गुमसुम हो जाए, किसी चिंतन में दिखाई दे बार बार असामान्य रूप से,
1: जी,
0: तो जिस तरह राम बोले इसके लिए प्रयास गुरुजनों का है, पिता का है, इस तरह का प्रयास परिवार में माता पिता का भी होना चाहिए।
1: बच्चा अगर बचपन के साथ नहीं है, या हम अपने आकांक्षाओं के नाते बच्चों को बचपन के साथ न रख करके उसे अपने जैसा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है और हमारी बहुत बड़ा अनदेखापन है कि हम बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्यों अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। आपका उससे संवाद होना चाहिए, ये एक संवाद है, योग संवाद है, वाद प्रतिवाद नहीं है, संवाद है। संवाद में जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहेगा तो उसको आप कहने का पूरा अवसर दीजिए, ताकि वो कह के उससे मुक्त हो सके और फिर उसके दूसरे पक्ष को उसके सामने आप रख सकें, तभी तो योग होगा, तभी तो जुड़ना होगा।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में गुरुजी के सामने वो अपने मन की पूरी बात रख रहे हैं और वो बाल्यावस्था और युवावस्था के उन दोषों को देख रहे हैं, क्योंकि जहां बाल्यावस्था युवावस्था में जो लोग उन्हें आनंदित दिख रहे हैं, उसके दूसरे पक्ष को राम जी देख रहे हैं, क्योंकि राम जी तटस्थ हैं, राम जी का विवेक जगा हुआ है, और उन लोगों का जो भोग में लिप्त हैं वो विवेक के साथ नहीं है, वो तो उस अवस्था में बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं कि और हम किस तरीके से इस अवस्था में डूब सकें।
0: जी जी जी,
1: राम जी डूबने वाले नहीं है, वो तो जागे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर मतलब मैं कहता हूँ कि बड़ा सुंदर ये ग्रंथ है कि जहां पर स्वयं जो परम योगीश्वर है वही उन भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है जो आम लोगों के अंदर उत्पन्न होता है।
0: बिल्कुल, तो शशिकांत जी बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज योग संवाद कार्यक्रम में बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर, और मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी बातचीत है ये, अपने जीवन में भी जो हमारे सुनने वाले हैं वो इसको उतार सकते हैं और इस तरह से युवावस्था और बाल्यावस्था को देखा जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपका रहा, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे थे बाल्यावस्था और युवावस्था के दोष पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, और इस कार्यक्रम से मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: 93.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह।
1: मैं हूं आपका दोस्त दीपक नेमा।
0: श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी, समाज सेवी और गांधीवादी विचारक लोकनायक ओमियो कुमार दास की। श्रोताओं, आज हम उस महान आत्मा को जानने समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का, एक ऐसे महापुरुष जो केवल असम के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव हैं।
1: लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन साधारण नहीं बल्कि असाधारण त्याग, तपस्या और समर्पण की एक अद्भुत गाथा है। वे एक ऐसे युग के साक्षी और निर्माता थे जब भारत की आजादी के लिए हर घर से दीप जल रहे थे, हर सीने में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। उस महान स्वतंत्रता संग्राम में ओमियो कुमार दास जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। आज के इस कार्यक्रम में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे, उनके योगदान को समझेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
0: श्रोताओं, ओमियो कुमार दास, जिन्हें लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, समाज सेवी, गांधीवादी विचारक, शिक्षाविद और असम के प्रमुख राजनेता थे। उनका जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्र सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया।
1: ओमियो कुमार दास का जन्म 21 मई 1895 को असम के नागांव जिले में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कारों से युक्त किया। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना और समाज सेवा की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तेजपुर हाई स्कूल में हुई। तेजपुर, जो असम का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, वहां की शैक्षणिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल के दिनों से ही वे मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे।
0: प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ओमियो कुमार दास ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉटन कॉलेज असम का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था, जहां उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हुई। यहां उनका संपर्क विभिन्न राष्ट्रवादी विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से हुआ। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सिटी कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी। कलकत्ता उस समय भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। यहां उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिला। इन महान नेताओं के विचारों और कार्यों ने युवा ओमियो कुमार दास को गहराई से प्रभावित किया।
1: कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। वे छात्र संगठनों से जुड़े और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। ये उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब ओमियो कुमार दास ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे गांधी जी के आदर्शों, सत्य, अहिंसा और स्वराज से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने असम में असहयोग आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
0: युवा ओमियो कुमार दास ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छात्रों और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उनके प्रभावशाली भाषणों और निष्ठा ने कई युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ओमियो कुमार दास इसके असम में प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया और नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की।
1: इस आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन जेल की कठोर परिस्थितियां भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकी। जेल में रहते हुए भी वे अन्य कैदियों को प्रेरित करते रहे और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनकी निष्ठा बनाए रखते रहे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा निर्णायक मोड़ था। ओमियो कुमार दास ने असम में इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो ओमियो कुमार दास ने इसे पूरी तरह से अपना लिया।
0: इस आंदोलन के दौरान गोपीनाथ बारडोली और सिद्धिनाथ शर्मा जैसे नेताओं के साथ ओमियो कुमार दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें असम के विभिन्न जेलों में कैद किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया। पूरे असम में लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ओमियो कुमार दास को अनेक बार कारावास में डाला गया। उन्होंने कुल मिलाकर कई वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उनकी अटूट देशभक्ति और निरंतर संघर्ष ने उन्हें असम के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया।
1: ओमियो कुमार दास की योग्यता और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। ये उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1945 में उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया, जहां उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद ओमियो कुमार दास ने अपने राजनीतिक कार्य को जारी रखा। उन्होंने ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीता। इन वर्षों के दौरान उन्होंने असम सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर कार्य किया।
0: जब ओमियो कुमार दास असम के श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने चाय बागान मजदूरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। असम में चाय उद्योग एक प्रमुख आर्थिक स्तंभ था, लेकिन चाय बागान के मजदूर अत्यंत शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते थे। ओमियो कुमार दास ने चाय बागान मजदूरों के लिए भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की स्थापना की। ये पहल एशिया में अपनी तरह की पहली योजनाओं में से एक थी। इस योजना ने हजारों मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: उन्होंने मजदूर वर्ग को संगठित करने और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। शिक्षा मंत्री के रूप में ओमियो कुमार दास ने असम में बुनियादी शिक्षा योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाना था।
0: उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। ओमियो कुमार दास ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि असम के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उचित आपूर्ति हो। उन्होंने विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
1: ओमियो कुमार दास केवल एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने असमिया भाषा में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। ओमियो कुमार दास की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसका असमिया भाषा में अनुवाद था। उन्होंने इसे मोर सत्य अनेश्वर काहिनी शीर्षक से अनुवादित किया।
0: ये अनुवाद असम के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उन्हें गांधी जी के जीवन और विचारों को उनकी अपनी भाषा में समझने का अवसर दिया। इस अनुवाद ने असम में गांधीवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास ने महात्मा गांधी पर कई अन्य पुस्तकें भी लिखीं। गांधीजीर जीवनी अर्थात गांधी जी की जीवनी, ये पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। महात्मा गांधी आमी किदोर बुजिलू अर्थात महात्मा गांधी को मैंने कैसे समझा, इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है।
1: असुमोत महात्मा, असम में महात्मा, ये पुस्तक महात्मा गांधी की असम यात्रा और असम में उनके प्रभाव पर केंद्रित है। इन पुस्तकों ने असम के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास की लेखनी सरल और प्रभावी थी, जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकती थी। ओमियो कुमार दास का जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वे एक समर्पित समाज सेवी थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगा दिया।
0: ओमियो कुमार दास कई गांधीवादी और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे। ओमियो कुमार दास ने इस संगठन के माध्यम से असम में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से भी वो जुड़े थे। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया। इसके साथ ही भारत सेवक समाज से भी उनका संबंध था। ये संगठन समाज सेवा के लिए समर्पित था और ओमियो कुमार दास इसके सक्रिय सदस्य थे।
1: गांधी स्मारक निधि, ये संगठन महात्मा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। ओमियो कुमार दास इससे सक्रिय रूप से जुड़े थे। कस्तूरबा स्मारक निधि, ये संगठन महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता था। असम सेवा समिति, ये असम का एक प्रमुख समाज सेवी संगठन था जिसके संस्थापकों में ओमियो कुमार दास भी थे। ओमियो कुमार दास ने असम में नशा विरोधी अभियान चलाया। उस समय असम में विशेष रूप से चाय बागानों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन एक बड़ी समस्या था। उन्होंने लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाए।
0: ओमियो कुमार दास ने कुष्ठ रोग और तपेदिक से पीड़ित रोगियों के पुनर्वास के लिए भी कार्य। उस समय ये रोग एक बड़ी सामाजिक समस्या थे और इन रोगों से पीड़ित लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ओमियो कुमार दास ने इन रोगियों के लिए उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया। ओमियो कुमार दास एक सरल और विनम्र व्यक्ति थे। उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था। वे सत्य और अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें लोक नायक कहकर पुकारा करते थे।
1: उनमें अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाने और उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित करने में सक्षम थे। उनकी वाणी में जादू था। जब वे सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। ओमियो कुमार दास एक निडर व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका नेवर से डाई, कभी हार ना मानने वाला दृष्टिकोण उनके चरित्र का एक प्रमुख पहलू था।
0: श्रोताओं, वो एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति भी थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका थी। दोनों ने मिलकर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्य किए। उनकी बेटी ने भी पिता के आदर्शों का अनुसरण किया। ओमियो कुमार दास के समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1963 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के समर्पित कार्य के लिए दिया गया था।
1: भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने 15 मई 1998 को ओमियो कुमार दास के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये सम्मान उनके महान योगदान की स्वीकृति थी। 1995 में ओमियो कुमार दास की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुवाहाटी में ओमियो कुमार दास सामाजिक परिवर्तन और विकास संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। ये संस्थान सामाजिक शोध और विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। ढेकियाजुली में एक कॉलेज को लोकनायक ओमियो कुमार दास कॉलेज के नाम से नामित किया गया है। ये कॉलेज उनकी स्मृति में स्थापित किया गया है और असम में युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करता है।
0: ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी सन 1975 को हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग 79-80 वर्ष थी। उनके निधन से असम और पूरे भारत ने एक महान नेता और समाज सेवी को खो दिया। उनकी मृत्यु पर असम में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के समय उनकी पत्नी पुष्पलता दास और उनकी बेटी जीवित थीं। पुष्पलता दास स्वयं एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और संसद सदस्य थीं। उनका निधन सन 2003 में हुआ।
1: ओमियो कुमार दास की विरासत आज भी असम में जीवित है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। चाय बागान मजदूरों के लिए उनके द्वारा स्थापित भविष्य निधि योजना आज भी लाखों मजदूरों को लाभान्वित कर रही है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा किया गया गांधी की आत्मकथा का अनुवाद आज भी असम में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। ये पुस्तकें नई पीढ़ियों को गांधी जी के विचारों और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से परिचित कराती हैं।
0: ओमियो कुमार दास ने असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई संस्थान स्थापित किए और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। असम की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने चाय बागान मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। उनकी पहल से चाय बागान मजदूरों को न केवल बेहतर वेतन मिला बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई।
1: उन्होंने असम की बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी विरासत को समझा और सभी समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने चाय बागान मजदूरों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। ओमियो कुमार दास ने असम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने कृषि सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता की जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि स्वस्थ समाज ही विकसित समाज हो सकता है।
0: ओमियो कुमार दास के जीवन का केंद्र गांधीवादी विचारधारा थी। उन्होंने महात्मा गांधी के तीन प्रमुख सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और सर्वोदय को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। सत्य उनके जीवन का आधार था। वे हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके चरित्र की पहचान थी।
1: ओमियो कुमार दास अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उन्होंने हमेशा अहिंसक तरीकों को अपनाया। वे मानते थे कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि अहिंसा के माध्यम से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय यानी सभी का उत्थान उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे किसी एक वर्ग या समुदाय के विकास में विश्वास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान करना था। उन्होंने अपने जीवन में इस आदर्श को साकार करने का प्रयास किया।
0: गांधी जी की तरह ओमियो कुमार दास भी खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रबल समर्थक थे। वे हमेशा खादी के वस्त्र पहनते थे और लोगों को भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने असम में खादी उद्योग के विकास के लिए भी प्रयास किया। ओमियो कुमार दास महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास स्वयं एक सशक्त महिला थीं, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। ओमियो कुमार दास ने महिलाओं को शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
1: उन्होंने कस्तूरबा स्मारक निधि के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित करने में सहायता की। ओमियो कुमार दास का मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उन्होंने अपने जीवन में इस विचार को व्यवहारिक रूप दिया।
0: ओमियो कुमार दास युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। ओमियो कुमार दास ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
1: ओमियो कुमार दास अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहे, चाहे जेल की यातनाएं सहनी पड़ी या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास शिक्षा को समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के प्रसार के अथक प्रयास किए। युवाओं को उनसे ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही जीवन में सफलता की कुंजी है।
0: ओमियो कुमार दास ने सभी वर्गों और समुदायों के बीच समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। युवाओं को उनसे सामाजिक सद्भाव और एकता का पाठ मिलता है। ओमियो कुमार दास के जीवन में अनेक संघर्ष और चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में कठोर यातनाएं भी दी गईं। लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत किया।
1: स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण ओमियो कुमार दास को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी आर्थिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उस समय समाज में ये प्रथाएं गहराई से जड़े जमाई हुई थीं। उन्हें इन रूढ़ियों को तोड़ने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने प्रयासों में सफल रहे।
0: ओमियो कुमार दास के समकालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे। महात्मा गांधी उनके आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से भी भेंट की और उनके मार्गदर्शन में काम किया। गांधी जी भी ओमियो कुमार दास के समर्पण और कार्य से प्रभावित थे। स्वतंत्र भारत में ओमियो कुमार दास का संबंध कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन नेताओं के साथ काम किया।
1: असम के अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गोपीनाथ बारडोली, तरुण राम फूकन और अन्य के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध थे। इन सभी नेताओं ने मिलकर असम में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। लोकनायक ओमियो कुमार दास का जीवन त्याग, तपस्या और समर्पण की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, कुशल प्रशासक, प्रभावी लेखक और समर्पित समाज सेवी भी थे।
0: उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार में अपनाया और इस प्रकार एक आदर्श जीवन जिया। आज भी असम और पूरे भारत में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। लोकनायक अर्थात जनता के नायक, जिन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया।
1: ओमियो कुमार दास की जीवनी युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता त्याग में है, सेवा में है, निस्वार्थ भाव में है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से पूरे समाज को बदल सकता है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के मार्ग पर चलकर ही मानवता का वास्तविक विकास संभव है। दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम भारत विभूति में हमने ढेर सारी बातें की लोक नायक ओमियो कुमार दास जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा,
0: और मैं थी आपके साथ सुनीता सिंह।
1: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको एक बार फिर से लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां 17 से 20 जून तक स्थापना रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है।

0: 18 जून की शाम मंचन हुआ नाटक रानी दाई का, जिसका निर्देशन किया डॉक्टर योगेंद्र चौबे ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।
1: हाँ भैया,

0: कथी के तो पता नहीं, पानी तोर भौजी लेके आई, जा बोला भौजी ला।
1: ए भौजी,
0: हां भाई

0: खाए के बेरा में खा लेते भोला बेजन। और सुन, बने बने रही बे।
1: थोंदो कहाँ है?
0: थोंदो? आई बार तो कह रहे हो, बारी डहर हुई बना देते।
1: बारी डहर हुई? अरे बारी में क्या कर थरू? यहाँ मोर सामानों वाला जो धर छोड़ के बारी में क्या कर थरू?
0: उससे तो तू नौकर से दरवाजे रही थे, बना देता हूँ।
1: बला।
2: बनी रही
1: भी। बहु बनी रही भी।

0: जिन्होंने अपने पौरुष और पराक्रम से समय की धार को बदल दिया और इतिहास में दर्ज करवा लिया अपना नाम स्वर्णाक्षरों में। आइए इसी तारतम्य में आज बात करते हैं स्वामी कुमारनंद जी की, जिनका जन्म बर्मा के रंगून शहर में हुआ था और 29 जनवरी 1971 को दिल्ली में इनका निधन हुआ था।
1: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ में जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं की और संपन्नता को त्याग कर अपना सर्वस्व कुर्बान कर जन जन में चेतना का शंख फूंका, उन महान देशभक्तों की श्रृंखला में स्वामी कुमार नंद का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। रंगून शहर के कमिश्नर एनके नाग के घर जन्मे स्वामी कुमार नंद का असली नाम विजेंद्र कुमार नाग था। इनके परिवार का संबंध श्री रविंद्रनाथ टैगोर एवं प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त से था। प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु स्वामी जी के मामा लगते थे।
0: स्वामी कुमार नंद जी की प्रारंभिक शिक्षा बर्मा में हुई और उच्च शिक्षा ढाका और कलकत्ता में संपन्न हुई। नेशनल कॉलेज से बीए करने के बाद एक अनहोनी घटना घटी। तत्कालीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट एलन पर सन 1907 में किसी क्रांतिकारी ने गवालन स्टेशन पर गोली चला दी थी। यद्यपि इस कांड का कभी खुलासा नहीं हो सका, लेकिन जो लोग उसमें शक के घेरे में आए थे उनमें स्वामी जी का नाम भी था। कलकत्ता के जिला मजिस्ट्रेट जो एक अंग्रेज थे, उनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वामी जी के पिता से बात की और स्वामी जी को क्रांतिकारियों के चंगुल से निकालने के लिए सरकार के खर्च पर ICS की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव रखा गया।
1: स्वामी कुमार नंद जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपने तो सारा जीवन अंग्रेजों की गुलामी करने में बिता दिया, हमें गुलामी नहीं करनी है। भारत अंग्रेजों की दास्ता में बंधा है। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। जब तक भारत गुलाम है मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। आजन्म कुंवारा रहकर देश सेवा में जीवन अर्पण कर दूंगा। जब ये बात रवींद्रनाथ टैगोर जी को मालूम पड़ी तब वे अति प्रसन्न हुए। उन्हें बंगाल के क्रांतिकारियों के त्याग और निष्ठा पर गर्व हुआ।

0: स्वामी कुमारनंद जब अपने पिताजी के साथ पुरी गए, तब स्वामी सत्यानंद नाम के सन्यासी से आपकी भेंट हुई। वे ही स्वामी कुमारनंद के प्रथम गुरु सिद्ध हुए। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने नौजवानों को देशभक्ति से प्रेरित किया। उसका भी स्वामी कुमारनंद पे अत्यधिक प्रभाव पड़ा। स्वामी कुमारनंद अनेक भाषाओं के विद्वान थे। चीनी भाषा का भी उनको ज्ञान था। सन 1910 के नवंबर में वे चीन गए। चीनी क्रांति के समय वे चीन में थे और जब भारत लौट कर आए तो कलकत्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल तक कैद में रखकर यातनाएं दी गईं। फिर वे रिहा हुए।
1: स्वामी जी का जीवन कभी भी खतरों से खाली नहीं रहा। ढाका के एक मकान पर पुलिस ने छापा मारा। वहाँ पिस्तौल, कारतूस व डायनामाइट और बम बनाने का सामान पकड़ा गया। 4 नौजवान गिरफ्तार हो गए और स्वामी जी वहाँ से भागकर कलकत्ता आ गए। चित्तरंजन दास की सलाह से उन्होंने कलकत्ता छोड़ा और सन्यासी का वेश बदलकर कन्याकुमारी आ गए। तभी से उन्होंने अपना नाम द्विजेंद्र कुमार से बदलकर स्वामी कुमारनंद रख लिया। सन 1920 में चित्तरंजन दास के आग्रह पर ही स्वामी जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वैसे तो स्वामी कुमारनंद जी का राजनैतिक जीवन सन 1907 से ही आरंभ हो गया था। कलकत्ते में उनका परिचय पुरानी कृष्ण मिल ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी से हुआ। साथ में खरवा के राव गोपाल सिंह भी थे। इतिहास साक्षी है कि राव गोपाल दास सिंह खरवा विजय सिंह पथिक के महान सहयोगी रहे और सेठ दामोदर दास राठी ने अनेक क्रांतिकारियों की भरपूर सहायता की।
0: स्वामी कुमारनंद साम्यवादी विचारों के होते हुए भी कांग्रेस के साथ बने रहे। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब सन 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के समय बाबा सोहन सिंह जोश और कॉमरेड मुजफ्फर अहमद ने कांग्रेस से अलग होने का प्रस्ताव रखा तो स्वामी कुमारनंद ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि अभी कांग्रेस छोड़ने का समय नहीं है। काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में स्वामी जी ने बटुकेश्वर दत्त को जिस प्रकार बचाकर भगाया और पुलिस के अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट से बुरी तरह भिड़ पड़े, ये उनके साहसिक कार्य का एक जीता जागता उदाहरण है।

0: वैसे तो स्वामी कुमार नंद के विचार क्रांतिकारी व साम्यवादी थे और ब्यावर के मजदूर आंदोलन के प्राण माने जाते थे, फिर भी उनका व्यवहार कांग्रेस के नेताओं और विशेषकर रियासतों के नेताओं के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण था। अधिकतर नेता स्वामी जी के रियासतों में जन आंदोलन चलाने पर विचार विमर्श करते और कभी कभी स्वामी जी के साथ ही ठहरते।
1: क्रांतिकारी विचारों के होने के कारण और अंग्रेजों के कट्टर विरोधी होने से रात्रि में वे जब नींद में होते तो कई बार वे भयंकर रूप से दांत किटकिटाते हुए गुस्से में बड़बड़ाते, इन अंग्रेजों को मार डालो, भारत से भगा दो। तब नींद से जागने पर पूछते तो कहते, क्या हुआ, मैं तो गहरी नींद में सोया था। उनका आत्मबल बहुत तेज था और वे साहसी भी थे। उनके अनुसार पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी कभी मीलों लंबी दौड़ लगाकर भाग निकलते, कभी जंगलों में और खंडहरों में भटकते रहते। न खाने पीने की सुध, न रुकने का ठिकाना, मगर क्रांति कार्य की मशाल न बुझे, यही कोशिश रहती थी। स्वामी कुमारनंद जीवन भर कुंवारे रहे, वे सादा जीवन उच्च आदर्श के धनी थे।
0: स्वामी जी 1962 में विधानसभा के सदस्य रहे और राजपूताना मध्य भारत ट्रेड यूनियन के वर्षों तक अध्यक्ष भी रहे। स्वामी कुमारनंद का जीवन त्याग, तपस्या व आजादी के आंदोलनों में जेलों की यातनाएं सहने में बीता। उनका आदर प्रत्येक विचारधारा के राजनेता व आम नागरिक करते थे, वे सदा उनके आगे नतमस्तक रहते थे। 29 दिसंबर 1971 के दिन नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में इस महान क्रांतिकारी देशभक्त का पेट की बीमारी से निधन हो गया। स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा के निधन पर पंडित सुंदरलाल ने कहा था कि अजेय स्वातंत्र योद्धा, एक महान तपस्वी, त्याग की मूर्ति व साहसिक देशभक्त के देहावसान से भारत को अपार क्षति हुई है। ऐसे महान देशभक्त को हमारा सादर नमन।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति थी स्वराज संस्थान संचालनालय की। गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान द्वारा जारी ऑडियो श्रृंखला जन गर्जे में से।
3: अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग आप सुन सकते हैं विविध भारती के भोपाल, इंदौर और जबलपुर केंद्रों से हर रविवार सुबह 9:30 बजे और मध्य प्रदेश स्थित आकाशवाणी के अन्य केंद्रों से हर गुरुवार सुबह 8:30 बजे से।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

कलाकार हैं माधवी मधुकर झा। ये प्रस्तुति दी उन्होंने भारत भवन में आयोजित संतवाणी समारोह में।

0: ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: आज की सभा का हम आरंभ करने जा रहे हैं सुश्री माधवी मधुकर झा के गायन से, और आज की सभा में उनके साथ जो संगत कलाकार मंचासीन हो रहे हैं, माधवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। कलाओं के गर्भार घूम के इस सिद्ध प्रसिद्ध मंच पर आपकी आमद का हम स्वागत करते हैं। बतौर संगत कलाकार कीबोर्ड पर हैं श्री सचिन गुप्ता, तबला वादन करेंगे श्री अमित कुमार, ऑक्टोपीट पर हैं श्री धर्मेंद्र कुमार, गिटार वादन करने के लिए मंच पर हैं श्री ध्रुव, और वेणु वादन मुरली वादन के लिए मंच पर हैं श्री हर्ष कुमार।

झा, यहाँ उपस्थित आप सभी श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को, श्रोतागणों को, प्रभु प्रेमी जनों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन की, जो मुझे इस संतवाणी समारोह में अपनी प्रस्तुति देने का अवसर दिया। इसके लिए मैं पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ, आभारी और धन्यवाद देती हूँ। आज मैं विशेष रूप से आचार्य शंकर विरचित स्तोत्रों का गायन करूँगी और कुछ अन्य संतों की वाणी में जो विशेष कुछ पद हैं उनका मैं गायन करूँगी। प्रारंभ करना चाहूँगी विघ्न विनाशक मंगलकारक प्रभु श्री गणपति वंदना से, आचार्य विरचित गणेश भुजंग। आप सभी मेरा साथ दीजिए।

की प्रस्तुति भी कुछ इस प्रकार है। आचार्य शंकर कहते हैं माँ भवानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता माता भाई बहन स्वामी पत्नी विद्या और व्यापार इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे माँ भवानी, एकमात्र तुम्हारी शरण में मैं हूँ और एक तुम ही मेरी गति हो। अगली प्रस्तुति आचार्य विरचित भवानी दृष्टिकोण।

प्रस्तुति भी आचार्य शंकर विरचित ही है। जिस स्तोत्र को आप सभी ने बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, श्री कृष्णाष्टकम प्रस्तुत करना चाहूंगी।

कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे माधवी मधुकर झा का भक्ति गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका तथा यूरोप के शिक्षित समाज के सामने भारतीय दर्शन और वेदांत की बातों को रखकर एक क्रांति की सूचना कर दी थी। उनके भाषणों को सुनने के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ती थी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि फैलती गई और कई लोग उनके अनुयायी बन गए।
1: स्वामी जी के विदेशी शिष्यों और शिष्याओं में सबसे पहले याद आती हैं कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, यानी भगिनी निवेदिता। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया और अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम निवेदिता को पूर्णतः सार्थक कर दिया।
0: निवेदिता का अर्थ है समर्पिता, और उन्होंने अपने नाम और हिंदू गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप अपने श्रम के फल को अपने गुरु तथा परम गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें जो जीवन प्रकाश और अपार सामर्थ्य प्राप्त हुई थी, उसका उद्गम स्थान स्पष्ट करने के लिए ही वो अपना उल्लेख रामकृष्ण विवेकानंद की निवेदिता किया करती थी। उन्होंने उस पवित्र देवालय की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्हें तथा भविष्य में समस्त विश्व को ज्ञान का प्रकाश, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति मिली।
1: निवेदिता के जीवन को 3 स्वतंत्र विभागों में बांटा जा सकता है। पहला विभाग यानी वो काल जिसमें उनके जन्म से लेकर उस समय तक जब उनकी स्वामी विवेकानंद से भेंट हुई थी। दूसरा भाग जब वे अपने जीवन के कर्तव्यों के प्रति सचेत हुई थी से लेकर गुरु के महानिर्वाण तक का काल। और तीसरा भाग आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद एक निस्वार्थ और धैर्यवान कार्यकर्ता के रूप में उनका उदय काल।
0: मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 में टायरोन जिले के डुगनन नामक गांव में हुआ। उनके पितामह का नाम जॉन नोबल था। नोबल परिवार स्कॉटिश मूल का था और पिछली 5 शताब्दियों से आयरलैंड में आकर बस गया था।
1: मार्गरेट अपने पिता सैमुअल नोबल की बहुत लाडली थी। उनके पिता जब भी किसी धार्मिक अनुष्ठान या प्रवचन के लिए या दीन दुखियों की सेवा के लिए बाहर जाते तो मार्गरेट को वे अपने साथ जरूर ले जाया करते। पर सादगी पूर्ण और कठिन जीवन के श्रमसाध्य कष्टों ने सैमुअल के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाला और सिर्फ 34 वर्ष के अल्प वय में ही सैमुअल की मृत्यु हो गई।
0: अपने पिता के धर्माचरण का गहरा प्रभाव मार्गरेट के बाल मन पर पड़ा था। धार्मिक कार्यों तथा धर्म के प्रति गहरी रुचि तथा अदम्य उत्साह जिस प्रकार मार्गरेट ने अपने पिता से सीखा था, उसी तरह उसके नाना ने उसके मन में देश के प्रति प्रेम तथा स्वतंत्रता की भावना की ज्योत प्रज्वलित की थी। यथासमय मार्गरेट को हेलिफैक्स महाविद्यालय भेजने की व्यवस्था की गई, जहां उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी। मार्गरेट कितनी दृढ़ निश्चयी अन्वेषिका थी, ये उनकी इसी बात से पता चलता है जो उन्होंने हिंदू महिला मंडल मुंबई में सन 1902 में एक भाषण के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था,
2: एक अंग्रेज स्कूल में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ था तथा उम्र के 18वें वर्ष तक सर्व सामान्य अंग्रेज बालिका के समान ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। बचपन से ही मेरे मन पर क्रिश्चियन धर्म के संस्कारों का प्रभाव था। सभी धर्मों की शिक्षाओं और सिद्धांतों के प्रति मेरे मन में नितांत आदर था। जीसस की मैं समर्पित हृदय से पूजा करती थी, उसे प्यार करती थी। बालवय में भी यीशु दूसरों के लिए कैसे स्वेच्छा से त्याग करते थे, ये सुनकर तो मेरा मन उनके प्रति आदर से भर गया। मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयं को सूली पर चढ़ाकर, स्वयं का बलिदान कर जितना कुछ ईसा ने मानव जाति को दिया है, उसके लिए मैं कैसे उनकी पूजा ना करूं? किस तरह अपनी श्रद्धा के फूल उन पर चढ़ाऊं? कितना सम्मान उन्हें दूं? ये मैं कभी भी नहीं समझ पाई। मैंने हमेशा यही अनुभव किया है कि जितना कुछ प्रभु ईसा ने मानव जाति के लिए किया है, उसके अनुरूप मैं पर्याप्त रूप से उन्हें सम्मान आदर नहीं दे पा रही हूं।
1: निवेदिता फिर भी शांति और सत्य की खोज में भटकती रही।
2: इसके बाद मेरा ध्यान बुद्ध के जीवन ने आकर्षित किया। उनके जीवन और धर्म तत्वों का गहरा अभ्यास करने के बाद मुझे लगा कि बाल बुद्ध जो बाल क्राइस्ट के कुछ शताब्दी पहले इस पृथ्वी पर आए थे, उनका आत्म त्याग किसी अन्य के त्याग से कम नहीं था। उन्होंने पूर्णतः स्वत्व का परित्याग किया था। इस प्यारे से बालक गौतम ने 3 वर्षों तक मेरे पर अधिकार जमाए रखा। 3 वर्षों तक मैं उनसे बहुत प्रभावित रही तथा बौद्ध धर्म के विस्तृत अभ्यास में पूर्णतः लीन रही।
0: परंतु निवेदिता का मन फिर भी अशांत रहा। उन्हें लगा कि वे सही रास्ते पर नहीं चल रही हैं।
2: और अब मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वासों में अमूल परिवर्तन लाने का क्षण आया। स्वामी जी, जिनसे मेरी भेंट हुई, वे और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद हैं, जो बाद में मेरे गुरु बने। उनकी शिक्षाओं, सिद्धांतों और उपदेशों ने मेरी व्याकुल आत्मा को वह शांति दी जिनकी मुझे लंबे समय से चाह थी।
1: उसके स्वयं के उदार मनोभाव और सत्य के प्रति उत्कट लालसा ने उसे स्वामी जी के वैदांतिक सिद्धांतों और शिक्षाओं को पूर्ण रूप से ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया। सत्य का प्रकाश कहीं से भी मिले, उसे खुले दिल से स्वीकार करना ही मार्गरेट के जीवन का मुख्य उद्देश्य था, और इसीलिए उसने स्वामी विवेकानंद के सर्वोत्तम शिष्य का स्थान प्राप्त किया था।
2: स्वामी जी के शब्दों ने हम में से कुछ लोगों के जीवन को ठीक उसी तरह प्रभावित तथा आनंदित किया जैसे प्यास से व्याकुल व्यक्ति के लिए जल करता है। हम में से बहुत से लोग पिछले कई वर्षों से धर्म के प्रति बढ़ती हुई अनिश्चितता तथा निराशा की स्थिति के प्रति सचेत रहे। ये भावनाएं यूरोप के बुद्धिजीवी जनमानस को करीब आधी शताब्दी तक व्याकुल करती रही, पर अब वे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं विवेकानंद विचारधारा के रूप में। इन वेदांतिक शिक्षाओं ने हमारे अविश्वासी अंतर्ज्ञान को एक बौद्धिक प्रमाणीकरण तथा दर्शन शास्त्रीय आकार दिया है। धर्म विषयक गलत कल्पनाओं के अंधकार में जो अब तक चल रहे थे, उन्हें अब प्रकाश का अनुभव होगा।
1: सन 1895 में जब स्वामी जी लंदन गए, तब उन्हें हिंदू योगी के नाम से जाना गया। उन्होंने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता हासिल की थी। लंदन में ही एक दिन सुश्री इजाबेल मार्गेसन ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। स्वामी जी से मिलने और उनके भाषण को सुनने के लिए ही कुमारी मार्गेसन ने अपने कुछ मित्रों को भी बुलवाया। इन निमंत्रित अतिथियों में मार्गरेट भी एक थी। मार्गरेट के बहुत से दोस्त उनकी मानसिक धार्मिक लालसा के बारे में जानते थे, और उन मित्रों में से एक ने मार्गरेट को सलाह दी कि ये हिंदू योगी सत्य की खोज के मार्ग में उसकी मदद कर सकते हैं। मार्गरेट वहां जाना नहीं चाहती थी, केवल कौतूहलवश वहां क्या हो रहा है ये जानने के लिए मार्गरेट ने इजाबेल का आमंत्रण स्वीकार किया। इसी तरह की एक एक घटनाएं धीरे धीरे उसके लक्ष्य की ओर जाने का मार्ग दिग्दर्शित कर रही थी।
0: लेडी इजाबेल मार्गेसन के घर पर मार्गरेट की स्वामी विवेकानंद से प्रथम भेंट हुई। नवंबर का महीना था, रविवार का दिन और दोपहर का वक्त था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। 15-16 व्यक्ति स्वामी जी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार में बैठे हुए थे। मध्य भाग में गैरिक रंग के लबादे समान वस्त्र धारण कर स्वामी जी उन लोगों के समक्ष बैठे थे। कमर में उन्होंने कमरबंद लपेटा था। उनके पीछे गर्माहट हेतु अग्निकुंड प्रज्वलित था। वे बार बार शिव शिव इस शब्द का जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे।
1: स्वामी जी वहाँ शाम को देर तक बैठे थे। एक हिंदू योगी अपने पश्चिमी श्रोताओं और स्नेही जनों के समूह के बीच बैठकर उन्हें अपने देश के अनंत धर्म के सनातन सत्यों के बारे में बता रहा था। उनसे हिंदू धर्म के अक्षर तत्वों की चर्चा कर रहा था। लंदन के उस पाश्चात्य ढंग से सजी बैठक में ठीक भारत के किसी गाँव के वातावरण के समान वातावरण निर्मित हो गया था। जैसे कि भारत के किसी गांव में वृक्ष के नीचे बैठे साधु के इर्द गिर्द लोगों का समूह परमार्थ की बातों को तल्लीनता से सुनता है। गोधुली बेला रात्रि के अंधकार में परिवर्तित हो रही थी।
0: स्वामी जी ने कहा कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वे समझते हैं कि अब वो समय आ चुका है जब इन दोनों देशों के बीच विचारों का, जीवन कल्पनाओं का आदान प्रदान हो। जिस तरह इन दोनों देशों के बीच व्यापार विनिमय प्राचीन काल से होता आ रहा है। स्वामी जी के संभाषण में अनेक विविध विषय आ रहे थे। स्वामी जी ने वहां उपस्थित लोगों को ईश्वर के बारे में बताया। आध्यात्मिक उन्नति के 3 मार्ग बताए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। उन्होंने अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद, एक तत्ववाद की चर्चा की। उन्हें बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया।
1: मार्गरेट के मन पर कुछ अलग ही प्रतिक्रिया हुई। आने वाले सप्ताहों में जब मार्गरेट ने स्वामी जी के कार्यों का अवलोकन किया, तो उसके समक्ष स्वामी जी के विचार स्पष्ट होने लगे। जब स्वामी जी अवतार के जन्म के बारे में बोल रहे थे, तब उन्होंने भगवद गीता के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा कि जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब सज्जनों के रक्षण हेतु और दुष्टों के नाश हेतु मैं बार बार जन्म ग्रहण करता हूँ। साधु धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को दृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। मार्गरेट गीता के इस विचार की महानता से बहुत प्रभावित हुई थी। अब उसे समझ में आया कि क्यों स्वामी जी ने कहा था कि सभी धर्म सत्य है, अतः किसी भी ईश्वरीय अवतार की ईश्वरीय आविर्भाव व पुनर्जन्म की निंदा नहीं करनी चाहिए।
0: और वो समय आया जब मार्गरेट ने स्वामी जी को गुरु कहकर संबोधित किया। वो वक्त था लंदन से स्वामी जी की वापसी का। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए मार्गरेट लिखती है,
2: मैंने इस व्यक्ति के ईश्वरीय अंशों को, असामान्य नेतृत्व गुणों को पहचान लिया है। मेरी इच्छा है कि मैं उनके सामाजिक विषयक, उनके प्रेम का दासत्व स्वीकार कर लूं। मैं चाहती हूं कि जिस समाज से वे इतना प्रेम करते हैं, उस समाज की सेवा के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। ये वही व्यक्तित्व है जिसको मैं शत शत प्रणाम करती हूं। ये वही चरित्र है जिन्होंने मुझे विनम्र बनाया है, यद्यपि मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई थी, पर फिर भी मेरे मन में पूर्ण शंकाओं के समाधान के बाद ही मेरी उन पर श्रद्धा दृढ़ हो सकी। उनके संपर्क में आने के बाद मेरे समक्ष अब किसी भी असामान्य बुद्धिमान व्यक्ति और स्वामी जी में अंतर स्पष्ट हो गया है।
1: और जब स्वामी जी शरद ऋतु में अमेरिका की ओर रवाना हुए, तो मार्गरेट उनके तीनों गुणों का बार बार मनन कर रही थी। पहली थी उनकी विशाल धर्म दृष्टि या धार्मिक विचारों की विस्तीर्णता, दूसरी थी उनके विचारों की महानता, नूतनता तथा बुद्धि निष्ठा। उन्होंने जो विचार उन लोगों के समक्ष रखे थे, उन विचारों के प्रति गहरी रुचि। और तीसरी थी वो सच्चाई जिसकी शुद्धता और महान ऊंचाई को मानव मन के आधारभूत तत्व स्पर्श भी नहीं कर सकते थे।
0: स्वामी जी ने 15 अप्रैल 1896 को लंदन जाने के लिए न्यूयॉर्क छोड़ा। उनके दोस्त तथा सहयोगी उन्हें फिर अपने बीच पाकर अति प्रसन्न हुए। स्वामी जी स्वतः भी बहुत ही खुश थे, क्योंकि स्वामी सारदानंद भारत से यहाँ आ पहुंचे थे और 2 वर्ष के वियोग के पश्चात ये 2 गुरु भाई भी स्टडी के निवास स्थान पर, जो सेंट जॉर्ज रोड पर स्थित है, मिले।
1: स्वामी जी के वार्तालाप और भाषणों के विषय अलग अलग होते थे, और ये तो भाग्य की ही बात है, उन भाषणों को लिपिबद्ध करने के लिए श्री गुडविन ने, जो आशुलिपिक थे, अपनी सेवाएं प्रदान की, और उन्हीं की मेहनत के फलस्वरूप स्वामी जी के अधिकांश भाषण सुरक्षित और लिपिबद्ध रह सके। श्री गुडविन स्वामी जी के सानिध्य में बहुत वर्षों तक कार्य करते रहे, और वे स्वामी जी से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। अपने घर परिवार के माया मोह के बंधनों को तोड़कर वे आजीवन स्वामी जी के साथ ही रहे, और उन्होंने अपने गुरु की सेवा में गुरु के कार्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया।
0: मार्गरेट तथा उसके कुछ साथी उन लोगों में से थे जो बिना एक भी दिन नागा किए स्वामी जी के भाषणों में उपस्थित रहते। खुले और उदार मस्तिष्क के धनी ये लोग स्वामी जी के वेदांतिक उपदेशों की सत्यता को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनमें से प्रत्येक उन्हें जितना भी सिखाया जाता, उसके अर्थ को अपने अनुभवों तथा धर्म कल्पनाओं के आधार पर समझने की कोशिश करता। अपनी धार्मिक परिकल्पनाओं को ध्यान में रखकर ये लोग स्वामी जी के उपदेशों के गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयत्न करते।
1: एक दिन प्रश्नोत्तर की कक्षा के दौरान स्वामी जी एकाएक उठ खड़े हुए और जोरदार गर्जना करते हुए बोले,
3: क्या इस पूरे इतने बड़े संसार में 20 ऐसे स्त्री पुरुष भी नहीं हैं, जो किसी शहर के मुख्य मार्ग पर सबके समक्ष खड़े होकर ये बोलने की हिम्मत करें कि उनमें ईश्वरीय अंश मौजूद है? बोलिए, आप में से कौन खड़ा होकर सबके समक्ष ये स्वीकार करेगा? क्यों हमें ये स्वीकार करने में डरना चाहिए? यदि ये सत्य है कि ईश्वर हम में मौजूद है, यदि हमारा ईश्वर सानिध्य सत्य है, तो फिर इसे स्वीकार करने में हिचक क्यों? और यदि नहीं है तो फिर हमारे जीवन का क्या लाभ? ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ?
0: इन शब्दों को जो स्वामी जी ने कहे थे मानो उन वास्तविकताओं के सार थे जो वास्तविकता या सच्चाई स्वामी जी विश्व को दिखाने आए थे, और इन्हीं शब्दों ने मार्गरेट के हृदय को आंदोलित कर दिया तथा वो स्वामी जी का साथ देने के लिए तत्पर हो उठी।
1: एक दिन वार्तालाप के दौरान स्वामी जी ने उसकी ओर मुखातिब होकर कहा,
4: मैं मेरे देश में वहां की स्त्रियों की प्रगति हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि उस कार्य में तुम मुझे बहुत मदद कर सकोगी।
0: मार्गरेट भी भारत जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी, पर उसने अभी तक इस बारे में स्वामी जी से कुछ कहा नहीं था। एक संध्या को जब कुमारी मुलर ने स्वामी जी के समक्ष मार्गरेट की इच्छा का जिक्र किया कि मार्गरेट स्वामी जी के साथ भारत जाकर उनके कार्यों में मदद करने की इच्छुक है, तब स्वामी जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने बड़ी ही शांति के साथ कहा,
4: जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जन कल्याण का जो कार्य अपने जिम्मे लिया है उस कार्य को करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने लोगों के बीच 200 बार जन्म लेने के लिए तैयार हूं।
1: स्वामी जी भारत लौट आए। स्वामी जी का ध्यान इस देश की जिन बहुत सारी समस्याओं ने आकृष्ट कर रखा था, उनमें से एक समस्या थी महिलाओं की समस्या। वे प्रायः अपनी भावना इन शब्दों से दर्शाते थे कि किसी भी देश की सर्वांगीण उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इसका एक अंश शक्तिहीन हो। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक ही पंख के सहारे कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकता, वे स्त्री और पुरुष को देश रूपी गाड़ी के दो पहिए मानते थे, और देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए दोनों पहिए स्वस्थ, शिक्षित और सबल होने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने सुश्री बुल को 25 फरवरी 1897 में लिखा था, मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा यदि मैं दो पृथक पृथक केंद्रों की स्थापना किए बिना ही इस संसार से विदा ले लूं। वे दो केंद्र हैं, एक तो सन्यासियों के लिए और एक महिलाओं के लिए। यदि उसके पूर्व ही मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे जीवन का व्रत अधूरा रह जाएगा।
0: श्रीमती बुल ने स्वामी जी के समक्ष सन्यासियों के लिए मठ का निर्माण करने हेतु आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव रखा था, परंतु उन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया क्योंकि अभी तक उनके पास मठ निर्माण हेतु कोई निश्चित रूपरेखा नहीं थी। उन्हें धन की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें ये बात खूब अच्छी तरह से मालूम थी कि काम जब एक बार शुरू हो जाएगा तो धन की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से अपने आप हो जाएगी, परंतु इस महान कार्य का प्रारंभ करने के लिए महिलाएं कहां थी? सिर्फ शिक्षित महिलाएं ही इस कार्य में उन्हें मदद कर सकती थीं।
1: स्वामी जी जानते थे कि मार्गरेट इस कार्य के प्रति गंभीर है और बहुत ही अधिक निष्कपट तथा सच्ची है। भारतीय महिलाओं की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा रखती है। अतः स्वामी जी ने उसे ढेर सारे पत्र लिखे और प्रत्येक पत्र द्वारा उसे भारत में इस कार्य की प्रगति से अवगत कराया।
0: मार्गरेट भारत आकर उनके कामों में हाथ बटाना चाहती है, ये जानकर स्वामी जी खुश तो हुए, परंतु उन्होंने मार्गरेट को पत्र लिखकर यहाँ की कठिनाइयों के बारे में बार बार आगाह किया।
4: मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है, या यूं कहो कि मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि मुझे अब निश्चित रूप से लगने लगा है कि यहाँ भारत में तुम्हें काम के ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे कि यहाँ तुम्हारा भविष्य उज्जवल रूप धारण करेगा। ये कार्य ऐसा है कि इसमें एक पुरुष की अपेक्षा एक स्त्री की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्य एक स्त्री ही सुव्यवस्थित रूप से कर सकती है। एक वीर, साहसी तथा सिंहनी की भांति निडर स्त्री ही इस कार्य को भली भांति कर सकेगी। विशेषकर भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए किए जाने वाले इस कार्य की पहली आवश्यकता एक स्त्री ही है। अभी भारत ने महान नारियों को उत्पन्न नहीं किया है, अतः उसे ऐसी महान नारियां दूसरे देशों से उधार मांगकर लानी होंगी। तुम्हारी शिक्षा, पवित्रता, कार्य के प्रति लगन, दृढ़ निश्चय प्रवृत्ति तथा इस देश के प्रति अगाध प्रेम, और सबसे ऊपर तुम्हारे सेल्टिक वंश के रक्त ने तुम्हें वो नारी बना दिया है जो इस कार्य के लिए पूर्णतः योग्य है। यहां बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियां बहुत हैं, तुम यहाँ की गरीबी, दुख, अंधविश्वासों और गुलामी की जंजीरों से जकड़े लोगों के बारे में कोई धारणा बना ही नहीं सकती। ये सब तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हें यहाँ अर्धनग्न स्त्री पुरुषों की भीड़ के बीच कार्य करना होगा, जिनके जाति प्रथा तथा छुआछूत संबंधी बड़े विचित्र तथा पुरातन विचार हैं, जो गोरी चमड़ी के लोगों को डर और घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अछूत मानते हैं, और सफेद चमड़ी वाले लोग भारतीयों से तीव्र घृणा करते हैं। दूसरी ओर गोरे लोग तुम्हें सनकी समझेंगे। यहां तुम्हारे प्रत्येक कार्यकलापों के आचार व्यवहार का निरीक्षण किया जाएगा तथा हर पल तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। यहां की जलवायु बहुत ही अधिक गर्म है। अधिकांश स्थानों पर हमारी शीत ऋतु तुम्हारे ग्रीष्म के समान है। सारे दक्षिण में तो हमेशा गर्म लू चलती रहती है, मानो आग बरस रही हो। यहां के शहरों के बाहर यूरोपीय ऐशो आराम की कोई भी सामग्री तुम्हें नहीं मिलेगी। इतना पढ़ने के बाद भी यदि तुम में इस साहसिक कार्य में शिरकत करने की हिम्मत है तो तुम्हारा यहां स्वागत है, शत शत बार स्वागत है। जैसा बाहरी देशों में मेरा प्रभाव है उतना यहां तो नहीं, फिर भी जितना थोड़ा सा प्रभाव है और जो कुछ मेरा सामर्थ्य है उतना मैं तुम्हारी सहायता तथा सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा।
1: इस पत्र को पढ़ने के बाद मार्गरेट को कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। मार्गरेट के लिए भारत आने का मार्ग खुला था और वो जब भी आना चाहे आ सकती थी। अतः जैसे ही उसे स्वामी जी का ये पत्र मिला, उसने अपने मित्रों से जो भी पहला मौका मिले उस पर भारत जाने की व्यवस्था करने के लिए कहा।
0: 28 जनवरी 1898 को उनका जहाज कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंचा। स्वामी जी खुद बंदरगाह पर उसका स्वागत करने आए।
1: कलकत्ता के पहले के कुछ दिन मार्गरेट ने अपने अंग्रेज दोस्त मैकडोनल्ड डटसन और अर्बत नॉट के कलकत्ता के दर्शनीय स्थल देखने में बिताए। इसी बीच उसका भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु तथा उनकी बहन लावण्य प्रभा बसु से परिचय हुआ। लावण्य प्रभा बसु एक विद्यालय का संचालन करती थी। साथ ही मार्गरेट ने टैगोर परिवार के लोगों से, माताजी से और सरला घोषाल से भी परिचय प्राप्त किया।
0: तब तक स्वामी जी ने मार्गरेट के बंगाली भाषा सीखने की व्यवस्था की। इसी बीच 8 फरवरी को स्वामी सारदानंद रेलगाड़ी द्वारा मुंबई से कलकत्ता पहुंचे। मुंबई में वे इंग्लैंड से आए थे तथा उनके साथ कुमारी जोसेफाइन मैकलाउड तथा श्रीमती सारा सी बुल थी।
1: भारत पहुंचने के बाद उन्होंने स्वामी जी से पूछा था कि वे किस तरह उनके कार्यों में सर्वोत्तम ढंग से मदद कर सकती हैं। जब स्वामी जी ने उत्तर दिया था, भारत को प्यार करो, इसके पश्चात ही एक महत्वपूर्ण अवसर मार्गरेट के भाषण का था, जो रामकृष्ण मिशन के उद्घाटन सभा पर आयोजित किया गया था, जो स्टार थिएटर में 11 मार्च को हुआ। मार्गरेट का परिचय कराते हुए उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होते हुए कहा,
4: पहले ही इंग्लैंड ने अपने कुछ महान विद्वान हमारे इस रामकृष्ण मिशन की सहायतार्थ दिए हैं, और जब इंग्लैंड ने मार्गरेट नोबल के रूप में एक और बहुमूल्य उपहार हमें दिया है, जिनसे हमें ढेर सारी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और अधिक आपका समय ना लेते हुए मैं आप लोगों का परिचय कुमारी मार्गरेट नोबल से कराता हूँ।
5: मैं यहाँ आप लोगों को इंग्लैंड में इन 1.5 वर्षों के दौरान हुए काम के बारे में निश्चित रूप से कुछ बताने आई हूँ। 1.5 वर्ष पहले आपके आध्यात्मिक विचारों का प्रचार प्रसार हम लोगों के बीच हुआ था। मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयत्न कर रही हूँ कि आप लोगों ने जो इन महापुरुष के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश हम लोगों के बीच इंग्लैंड भेजा था, वो संदेश हमारे बीच में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है।
0: मार्च 17 गुरुवार को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। उस दिन निवेदिता माँ शारदा मणि देवी से, जो रामकृष्ण देव की पत्नी थी, मिली।
5: वो अविस्मरणीय दिन मेरे जीवन में किसी उत्सव से कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन कट्टरवादी हिंदू धर्म परायण महिलाओं के साथ सहभोजन की याद भी भूलने लायक नहीं है, और ना ही वे पवित्र तथा सुखदायक बंधन जो उस दिन संस्कारित हुए और अपने अस्तित्व में मुझे जीवन भर के लिए बांध गए, उन बंधनों को मैं आज जन्म भुला नहीं पाऊंगी।
0: इस तरह मार्गरेट नोबल सच्चे अर्थों में निवेदिता बन गई। उसके बाद की घटनाएं और भी रोमांचकारी हैं, जिन्हें अगली कड़ियों में आप जान पाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

90.8 MHz पर अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, आज की सभा समाप्ति से पूर्व कल यानी रविवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको बताते हैं। कल प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रथम मंडल से 150वें सूक्त का वाचन 7:10 से। 7:20 से आप सुनेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम। 8 बजे होगा हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, कल का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा केशव बलिराम हेडगेवार की पुण्यतिथि पर। बाल सभा कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 8:30 पर। कल का विषय होगा नशे का साथ जिंदगी का नाश। विशेष कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9 बजे, जिसमें कल विश्व योग दिवस पर आप सुनेंगे डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी से नूपुर शर्मा की बातचीत। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। दिन में 10 बजे होगा कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आप सुनेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल का भाग 2 आकाश की शक्ति का निर्माण। आजाद हिंद कार्यक्रम में कल का आकर्षण होगा उमराव सिंह सूबेदार। प्रसारण समय 10:30 से। दिन में 11 बजे कल आप सुनेंगे रेडियो रिपोर्ट ऑल राइट मेला संगीत और भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी कार्यक्रम परिक्रमा में। 11:30 पर होगा कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसमें कल आप सुनेंगे रश्मि रथी का भाग 4। 4 तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम, जिन्हें आप सुनेंगे कल प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर। रात्रि के 10 बजने को है, अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 7 बजे हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।